नमस्कार। मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58:42 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने कार्यक्रमों के साथ अपने सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्रशासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले

0: शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण मातृ वंदना।

समोहेश्वर में देशभक्तिपूर्ण मातृवंदना अभी हम सुन रहे थे। लीजिए श्रोताओं, भक्ति संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण प्रभु का ये भजन आपको सुनवा रहे हैं और इसमें स्वर लता मंगेशकर का है।

अभी आप सुन रहे थे गिरधर गोपाल प्रभु का भजन लता मंगेशकर के स्वर में। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं भगवान श्री राम जी का एक भजन, और इसमें स्वर कुमार विशु का है।

अभी आप सुन रहे थे भगवान श्री राम जी का ये भजन कुमार विश्व की आवाज में। श्रोताओं, दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास, सुमरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र श्री राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे और जिनके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है उन प्रभु राम में ही मेरी आसक्ति रहे। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कृष्ण प्रभु का ये भजन और इसमें स्वर पुरुषोत्तम दास जलोटा का है।

अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में भगवान श्री राम प्रभु का ये भजन। संत कबीरदास जी लिखते हैं, तिनका कबहू न नींदिए जो पाओ तली हुए, कबहू उड़ी आखन पड़े तो पीर घनेरी हुए। अर्थात कभी भी हमें किसी छोटी वस्तु या कमजोर व्यक्ति की निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे पैर के नीचे रहने वाला छोटा सा तिनका भी जब आंख में जाता है तो बहुत गहरी पीड़ा देता है, इसलिए हमें सदैव सभी का सम्मान करना चाहिए। आइए श्रोताओं, अब भक्ति संगीत के इस क्रम के समापन में महावीर स्वामी का एक भजन भंवर चौधरी और साथियों के स्वर में हम आपको सुना रहे हैं।

भंवर चौधरी और साथियों के गाए हुए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद किसान भाइयों के लिए 6:35 पर होगा खेती किसानी। आज का विषय होगा गोबर गैस संयंत्र से लाभ। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे 9वीं कड़ी। गायक होंगे सुरेश भाटकर और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। 6:50 पर चिंतन। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में बुंदेली वार्ता, बुंदेली कवि गंगाधर व्यास होगी। वार्ताकार होंगे पंडित बाबूलाल द्विवेदी। 7:30 पर फिल्म संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे रसावतरण में कवि गोष्ठी। कवि होंगे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, राकेश कुमार सोनी, बलराम सोनी और भीम प्रकाश पाठक। 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग में परमेश्वरी दयाल हरबार के स्वर में लोक संगीत। इसमें आप सुनेंगे तमुरा की ताल पर ख्याल गायन। 9:30 पर एक ही गीत कार्यक्रम में विशाल ददलानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे। 10:00 भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी होगी। 10:05 पर पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी। इसमें आप सुनेंगे मुनिंद्र सिंह राजपूत से उनकी वार्ता, बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम। साथ ही होंगे विविध समाचार। 10:35 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद और आकाशवाणी छतरपुर का आपकी पसंद के लिए ईमेल आईडी AIR छतरपुर 1976@gmail.com। आप सभी मेल करके इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। दिन में 11:00 भोपाल से फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से दिन में 1:00 आकाशवाणी छतरपुर से महिला कार्यक्रम महिला सभा होगा। इसमें मंजुषा कनानी से उनका काव्य पाठ बहनें सुनेंगी। साथ ही नमकीन की चीला बनाने की व्यंजन विधि भी बहनों के लिए होगी। 1:30 पर भोपाल से इंदौर की प्रस्तुति में लोक संगीत सुगम संगीत। 1:45 पर भोपाल केंद्र से इंदौर केंद्र की प्रस्तुति में हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 युववाणी एक वार्ता इसमें होगी बुंदेलखंड का इतिहास, वार्ताकार ऋषभ मौर्य। 5:40 पर फिल्म संगीत। शाम 6:00 भोपाल केंद्र से NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम भाग होगा 1297। शाम 6:30 पर बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे राकेश कुमार। शाम 7:20 पर घरनी में

0: ने सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही एक भेंट वार्ता होगी रासायनिक उर्वरक एवं खाद का संतुलन उपयोग विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख में जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। रात 8 बजे भोपाल से सुर्खियों में, 8:15 पर फिल्म संगीत, 9:15 पर दिल्ली से स्पॉटलाइट, 9:30 पर दिल्ली से ही मनी टॉक और 9:45 पर मंथन, 10 बजे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं ये था कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी। आज का विषय है गोबर गैस संयंत्र से लाभ।
1: पंचो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं, खासतौर से उन पंचन के लाने जो उनके गोबर गैस संयंत्र चला रहे हैं या उनकी स्थापना करो चाहू थे। तो जोन किसान पंच गोबर गैस संयंत्र लगाओ चाहू थे उन्हें खासतौर से ई संयंत्र का लगावे के लाने सबसे पहला इन बातन को ध्यान रखनिया है। उनके स्थान को जब अपन चुनाव करें तो जो देख लेवे के जोन जगह में अपन गोबर गैस संयंत्र लगवा रहे हैं वह जगह ऊंचाई पे बहुत चाहिए, संगे संगे उते भैया सूखी जगह बहुत चाहिए और पूर्णतः खुलो स्थान बहुत चाहिए। खुले को मतलब जो है कि भैया जहाँ पे दिन को जो प्रकाश है ना धूप आउत बा सबसे ज्यादा उस स्थान तक पहुंच सके। ई के संगे संगे जहाँ अपनी रसोई है, जहाँ अपने पशु बंधत ऊ के पास जो स्थान बहुत चाहिए। एक बात को और ध्यान रखने कि जो न अपनी जमीन को जल स्तर है ऊकी जो जल स्तर की सतह है वह भैया कम से कम जितो अपने गहरो गड्ढा ही के लाने खोदो उसे 2 मीटर नीचे पहुंचिए। गैस संयंत्र के लाने 15 मीटर के आसपास तक कोनो भी पानी को कुआं या जो अपन हैंड पाइप वगैरह लगवाऊ थे वो आसपास ना पहुंचिए। और ई के रख रखाव के लाने भी हम अपन कछु बता दें कि अपन के पास जितनी पशुन की संख्या है वही के आधार पर अपन का बायोगैस संयंत्र को आकार छोटे या बड़ो चुन लो चाहिए। ई को निर्माण एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो उनके कम से कम जिनने जब बनवाए हुए तो वे सफल रहे हुए ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में अपन का संयंत्र की रचना कराने हैं। और भैया निर्माण करवे के बाद इस संयंत्र का 10 से 12 दिन तक अपन सूखन देने, जिससे के अगर कहूं जो कम सूख पाओ तो इस संयंत्र में जो है दरारें पड़वे की संभावना ज्यादा होती है। एक बात को और ध्यान रखें भैया कि जहां भी अपन गैस होल्डर खरीद भी जाए तो देख लेवे कि वो गैस होल्डर खा जहाँ अपन खरीद रहे तो जो निर्माण करता है भाई एक अच्छी कोनो जो है मान्यता प्राप्त निर्माण करता को अपन गैस होल्डर खरीदे। ऊखा लगावे के पहला ऊकी अच्छी तरह से जांच कर लेवे कि कहूं भी कोनो भी प्रकार से वह लीक ना करत हो चाहिए। पाइप लाइन खा ई तरीका से अपन बिछावने हैं जिसे के जो है जो अपने वाटर ट्रैप है उतर से जो है वाटर ट्रैप से जल संग्रहण अच्छी तरह से हो सके। अच्छी किस्म के और अच्छे बर्नर लैंप को अपन हाई में उपयोग करने हैं। रसोई घर में एक सेफ्टी प्रेशर गेज आउट है भैया ऊ को प्रयोग अपन रसोई घर में जरूर करने हैं। जनता संयंत्र जो हमारे पंच भैया लगवाउत है तो उमे भैया काहू थे कि कभू कभू लड़का बच्चा खेलत भय या जो छोटे छोटे ढोर बचेरू है पड़ेरू है वे होते पहुंच जात का। ऐसे ही में 2 ठैया भाग होते एक खा बोला थे इनलेट और एक खा बोला थे आउटलेट, यानी जिते से अपन गोबर डारत है और फिर जिते से भैया अपन खाद बन के वो निकलत है बे जगह खुली रहती है। तो उनका जब अपन गोबर डाल देवे उसके बाद भैया कोनो भी लकड़ी के पटिया से जिसे की कोनो भी दुर्घटना उमे न घट सके अपन उखा जो है ढाक के जरूर रखे। अपने संयंत्र में जो पशुन को गोबर है पानी है उखा सही अनुपात में, अब अनुपात कैसो एक भाग पशु को गोबर और एक भाग पानी मिला के समान रूप से मिश्रण तैयार करके इस संयंत्र में अपन का डाल देने हैं भैया। एक बात को और अपन का ध्यान रखने हैं कि जब ई में झाग बनन लगे तो झाग रोकबे के लाने कम से कम समय में जो पाचित्र की सिफारिश है उखा कम स्तर तक भरने हैं, ज्यादा भरो तो भैया उमें झाग बन सकते हैं। झाग समाप्त करवे के लाने रोजीना 1 से 2 बार गैस होल्डर का घुमा देने, तो जैसे उकी हवा निकल जाए तो वो गैस निकलन लगे तो झाग उको समाप्त हो जाए। पहली बार जब अपन इका प्रयोग करो तो उस समय पहला गैस खा बाहर बहन देवे उसे अपन पतो चल जाए जिसे चारों तरफ की जो हवा है बाऊ की जो है साफ हवा होते पहुंचने लगे। गैस खा जब वास्तविक रूप से प्रयोग करें

0: को जो गैस को रेगुलेटर है ऊखा फिर भैया खोल देवे, वो कोई जांच करत रहे, गैस को ढक्कन जब खोलें तो माचिस से जलाएं कि कहूं से रेगुलेटर जो है उनसे गैस तो नहीं निकल रही। इकी नीली जो लो होत है वह जो है वायु रेगुलेटर का घुमा के अच्छी तरह से देख लें ऊखा और नियोजित कर लें, यानी कम ज्यादा जितनी अपन हचाने हैं उतना ही अपन उनको उपयोग करें। तो अगर कहूं अपन ने ई प्रकार से जो गोबर गैस संयंत्र लगाए हैं उनको संचालन करो तो निश्चित है कि अपन का कम से कम गोबर की मात्रा में ज्यादा से ज्यादा गैस मिलवे की संभावना हो सकत है।
1: हमारे किसान भाई सुन रहे थे खेती किसानी, आज का विषय था गोबर गैस संयंत्र से लाभ, किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी आपने खेती किसानी में सुनी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ, आज नौवीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं। गायक हैं सुरेश वाडकर और संगीत से सजाया है सतीश भाटिया ने।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम में है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ, गायक सुरेश पाटकर और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रही हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: विधाता ने मनुष्य को अन्य योनियों के प्राणियों से भिन्न विशेष विभूतियां देकर उसकी रचना की है। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ रचना में से एक है। जीवन की सबसे महान उपलब्धि मनुष्य का जीवन ही है। प्रातःकालीन स्मरणीय महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पाबा। मनुष्य होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। सभी योनियों, जातियों और गतियों में मनुष्य होने का बड़ा ही निराला महत्व है। मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति ही उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। मानव जन्म पाकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसा जीवन बिताते हैं। अपनी पसंद है कि हम पशु योनि की भांति खाएं पिएं, सुख भोगें, विवश होकर जिएं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहें, अथवा विधाता द्वारा प्रदत्त विशेषताओं का सदुपयोग करके चिन्मय स्वरूप अविनाशी जीवन प्राप्त करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक और सउद्देश्य बनाएं। इसके लिए फिर हमें अपने को मानव स्वीकार करना होगा। जो प्राणी अपनी निर्बलता एवं दोषों को देखने और उन्हें निवृत्त करने में तत्पर है, सच पूछा जाए तो वही वास्तव में मानव कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस इंसान में इंसानियत है वही एक सच्चा इंसान है। मानव में स्नेह, प्रेम, त्याग और सेवा के गुण होना उसकी मानवता की एक अनोखी झलक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ एक मानव के चार गुण हैं। इसके साथ ही मनुष्य में अच्छी और बुरी दोनों संभावनाएं हैं। मनुष्य में देवता की दिव्यताएं भी साकार हो सकती हैं और दानव की दानवताएं भी। मनुष्य नेपोलियन, हिटलर, चंगेज खान भी हो सकता है और महावीर, बुद्ध, गांधी भी। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण बुराई की ओर अग्रसित होकर अपना सोना सा शरीर माटी में मिला रहा है और नाना प्रकार के कुकर्म, पाप करने से कोई परहेज नहीं करता। पुण्य पापों का प्रायश्चित है। पुण्य और कुछ नहीं, अपने पापों के प्रति किया गया पछतावा है। जीवन जियो, जागरूकता से जियो, क्योंकि मनुष्य विराट संपदा का धनी है। 5 फीट लंबे इस शरीर में ही विराटता के तत्व छिपे हैं। जिंदगी एक गहरी व्यवस्था है और इसका व्यवस्थापक स्वयं व्यक्ति की ही आत्मा है। पाप और पुण्य का संबंध और बंधन शरीर द्वारा नहीं, मन से होता है। मुख्य आधार है मनुष्य का मन, जहां से पाप और पुण्य दोनों के रास्ते निकलते हैं। मन में बुरा संकल्प है तो पाप है और अच्छा संकल्प है तो पुण्य है। कर्म का मूल स्रोत व्यक्ति का स्वयं का मन है। मानव जीवन यात्रा की टगर में कोई इंसान दिखाई नहीं देता। कोई हिंदू दिखाई देता है तो कोई मुस्लिम, कोई इंसान ईसाइयत का हट कर रहा है। अरे जरा सोचो, क्या आपका अंतर जगत हिंदू, मुस्लिम या ईसाई है? वो तो इन सारे दायरों से पार है। भला असीम कहां से आएगा सीमाओं में? आत्मा पार है, हर मन से, हर वर्ण से, हर वर्ग से। वास्तव में हर एक में अपने भीतर पहले से ही एक पक्ष बना रखा है, इसलिए उसे सारे धर्म गढ़िये के गीत ही लगते हैं। व्यक्ति जब निष्पक्ष होता है तभी असली न्याय होता है। ये न्याय होता है कि सत्य क्या है, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, उसे ढूंढा जाए। लेकिन यहां परेशानी तो ये है कि आदमी जड़ को तो भुला दिया और पानी दे रहा है फूलों को। सिंचाई की मौलिकता होनी चाहिए। आज का सूत्र हमें मौलिकता के मापदंड अपने में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मनुष्यत्व का फूल बहुत मुश्किल से मिलता है।

0: इस फूल को यो ही मत मुरझा देना। मैं मनुष्य हूं और मैंने मनुष्य का शरीर पाया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढ़यिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
5: I am confident that this comprehensive agreement
6: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
5: of our shared future.
2: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति।

0: भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्ष नितिन नवीन ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य द्वादश वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों

पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ यादव ने कल कहा कि प्रदेश केन, बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनि सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com

0: newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत तीन श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। नौतपा का आज नौवां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, इंदौर, देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2026 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि दो खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स अम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केन्द्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं बुंदेली सुगंध के क्रम की ओर। बुंदेली सुगंध में आज बुंदेली वार्ता बुंदेली कवि गंगाधर व्यास आप सबके समक्ष प्रस्तुत है और वार्ताकार है पंडित बाबूलाल द्विवेदी।
1: बुंदेली के रसिया और गुना

कवि पंडित गंगाधर व्यास। बुंदेली भाषा में बुंदेली त्रयी के नाव से जिन तीन कवियन को जानो जात वे हैं ईश्वरी, गंगाधर व्यास और ख्याली राम दरोगा जी। ईश्वरी के बाद लोकप्रियता में दूसरा स्थान गंगाधर व्यास जी को मानो जात। उम्र में व्यास जी ईश्वरी से 18 साल लौरे हते, ख्याली राम जी से वे उम्र में 7 साल बड़े थे। व्यास जी को जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में सम्मत 1899 ईस्वी सन 1842 में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में भव हतो। पढ़ाई लिखाई तो उनकी प्राइमरी में केवल दर्जा 5 ही तक हो पाई। घरेलू परेशानियन ने इन्हें और आगे नहीं पढ़न दो। मऊरानीपुर के श्री बाल मुकुंद जी दर्जी जो उस समय के अच्छे कवि और गुणज्ञ पारखी हते, उनकी रिश्तेदारी छतरपुर में व्यास जी के घर के बगल में हती थी। सो उनको आवो जावो उठवो बैठवो व्यास जी के लिगा ज्यादा रत्तो। ईश्वरी की फागे और उनके फड़बंदी लोकगीत सुनके 16 साल की उम्र से वे ऐसे ऐसे उम्दा उम्दा धरव्वल जीव परव्वल मन भरव्वल ख्यालन के संगे फागे बनाऊन और गाऊन लगे थे, जिन्हें सुनके सुनवे वारन के करेजे में गुथना कैसी लोड लगती। उनने जोन लिखो वे बाल मुकुंद नाम देव जी से पहले जचालो बे वे और समार देते। व्यास जी बाल मुकुंद जी को गुरु मानन लगे। एक दिना उनने उनसे गुरु दक्षा लेवे की बात करी। नामदेव जी कन लगे हम तो दर्जी आए सो दक्षा तो नहीं दे पाए, पे हमारे कैसे तुम पंडित जी हेमराज जू से दक्षा ले लो। व्यास जू हेमराज जू से संस्कारित होके उनसे पिंगल पड़के एक से एक नामी कवित शेर केव तरह की फागे बनाऊं और गाऊं लगे। एक कड़ी की फाग ख्याल, दो कड़ी, तीन कड़ी, चौकड़ी, पचकड़ी, छकड़ी, डिड़खुरियाऊ, टौका, झूमर, झूला, झुलना, डेढ़पदी, ढप और खड़ी पाग, छंडियाऊ फाग लिखन लगे थे। उनकी छुट्टा फागे मुक्तक सुनके तो भूलन पर जाती कि जे फागे ईश्वरी की आए के गंगाधर जू की। नायिका भेद के कुशल पारखी बे हतई थे, संगई संगे वे चतुर चितेरे सौ हते। व्यास जू के संगे बाल मुकुंद जू रत्ते फड़बंदी और दलबंदी फागे गावे के काजे। उनके प्रतिद्वंदी परमानंद जू पांडे छतरपुर के हते। दूसरे उनके मुकाबले में पंडित दुर्गा प्रसाद जू पुरेत जो मऊरानीपुर के हते बे बैठते। उनके बीच को मुकाबला सुनवे जनता पूरी रात टकटकी लगा के कानों देके सुनत रत्ती। रात की तो कतको है, कभू कभू तो दिन चढ़े तक फागे बड़ाई पे नहीं आउती। छतरपुर में जवे विश्वनाथ सिंह जू देव राजा हते, उन्हीं के आश्रय में रहके इनने जितनी फागे रची उनमें से 300-400 फागे अबे गावे वारन के लगा कितों कितों बच पाई और सब हिरा गई। ईसरी मऊ और मेडकी के हते थे सो उन्हें राजा बिजावर को संरक्षण हतो। गंगाधर कभू कभू ईसरी के घरे आउ जात रत्ते। एक दिना वे ईसरी के घरे गए, उनकी पत्नी राजा बेटी ने व्यास जी की खूब आव भगत करी। उदना कोनो त्योहार हतो, राजा बेटी उतना नक सिख से सिंगरी हती, नाक में दुर मुरकी पैरे दसई उंगरियन में मुदरी कन्न फूल लुरकी पावन में पैजना पैरे आंखन में सुरमा लगाए मांग में सेंदुर भरे। ईसरे के बगल में बैठ के व्यास जी से कन लगी लाला फागन में आजकल तुमाओ बहुत नाव सुन रहे, तुम्हारे भैया ईसरी तुम्हारी बहुत ही तारीफ करत, अरे एकाद फाग मोई घो सुना दो। चतुर चितेरे ने फाग तुरंत ही बना दई और तुरंत ही गाउन लगे। बिसरे न मोये हलन दुर की बेसुर की गूंज तनक मुरकी, बिसरे न मोये हलन दुर की दस उंगरी दस मुदरी सो है बजन पैजना के सुर की, दस उंगरी दस मुंदरी सो है बजन पैजना के सुर की, बिसरे न मोये हलन दुर की बेसर की गूंज तनक मुर की कानन।

0: हैं, कानन भर भर कन्न फूल हैं, गोरे गाल सा कर लुरकी, नैनन भर भर सुरमा सोहे, सेंदुर मांग भरी मुरकी, बिसरे न मोए हलन दुरकी, बेसुर की गूंज तनक मुरकी। नैनन भर भर सुरमा सोहे, सेंदुर मांग भरी मुरकी, गंगा धर के संग चलो तो लेवे मौज छतरपुर की, गंगा धर के संग चलो तो लेवे मौज छतरपुर की, बिसरे न मोए हलंदुर की, बेसुर की गूंज तनक मुर की। जा फाग सुन के ईसरी ने ब्यास जू की करियाई ठोक के आशीर्वाद को हाथ उनके ऊपर धर दो। उनने भौजी राजा बेटी और बुंदेली के आदि लोग कवि ईसरी के पांव परे। ब्यास जू के घर से तनक सांव रंग की हती थी, नाव तो उनको भुलन हतो, पर रंग देख के वे एक दिना को ने उनसे कलन कल्लो कह दई। ब्यास जू ने तुरंत ही फाग बना के गा दई, अरे हुई है जान तुम्हारे कारी, अरे मोरी प्राणन प्यारी, हुई है जान तुम्हारे कारी, कारन की कऊ देखी नैया, बसत बसी कत न्यारी, कारी की कऊ देखी नैया, बसत बसी कत न्यारी, कौन बात कारी में नैया, कागोरी में भारी, कारन हुई है जान तुम्हारे कारी, मोरी प्राणन प्यारी। अपने भागन मिलत सवई खो, अपने भागन मिलत सवई खो, कारी गोरी नारी, गंगाधर मन बसी हमारे, गंगाधर मन बसी हमारे, सांवरिया रंगवारी, हुई है जान तुम्हारे कारी, मोरी प्राणन प्यारी। भगवान पे पूरा भरोसा करवे वारे परम संतोष की मूरत ब्यास जू की फाग में देखते ही बनत के वे कितने संतोषी हते। तनक देखो अपन जिनखो खाने और कमाने, जिनखो खाने और कमाने, कैसे जुरत खजाने, जिनखो खाने और कमाने, माया जोर धरी घर भीतर कौ काए के लाने, माया जोर धरी घर भीतर कौ काए के लाने, चलती बिरिया संग न जाने, चलती बिरिया संग न जाने, देख देख पछताने, जिनखो खाने और कमाने, कैसे जुरत खजाने, जीने देह दई मानुष की तिये फिकर में राने, जिनने देह दई मानुष की तिये फिकर में राने, और गंगाधर ईश्वर लय ठाणे, जीखो जितनो चाने, गंगाधर ईश्वर लय ठाणे, जीखो जितनो चाने, जिनखो खाने और कमाने, कैसे जुरत खजाने। ईसरी चौकड़ी फागन के परमाचारी हैं, तो ब्यास जू खड़ी पागन के जन्मदाता माने जात। गुलाबी रंग की लाल धोती, तनीदार मिर्जाई, मूड पे सौंख साई को स्वापा, माथे पे लाल रंग श्री को टीका, जेई उनकी सादा और जेई उनकी बन्नई पोशाक रत्ती। बुंदेली के लोक कवि ब्यास जू संबद 1962 में तो सरग राजा हो गए, पे आज भी हम सब उनकी कविताएं और फागे गागा के गर्वे रत और गाउत सुनत रत। इनकी और भी भागे हैं।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध के इस क्रम में बुंदेली वार्ता। बुंदेली कवि गंगाधर ब्यास जू, वार्ताकार थे पंडित बाबूलाल द्विवेदी। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओ, हम आपको याद दिला दें, सुबह 9 बजे आप सुनेंगे लोक रंग कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे परमेश्वरी दयाल अहिरवार से तमूरा की तान में ख्याल गायन। 9:30 पर एक ही गीत कार्यक्रम में विशाल दरलानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनाएंगे। 10:05 पर पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी आप सुनेंगे। इसमें आप सुनेंगे बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम। वार्ताकार होंगे मुनिंद्र सिंह राजपूत। 10:35 पर श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा। आप सभी

जरूर अपने ईमेल करें और सुनें अपने पसंद के फिल्मी गाने AIR 6415976@gmail.com, ये आकाशवाणी छतरपुर का ईमेल आईडी, आप सुनें और आनंद लें। फिलहाल फिल्म संगीत के क्रम को हम अब शुरू करते हैं और सबसे पहले महुआ फिल्म का गीत आशा भोंसले के स्वर में, गीतकार कमल जलालवादी और संगीतकार सोने कोमी, आइए सुने ये गीत।

0: फिल्म संगीत के क्रम में ये पहला गीत महुआ फिल्म से आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक आकाशवाणी संदेश हम आपको सुनाते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, उससे पहले आकाशवाणी के 90 साल हम इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आपको लगातार जानकारियां प्रेषित कर रहे हैं। आप हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल इंस्टा और एक्स को भी फॉलो करें और लगातार जुड़े रहें आकाशवाणी के विश्व स्तरीय प्रसारण से। एक महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं, लोक सेवा प्रसारण दिवस के संदर्भ में यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये दिवस हम प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर के दिन मनाते हैं। क्या श्रोताओं आपको जानकारी है कि हम क्यों मनाते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस? तो इस संदर्भ में हम आपको बता दें, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1947 में ऑल इंडिया रेडियो समय दिल्ली स्टूडियो की पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में आयोजित किया जाता है ये लोक सेवा प्रसारण दिवस। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बसाए गए शरणार्थियों को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था, क्योंकि वे स्वयं शिविरों में नहीं जा सके। भारत सरकार ने जन प्रसारण के लोक सेवा मूल्य को रेखांकित करने के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। तब से प्रतिवर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये दिन आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे लोक सेवा प्रसारण मीडिया की सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूमिका को भी स्मरण और पुनः जागृत करता है। ये अवसर सभी नागरिकों को समावेशिता, शिक्षा और सूचना की उपलब्धता के महत्व की याद दिलाता है। हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे प्रसार भारती दिन इस दिन अपनी लोक सेवा की प्रतिबद्धता को दोहराती है, जिससे दूर दराज के इलाकों के लोगों तक सूचना, शिक्षा और संस्कृति पहुंचती है। ये दिवस भारतीय सार्वजनिक प्रसारण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्मारक है, जो सूचना, शिक्षा और लोक सेवा के प्रेरणा के आदर्श को आगे बढ़ाता है। तो श्रोताओं, इस क्रम में आकाशवाणी @90 के क्रम में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा हुई। आप जरूर आकाशवाणी से जुड़े ही हुए होंगे और लगातार देश दुनिया में हमारे प्रसारण को सुन रहे हैं। लीजिए फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए, हम साया फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप तक पहुंच रहा है। शिवान रिजवी के बोल, संगीतकार OP नैयर और हम साया फिल्म से ये गीत।

0: अभी अपने मोहम्मद रफी की आवाज में हम साया फिल्म से ये गाना सुना। शिवान रिजवी की बोल, संगीतकार ओपी नैयर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यहाँ रुकते हैं कंतराल के लिए।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे

0: के तो पैसे गवाओगे।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं भीगी पलकें। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, संगीतकार हैं जुगल किशोर तिलक राज।

श्रोता, वैसे ही आकाशवाणी छतरपुर से आपका जन्म जन्मों तक ये रिश्ता बना रहे और ये फिल्मी गाना हम आपको पहुंचा रहे थे भीगी पलकें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। और अब एक और संदेश।

आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए अनुरोध फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

श्रोताओं, ये मधुर गीत आप सुन रहे थे अनुरोध फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत के समापन में हमराज फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंच रहा है महेंद्र कपूर के स्वर में। संगीतकार रवि और गीतकार हैं साहिल लुधियानवी।

महेंद्र कपूर के गाए हुए हमराज फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ पलों में हम आगा

0: आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका

साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।

0: बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा।

0: 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup.

0: लेखनी चलाते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और आपको आज बहुत बेहतरीन कविताएं सुनने का अवसर मिलेगा। इस क्रम में आज सबसे पहले मैं राकेश सोनी जी का आह्वान करना चाहूँगा, जो कि पर्यावरण पर बहुत कुछ लिखते रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो पर्यावरण पर एक कविता प्रस्तुत करें, और इन दो पंक्तियों से मैं उनको बुलाना चाहूँगा। हर फूल महकता है अलग अपनी महक से, कोई भी जमाने में बराबर नहीं देखा। आमंत्रित हैं डॉक्टर राकेश सोनी जी।
1: स्वागत।
2: आदरणीय अरविंद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आजकल गर्मी का मौसम है और प्रचंड गर्मी है, नौ तपा भी चल रहे हैं, उस पर एक छोटी सी कविता है, कुछ दोहे हैं। नौ तपा की लू चल रही, नौ तपा की लू चल रही, तपे धरा आकाश, 50 डिग्री ताप से जीवन हुआ उदास, लू के तीखे बाण से व्याकुल जन परिवार, छाया ढूंढे हर कोई पथिक हुआ लाचार, सूख पोखर सूखती नदियों की हर धार, प्यासे पंछी ढूंढते जल का कहीं आधार, दोपहरी में कम निकले, नसीहत है ये, दोपहरी में कम निकले रखिए तन का ध्यान, साथ हमेशा जल रखिए यही है श्रेष्ठ निदान, नींबू छाछ लस्सियां देती तन को चैन, बेलपना के स्वाद से दूर हो मन बेचैन, जल ही जीवन की सुधा समझो इसका मोल, बूंद बूंद संचित करो यही प्रकृति का बोल, पर्यावरण कहो रहा प्रतिदिन भारी नाश, वृक्ष लगा कर कीजिए हरियाली का वास, पेड़ों से मिलती सदा शीतलता की छांव, इनको कभी न काटिए ये है जीवन ठाव, गर्मी की सुमार से पशु पक्षी बेहाल, जल के पात्र रख दीजिए होगा पुण्य विशाल, जल जंगल और जमीन जीवन के आधार, इनकी रक्षा कीजिए यही सच्चा उपकार, धरती माँ का ऋण चुके करे वृक्ष विस्तार, छाया जल शीतल पवन ये सब मिले अपार, वृक्ष लगाओ प्रेम से हरियाली के संग, धरती फिर मुस्काएगी छेड़ेगी नवरंग, छेड़ेगी नवरंग।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी राकेश सोनी जी ने पर्यावरण के ऊपर बहुत सुंदर दोहे प्रस्तुत किए। मैं अगले कवि के रूप में बलराम सोनी बिसिक जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो आज भी अपने बचपन को याद रख पाते हैं, और अभी भी उनके इस उम्र में भी बचपना उनके जीवन में है। तुम्हें हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है, तुम्हें हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है, नेकियों के रास्ते पर जो चला इंसान बन गया। तो अपने बचपन की कुछ यादें लेकर के आए हैं श्री बलराम सोनी बिसिक जी झांसी से।
3: बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अरविंद भाई साहब जी, आपने हमको हमारी कविता पाठ के लिए बुलाया। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन के वो बीते लम्हे, कि बचपन के वो बीते लम्हे याद अभी तक आते हैं, वो करके याद जिन्हें हम मीठे सपनों में खो जाते हैं, बचपन के वो बीते लम्हे कि बाल सखाओं के संग हमने खेल अनोखे खेले थे, बाल सखा

0: संग हमने खेल नोखे खेले थे, खो गुल्ली डंडा और कबड्डी लुका छुपी अलबेले थे, कभी उन्होंने हमको हमने कभी उन्हीं को ठेले थे, कभी उन्होंने हमको हमने कभी उन्हीं को ठेले थे, खूब लड़ा करते थे फिर भी भरे प्यार के थैले थे, खूब लड़ा करते थे फिर भी भरे प्यार के थैले थे, ऐसे लम्हे बृहद हिलोरे मेरे मन में लाते हैं, करके याद जिन्हें हम मीठे सपनों में खो जाते हैं, बचपन के वो बीते लम्हे के भेदभाव से परे सभी का तन मन कितना उज्जवल था, भेदभाव से परे सभी का तन मन कितना उज्जवल था, थी पाठ्य पुस्तकें सीमित नैतिक शिक्षा पर ज्यादा बल था, पाठ्य पुस्तकें सीमित नैतिक शिक्षा पर ज्यादा बल था, कैसा भी हो जटिल प्रश्न दस उंगली पर उसका हल था, शिक्षक पूछे झट जवाब दे लगता नहीं एक पल था, आज की भारी उन हल्के बस्तों की याद दिलाते हैं, करके याद जिन्हें हम मीठे सपनों में खो जाते हैं, बचपन के वो बीते लम्हे माँ के अमृतमयी हाथों भोजन बनवा कर लाते थे, माँ के अमृतमयी हाथों भोजन बनवा कर लाते थे, मध्यांतर में बैठ सभी सहपाठी मिलकर खाते थे, मध्यांतर में बैठ सभी सहपाठी मिलकर खाते थे, खाई चपाती किसकी ये गुणा भाग न लगाते थे, खाई चपाती किसकी ये गुणा भाग न लगाते थे, तब जाति धर्म से दूर सभी संग समदृष्टि अपनाते थे, जाति धर्म से दूर सभी संग समदृष्टि अपनाते थे, ऐसे निश्चल प्रेम भाव से हो ऐसे निश्चल प्रेम भाव से अब हम वंचित रह जाते हैं, करके याद जिन्हें हम मीठे सपनों में खो जाते हैं, बचपन के वो बीते लम्हे याद अभी तक आते हैं, करके याद जिन्हें हम मीठे सपनों में खो जाते हैं, सपनों में खो जाते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी बलराम सोनी बिसिक जी ने हम सबको बचपन याद दिलाया, और बचपन कितना महत्वपूर्ण समय होता है हर व्यक्ति के जीवन में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और विशेष कवि जो हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित हैं, भीम प्रकाश पाठक जी, बड़े ही संवेदनशील विषयों पर अपनी कलम चलाते हैं, और उनके लिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आमंत्रित हैं भीम प्रकाश पाठक जी, जो अपनी एक श्रेष्ठ रचना हमारे संबंध होते हैं बहन से, बेटियों से, सभी से, तो इन विषयों पर वो अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे।
2: स्वागत है।
3: धन्यवाद। आज की इस काव्य गोष्ठी के कुशल संचालक परम आदरणीय असीम जी, आज ये जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये हमारे पारिवारिक जीवन में भाई और बहन के संबंधों को दर्शाने का एक तरीका मैंने ढूंढा है, जिसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2: स्वागत है।
3: दुख के अंधियारे में ढांढस का दीप है बहने, दुख के अंधियारे में ढांढस का दीप है बहने, वो संकट के गलियारे में समाधान का गीत है बहने, दुख के अंधियारे में ढांढस का दीप है बहने, संकट के गलियारे में समाधान का गीत है बहने, वो खुशियों की सौगात समेटे हृदय में, खुशियों की सौगात समेटे हृदय में, वह अपने भाई के लिए आशीष तिलक की रीत है बहने। भाई और बहन का कितना संबंध होता है, और बहन हमेशा भाई के लिए किस तरह तैयार रहती है कि माँ का ममता सागर, माँ का ममता सागर सदा लिए साथ हैं बहने, माँ का ममता सागर सदा लिए साथ हैं बहने, वो पिताशी पथ प्रदर्शक अनुशासन हाथ हैं बहने, छोटे भाइयों के लिए पिता के समान मार्गदर्शक बनती हैं, पिताशी पथ प्रदर्शक अनुशासन हाथ हैं बहने, और भाई का भी है कर्तव्य निभाती हर दुर्गम पथ पर, और भाई का भी है कर्तव्य निभाती हर दुर्गम पथ पर, भाई का भी है, भाई का भी है कर्तव्य निभाती हर दुर्गम पथ पर, हो मुसीबत भाई पर तो रक्षा कवच है बहने, हो मुसीबत भाई पर तो रक्षा कवच है बहने। और बहन और भाई के बीच में क्या स्थितियां हैं, बहन के बिना घर कैसा होता है, बहन बिना घर आंगन सूना, बहन बिना घर आंगन सूना, नटखटपन है बहने, बहन

0: घर आंगन सूना नटखटपन है बहने, ओ भाई की हंसी ठिठोली सुख का दर्पण है बहने, भाई की हंसी ठिठोली सुख का दर्पण है बहने। और दो परिवारों की चिंता में बहन क्या होती है ससुराल में और मायके में, कि दो परिवारों की चिंता में चिंतित रहती पल पल, दो परिवारों की चिंता में चिंतित रहती पल पल, फिर भी मुख पर आनंद भरा नंदन वन है बहने, फिर भी मुख पर आनंद भरा नंदन वन है बहने। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति।
2: कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे कुशल संचालक श्री अरविंद श्रीवास्तव सिंह जो अमरा से पधारे हैं और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, उनको दो लाइनों से बुलाना चाहेंगे कि अनुभव की मिट्टी में तपकर जो जलते हैं, अनुभव की मिट्टी में तपकर जो जलते हैं, और दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। ये ऐसे ही सिक्के हैं जो अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं, और प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक प्रेम गीत। आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद राकेश जी, मैं एक छोटा सा प्रेम गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ।

0: फिर रसावतरण कवि गोष्ठी कार्यक्रम में मैं फिर से हमारे जो विशिष्ट कवि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनकी ओर बढ़ना चाहूंगा। इन पंक्तियों के साथ मैं राकेश सोनी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी एक रचना और प्रस्तुत करें। वो अपने लक्ष्य की ओर किस तरह से बढ़ रहे हैं, पांव तो अपने बढ़ाओ लक्ष्य पर, पांव तो अपने बढ़ाओ लक्ष्य पर, वह स्वयं ही सामने आ जाएगा। पैर चूमेगी सफलता स्वयं तेरे, कंटकों से जो न तू घबराएगा। आमंत्रित हैं राकेश सोनी जी।
1: भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता है, जब शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी में तकरार होती है, प्यार होता है और पुरानी बातें होती हैं, तो पत्नी किस तरह से अपनी पुरानी यादों को याद करती है

0: कुछ शादी में हुआ उसको किस तरह से कहती है, ये पूरी रचना बुंदेली में है। पत्नी कहती है कि जब तुम मुझको ब्याहन आए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे तब तुम कितना शर्माए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे तब तुम कितना शर्माए थे, मुझको लेने झांसी से महोबा 200 बाराती लाए थे, मुझको लेने झांसी से महोबा 200 बाराती लाए थे, ढोल नगाड़ा बैंड बाजा खूब ही तुम बजवाए थे, ढोल नगाड़ा बैंड बाजा खूब ही तुम बजवाए थे, आने की आहट से बाराती आते थे तो किस तरह से आहट होती थी, आने की आहट से हम सब भी घबराए थे, कमी न रह जाए स्वागत में पलके पांव बिछाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे, मेहंदी थी इन हाथों में, मेहंदी थी इन हाथों में हम हल्दी संग समाए थे। पहले हल्दी ऐसे निचड़ती थी कि हाथ पैर में, पूरे शरीर में हल्दी होती थी। मेहंदी थी इन हाथों में हम हल्दी संग समाए थे, घर आंगन मंडप द्वारे पे बंधन वारे छाए थे, बंधन वारे छाए थे, हर बाराती का स्वागत टीका बंधन हम करवाए थे, हर बाराती का स्वागत टीका बंधन हम करवाए थे, और सात मिठाई 15 व्यंजन की पंगत भी करवाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे, द्वारे पर जब आई बारात मंगल गान सभी जन गाए थे, द्वारे पर जब आई बारात मंगल गान सभी जन गाए थे, एक दूजे को पहना बरमाला आशीर्वाद सभी से पाए थे, आशीर्वाद सभी से पाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे। सिल्क बनारस चंदेरी की साड़ी लहंगा चुंदी संग तुम लाए थे, हार करदनी पायल बिछुड़ी हमको खूब चढ़ाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे। मंडप के नीचे पंडित ने 7 वचन करवाए थे, अग्नि को साक्षी माना हमने पवित्र बंधन में तब हम आए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे। विदाई घड़ी में आंसू सबकी आंखों में आए थे, भैया भाभी मामा मामी चाचा चाची के आंसू भी न छुप पाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे माँ बापू जी रोते रोते। देखिए आप दृश्य के, माँ बापू जी रोते रोते हमको समझाने आए थे, दोनों पक्ष को सम्मान है रखने बिटिया, बस इतना कह पाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे। प्यार रहा विश्वास रहा, इतने सालों में सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है कि प्यार रहा विश्वास रहा सब कुछ तो पाया है हमने, और जीवन की नैया को हम दोनों ने हाथों से संग संग चलाए थे, जब तुम मुझको ब्याहन आए थे।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर। अभी विवाह का बिल्कुल यथार्थ चित्रण कर रहे थे श्री राकेश सोनी जी, और इसी क्रम में मैं एक और विशेष कवि बलराम सोनी बिसिक जी को आमंत्रित करना चाहूँगा इन पंक्तियों से, जो आज भी बहुत विनम्र हैं क्योंकि वो अपने गाँव को कभी नहीं भूल पाए हैं। हमने सूरज की रोशनी में कभी अदब नहीं खोया, कुछ लोग तो जुगनुओं की चमक में मगरूर हो गए। आमंत्रित हैं बलराम सोनी बिसिक जी, जो हमें कुछ गाँव के बारे में अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं।
2: बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भाई साहब अरविंद जी। हमारी जो रचना है उसका शीर्षक है बुंदेली में है, ऐसो नोनो गांव हतो जो हमने छोड़ो बचपन में, वो कह कौन से याद हमें वो आ रो है गो बचपन में, ऐसो नोनो गांव हतो कि घर की गाड़ी हमें खींच रहे उन्ना अपने खुद ही फींच रहे, घर की गाड़ी हमें खींच रहे उन्ना अपने खुद ही फींच रहे, देते हते खेतन में पानी अब गमलन की पौध सींच रहे, देते हते खेतन में पानी अब गमलन की पौध सींच रहे, उते फसल लहरात हती उते फसल लहरात हती पर इते पेड़ हैं शांत भवन में, कई कौन से याद हमें वो आ रो है गो बचपन में, ऐसो नोनो गांव हतो कि उते मुलक है नौकर चाकर फिर भी इते नौकरी कर रहे, उते मुलक है नौकर चाकर फिर भी ते नौकरी कर रहे।

0: दिल को दिल से मिलाइए, मुमकिन हो अगर दिल को दिल से मिलाइए। जीवन के अनुभवों ने यही सीख दी असीम, जो कुछ बुरा हुआ हो उसे भूल जाइए, जो कुछ बुरा हुआ हो उसे भूल जाइए। आज के रसावतरण कार्यक्रम में हमारे बीच में झांसी से श्री राकेश सोनी जी, श्री बलराम बिसिक जी, श्री भीम प्रकाश पाठक जी और मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम आप सबके सामने रूबरू हुआ। और सभी श्रोताओं को मैं आकाशवाणी की ओर से और रसावतरण कवि गोष्ठी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे रसावतरण में कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, राकेश कुमार सोनी, बलराम सोनी और प्रेम प्रकाश पाठक। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में ये देश गान।

इसी के साथ ही ये देश गान अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर।

0: आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: श्रोताओं, लोक रंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं परमेश्वरी दयाल अहिरवार। इनसे हम आपको सुनवाएंगे तमोरा की तान पर ख्याल गायन, और आज आप सुनेंगे हरदौल चरित्र में ये प्रसंग। ढोलक पर हैं देवेंद्र कुमार। तो आइए लोक रंग को शुरू करते हुए परमेश्वरी दयाल अहिरवार के स्वर में ये हरदौल चरित्र तमोरा की तान पर ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक रंग के इस क्रम में परमेश्वर विद्यालय हरिद्वार से ये हरदौल चरित्र तमूरा की तान में, यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है और इसी क्रम में एक अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं एक ही गीतकार क्रम में विशाल ददलानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने। सबसे पहले एक फिल्मी गीत हम आपको सुनवाते हैं और इस गाने को आप सुनेंगे जिसे लिखा है विशाल ददलानी ने।

एक ही गीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विशाल ददलानी। और अभी आप ये जो गाना सुन रही थी, आवाज विशाल ददलानी की थी, गीतकार भी विशाल ददलानी। और इस गाने को नॉकआउट फिल्म से हमने लिया था। और इस गाने में संगीत गौरव टीजे का था। श्रोताओं, आपको बता दें, 28 जून 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में एक सिंधी परिवार में जन्मे विशाल ददलानी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज और एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से बीकॉम किया। आप एक गीतकार के साथ साथ गायक, संगीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। आधुनिक बॉलीवुड संगीत को एक नया आयाम देने वाली मशहूर जोड़ी विशाल और शेखर के लिए आपने अपनी रॉक बैंड पेंट्राग्राम के लिए भी आप जाने जाते हैं। 1994 में आपने इस पेंट्राग्राम को शुरू किया। साथ ही इसमें आपने रॉक इलेक्ट्रॉनिक की बैंड की स्थापना की, जिसे भारतीय स्वतंत्र संगीत का अग्रणी हम मानते हैं। अगर हम बात करें विशाल और शेखर की जोड़ी की, तो 1999 में उनकी मुलाकात शेखर जियानी से हुई। इसके बाद उन्होंने विशाल शेखर के रूप में संगीत की दुनिया में कदम रखा। अगर बॉलीवुड डेब्यू की बात करें, तो विशाल ददलानी ने प्यार में कभी कभी से एक संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 2003 में आई फिल्म झंकार बीट्स के गाने तू आशिकी है के लिए उन्हें फिल्म फेयर आरटी वर्मन अवार्ड मिला। और साथ ही साथ आपने काफी हिट गाने भी दिए, जैसे 10 फिल्म के लिए ओम शांति ओम फिल्म से बचना ए हसीनो, दोस्ताना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, बैंग बैंग, सुल्तान और पठान जैसी लगभग 60 से अधिक फिल्मों में आपने संगीत भी दिया। हम और बात करेंगे विशाल ददलानी के जीवन के बारे में। एक संदेश आकाशवाणी @90 के तहत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार और गायक विशाल दत्तलानी के जीवन सफर की। एक और गाना पहले हम सुन लेते हैं और ये गाना हमने आपको सुनवा रहे हैं ब्रेक के बाद। इस फिल्म से विशाल दत्तलानी की आवाज, गीतकार भी विशाल दत्तलानी हैं और साथ में साथ ही आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाज विशाल दत्तलानी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से एक ही गीतकार, और इस क्रम में विशाद ददलानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए श्रोताओं, हम कार्यक्रम जारी रखेंगे, उससे पहले ये अंतराल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओ, हम बात करें विशाल दत्तानी जी की विभिन्न उपलब्धियों की, तो विशाल जी ने सारे गामा पा और इंडियन आइडल जैसे प्रमुख गायन रियलिटी शो में एक लोकप्रिय जज के रूप में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर हम बात करें आपके निजी जीवन की, तो आपने विशाल जी ने 1999 में प्रियाली दत्तानी से शादी की और 18 साल के वैवाहिक जीवन के बाद आप आपस से 2017 में अलग हो गए। एक और गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये ओम शांति ओम फिल्म से।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एक ही गीत कार्यक्रम में विशाल दत्तलानी के लिखे हुए और संगीतबद्ध और उन्हीं के स्वर में कुछ गाने। ये गाना भी अभी आपने विशाल दत्तलानी के शब्दों में उनकी लिखी हुई कलम से ही सुना। ये ओम शांति ओम फिल्म से गाना के स्वर में, इसमें संगीत और गीत विशाल दत्तलानी और शेखर राव जियानी का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से एक ही गीतकार और अब एक और आकाशवाणी संदेश।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी,
0: आकाशवाणी। आकाशवाणी छतरपुर से एक ही गीत कार्यक्रम में विशाल दत्तलानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं और एक और गाना वैसा भी होता है टू फिल्म से। इसमें आवाज कैलाश खेर की और गीतकार हैं विशाल दत्तलानी और संगीतकार।
2: टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा,
0: आवाज कैलाश की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं एक ही गीतकार क्रम में विशाल ददलानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने। अगर बात करें आपके जन्म की, तो 28 जून 1973 में विशाल ददलानी का जन्म हुआ और आप वर्तमान में भी सक्रिय हैं, गीतकार, संगीतकार और अलग अलग निर्देशन में आप विशाल रूप से काम कर रहे हैं। आप मुंबई में रहते हुए संगीत की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं और रॉक और इलेक्ट्रॉनिक हिप हॉप शैली में आप गायन कर रहे हैं और लगातार आप इस फिल्म में लगे हुए हैं। एक और गाना बैंग बैंग फिल्म से हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें शब्द विशाल ददलानी के हैं।

0: श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं एक ही गीत कार्यक्रम में विशाल दत्तानी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने। आप हिप हॉप सॉन्ग के लिए भी जाने जाते हैं और आप अभी भी सक्रिय हैं इस विशाल जोड़ी के लिए। और श्रोताओं, अब एक और आकाशवाणी संदेश आप तक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: इसी के साथ ही एक ही गीत कार्यक्रम में ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला प्रसारण जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से होगी।

0: साझा के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक खटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम सुहावना मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भंवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकारिणी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड,

0: अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकासखंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क के बल पर कुंडम ने यह उपलब्धि हासिल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 ईबीसी का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरी घाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिनों बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

0: गीत सागर सुनने
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रविंद्र कुमार प्रजापति और हमारे कंपियर हैं सरिंदर सिंह। आइए सुने समय साक्षी।
2: समय

आज के समय साक्षी कार्यक्रम में चर्चा के विषय हैं बुजुर्गों के प्रति व्यवहार सही रखें। एक और चर्चा होगी सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय जीवन कैसे जिए। वार्ता का विषय होगा बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम। होंगे विविध समाचार और फिल्मी गीत। आप सभी श्रोताओं को सुरेंद्र सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर परिवार, हर समाज और हर

आप सभी श्रोताओं को सुरेंद्र सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर परिवार, हर समाज और हर इंसान से जुड़ा है, बुजुर्गों के प्रति व्यवहार सही रखें। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे घर की वो मजबूत नींव हैं जिनके अनुभव और संस्कारों पर परिवार टिका होता है। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों और परिवार के लिए मेहनत की, त्याग किया और हर कठिनाई का सामना किया। ऐसे में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सम्मान, प्यार और अपनापन दें। श्रोताओं, आज की तेज भागती जिंदगी में कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर दो बातें करना भी भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों से पहले अपनेपन और सम्मान की होती है। कहा भी गया है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। बुजुर्गों के अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए उनकी सलाह अक्सर हमें सही दिशा दिखलाती है। अगर हम धैर्य से उनकी बातें सुने तो जीवन की कई परेशानियों को का हल आसानी से मिल सकता है। श्रोताओं, कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग बुजुर्गों की बातों को पुराना सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं। उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उनकी भावनाओं को ना समझना या उन्हें अकेला छोड़ देना, ये व्यवहार न केवल गलत है बल्कि हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। हमारी संस्कृति में हमेशा से बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है। सुबह उठकर माता पिता और दादा दादी का आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा रही है, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लाता है। दोस्तों, बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बिताना, उनकी पुरानी बातें सुनना, उनकी पसंद का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत खुशी देती हैं। अगर घर के बच्चे अपने बुजुर्गों से जुड़ेंगे तो उन्हें संस्कार और जीवन के अनुभव दोनों मिलेंगे। आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को पास होकर भी दूर कर दिया है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने घर के बुजुर्गों को समय दें, उनसे बात करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे परिवार के लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्ग चिड़चिड़े या भावुक हो जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें डांटने या नजरअंदाज करने के बजाय प्यार और धैर्य से समझाने की जरूरत होती है। याद रखिए, जिस बचपन में उन्होंने हमारी गलतियों को सहन किया, उसी तरह आज हमें भी उनका साथ निभाना चाहिए। दोस्तों, एक परिवार तभी खुशहाल बनता है जब उसमें हर पीढ़ी के बीच सम्मान और प्रेम बना रहे। बुजुर्ग हमारे लिए किसी पुस्तकालय से कम नहीं है, उनके अनुभव हमें जीवन की सही राह दिखलाते हैं। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनसे प्रेम और विनम्रता से बात करेंगे, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे और उनके अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान ही सच्चे व्यवहारों की पहचान है। इसी संदेश के साथ अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उन्हें सम्मान दीजिए और हमेशा उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जो आज है शायद कल हमारे साथ ना हो।

0: कल हो ना हो। दोस्तों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना सोनू निगम की आवाज में। जावेद अख्तर के गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लोय ने। श्रोताओं, वृद्धाश्रम जाना किसी बुजुर्ग के लिए अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने परिवार के साथ प्यार और सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अपनों के बीच बुढ़ापा सबसे सुखद होता है, इसलिए हमें समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि बुजुर्गों को घर छोड़ने की नौबत ही ना आए। आइए दोस्तों, इन्हीं विचारों को विस्तार रूप में बता रहे हैं मुनेंद्र सिंह राजपूत। अपनी वार्ता में विषय है बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम।
1: दादा दादी, माता पिता, नाना नानी का हमारे परिवार में बड़ा महत्व माना गया है। हमारी संस्कृति में तो माँ बाप को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारा समाज सदियों से संयुक्त परिवार की परंपरा को महत्व देता आ रहा है। बुजुर्गों की उपस्थिति हमारे घर को संपूर्ण करती है। उनके अनुभवों की हमें कदम कदम पर आवश्यकता होती है। किसी अच्छे कर्म की शुरुआत से पूर्व बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा रही है। उनके अनुभवों से हमें विचारशीलता, धैर्य और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तेजी से बदलते

वक्त के साथ भारतीय समाज में भी कुछ नई प्रथाएं एवं विकृतियां जुड़ी हुई हैं। इस सामाजिक आर्थिक बदलाव के दौर में अब स्त्री और पुरुष दोनों घर से निकलकर काम पर जाने लगे हैं। आज के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दौर में हर व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है, जिसके चलते वृद्ध माता पिता से लोग बिना सलाह लिए काम करते हैं। इससे आपसी रिश्तों में काफी बुरा असर पड़ता है। जिस संतान को उन्होंने पाल पोसकर बड़ा किया, वह आज उन्हें डांट कर चुप कराए तो उनका दिल कितना दुखता होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस उपेक्षा और तिरस्कार का परिणाम वृद्ध आश्रमों के रूप में हमारे समाज में देखा जाने लगा है। विकृत मनोभाव की यह व्यवस्था हमारे इतिहास व मूल्यों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इनके विरुद्ध पश्चिमी सभ्यता से ली गई एक सामाजिक कुरीति है, जो कि हमारे प्रबुद्ध लोगों के लिए बड़े अपमान की बात है। वृद्धाश्रम वह स्थान होता है जहां उम्रदराज लोग को एक उनके बच्चे छोड़ आते हैं तथा एक निश्चित रकम चुकाकर अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करते हैं। एक गैर सरकारी संस्था उसको चलाती है, वहीं कुछ वृद्धाश्रम सरकारी अनुदानों से भी संचालित हो रहे हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ बाप के कर्ज को बच्चे कभी उतार नहीं सकते, वह आजीवन उनके ऋणी रहते हैं। पर हकीकत यह है कि आज भी कई माँ बाप अपनी जिंदगी बच्चों से दूर वृद्धाश्रम में रहकर गुजार रहे हैं, उस उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा परिवार की और ख्याल रखने की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। अब उनके सामने एक चुनौती होती है कि वह एक बार फिर अनजान लोगों से नए रिश्ते बनाएं और अपना जीवन अपनों के बिना ही गुजर बसर करें। वृद्धाश्रम कोई प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि यह उन वृद्धों के अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा तिरस्कृत वृद्धों का समाज है, जो यह मानते हैं कि वृद्ध माता पिता हमारे सभ्य समाज में फिट नहीं बैठते। यह भारत जैसे देश की विडंबना है कि जिस धरती पर माता पिता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसी धरती पर उनकी यह दयनीय स्थिति है। हमारा समाज इतना अपंग और कमजोर हो गया है कि वे केवल दो प्राणी जिनको कहने मात्र के लिए माता पिता कहते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यह हमारे समाज की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। वृद्ध माता पिता की चाहत सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहने की, उनका प्यार और अपनापन पाने की होती है। वे केवल वह संरक्षण और प्यार पाना चाहते हैं जो कभी उन्होंने अपने बच्चों को दिया था। हम इस बात का अंदाजा स्वतः ही लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल व मेहनत से अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी अपने बच्चों को पढ़ाने, उनकी अच्छी नौकरी लगाने तथा उनकी शादी में खपा देते हैं, मगर यही संतान बड़ी होकर दुनिया की मोहमाया में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वृद्ध माँ बाप इन्हें बोझ लगने लगते हैं तथा वह किसी तरह से उनसे छुटकारा पाने के लिए वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं। यह भी देखा गया है कि वृद्ध आश्रम में निम्न गुणवत्तापूर्ण भोजन और उनकी अपर्याप्त मात्रा की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। शयन कक्षों और शौचालयों की साफ सफाई उचित प्रकार से नहीं की जाती, जो निश्चित ही बीमारियों का एक कारण बनती है। दोस्तों, अब हम वे कारण समझते हैं जो हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, वृद्धाश्रम एकल परिवार प्रणाली के उद्भव का एक परिणाम है। पारिवारिक उपेक्षा, बेहतर अवसरों की तलाश में बच्चों का पलायन, परिवारों का विघटन और शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी आदि के मामले में नई पीढ़ी के साथ तालमेल ना बिठा पाना जैसे अन्य कारण वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धाश्रम की ओर जाने को विवश करते हैं, जहां वे अपने जैसे अन्य लोगों के साथ रहने को मजबूर हैं। जैसे जैसे भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और परिवार छोटी इकाइयों में बंट रहे हैं, आमतौर पर शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रमों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। हालांकि इन वृद्धाश्रमों के संबंध में नियामक निरीक्षण की अनुपस्थिति, स्पष्ट रूप से स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं की कमी और स्वास्थ्य देखभाल के उपायों की अनौपचारिक प्रकृति के कारण बहुत संभव है कि यहां रहते वृद्धों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता हो। वृद्ध हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, परंतु अवस्था ढल जाने के पश्चात कई बार इन्हें समाज में गैर जरूरी मान लिया जाता है। एक व्यक्ति जो अपने समाज में
एक संसाधन के तौर पर कार्य कर रहा था।

0: अचानक ही समाज पर बोझ लगने लगता है। भारतीय परिदृश्य में वृद्धों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी रूपों में दिखाई देती हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों की स्थिति बदतर होने के पीछे एक बड़ा कारण प्रवासन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र व्यापक रूप से रोजगार सृजन में अक्षम है, इसके चलते अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बूढ़े माता पिता कई बार अकेले रह जाते हैं। माता पिता अपनी सारी जिंदगी बच्चों का भविष्य संवारने में लगा देते हैं बिना किसी लालच के, मगर आजकल के बच्चे इतनी इच्छा शक्ति नहीं जगा पाते कि माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल भी कर सके। आजकल मनुष्य इतना भौतिकवादी हो गया है कि वह केवल भौतिक सुखों की कामना करता रहता है। इन भौतिक सुखों की उपस्थिति में अपने बीवी बच्चों के साथ दिन गुजर बसर करना चाहता है। उनके सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि वह इन्हें इन्हीं भौतिक सुखों के आगे अपने माता पिता को रोड़ा समझने लगता है। उनकी बुढ़ापे की बीमारियों को वे झेलना पसंद नहीं करते। यही बच्चे यह भूल जाते हैं कि बचपन में ना जाने कितनी ही बीमारियों को उनके माता पिता ने हंसते रोते दूर किया था, उनके ऊपर आने वाली हर मुश्किल को दूर किया था। चलिए अब हम इस समस्या के निराकरण पर बात करते हैं। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को बस इतना ही सोचने की जरूरत है कि अपने बच्चों में ही अपने बूढ़े माता पिता को देखें। हमें एहसास होगा कि हमारे बच्चों से काफी कम जरूरत हमारे बुजुर्ग माता पिता को है। हमें अपनी अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है। जब हम उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी रुपया पैसा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक वैसे ही तत्परता हमें उनके संरक्षण में और स्वास्थ्य को सुधारने में दिखानी चाहिए। पुरानी व नई पीढ़ी के मध्य नैतिक मूल्यों का संतुलन साधकर बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन दिया जा सकता है। जिस उम्र में उन्हें संवेदना की सर्वाधिक आवश्यकता है, उस उम्र में उन्हें कोई सुनने वाला तक नहीं होता। यह एक बड़ा संकट है। जीवन के अंतिम क्षणों में एक वृद्ध को जिस लगाव, स्नेह और अपनेपन की आवश्यकता होती है, वह उनका अपना परिवार ही दे सकता है। वृद्धाश्रम में वे रह तो लेंगे, लेकिन वह मानसिक सुख वहां नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि परिवारों में अपने घर के बुजुर्गों के प्रति नैतिक दायित्व का विकास हो सके। समाज का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो बच्चे विदेशों में कामकाज करते हैं, वे अपने साथ माता पिता को नहीं रख पाते। वे उन्हें वृद्धाश्रम में रखते हैं ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। इसके लिए वे हर महीने उनके लिए खर्च राशि भी भेजते हैं। वृद्धाश्रम का प्रबंधन होने से उन वृद्धों के लिए एक सहारा हो गया है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि वृद्ध आश्रम प्रत्येक बुजुर्ग के लिए नहीं है। अतः हमें बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाने से रोकना होगा, तभी हम समाज को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सही दिशा और सुलझी हुई सोच प्रदान कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि वृद्धजनों के प्रति सामाजिक व्यवहारिक बेहतर हो सके और लोगों को आत्मिक रूप से जागरूक बनाया जा सके। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करना तथा उनकी हर ख्वाहिश को पूर्ण करना एक संतान का दायित्व होता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन्हें सम्मान दें तथा उम्र के इस पड़ाव में उनकी बात माने, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखें तथा इनके आशीर्वाद से ही जीवन जिएं, तो हर सपने को साकार किया जाना संभव है। हमें अपने मूल्यों को फिर से समझने और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जिससे वृद्ध माता पिता अपना मन महसूस कर वृद्धाश्रम में जाने की बजाय खुशी खुशी अपने बेटे और बेटियों के साथ रह सकें।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुनेंद्र सिंह राजपूत की वार्ता, बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम। आइए अब चलते हैं दूसरी चर्चा की ओर, सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय जीवन कैसे जिएं। श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव से जुड़ा है, सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय जीवन कैसे जिएं। सेवानिवृत्ति यानी नौकरी या व्यवसाय से औपचारिक रूप से मुक्त होना। बहुत से लोग इसे आराम का समय मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये जीवन का एक नया अध्याय होता है। यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए तो व्यक्ति न केवल

स्वस्थ और प्रसन्न रह सकता है, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। श्रोताओं, सेवानिवृत्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है दिनचर्या में अचानक आया बदलाव। वर्षों तक नियमित कार्य करने के बाद जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं तो कई लोगों को खालीपन महसूस होने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि जीवन को नई दिशा दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। सक्रिय जीवन का आधार अच्छा स्वास्थ्य होता है। रोजाना सुबह की सैर, योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित शारीरिक गतिविधियां बढ़ती उम्र में भी ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करती हैं। इसके साथ ही मानसिक सक्रियता भी उतनी ही आवश्यक है। किताबें पढ़ना, समाचारों से जुड़े रहना, नई चीजें सीखना, पहेलियां हल करना या किसी नई भाषा या कौशल को सीखना मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। आज डिजिटल युग में ऑनलाइन माध्यमों से भी नई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पुराने शौकों को समय देना भी एक अच्छा विकल्प है। बागवानी, संगीत, चित्रकला, लेखन, फोटोग्राफी या हस्तकला जैसी गतिविधियां न केवल समय का सदुपयोग करती हैं बल्कि मन को भी प्रसन्न रखती हैं। दोस्तों, सामाजिक जुड़ाव भी सक्रिय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों से मिलना जुलना, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, सामुदायिक सेवा करना या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना व्यक्ति को अकेलेपन से दूर रखता है। समाज के लिए किया गया छोटा या छोटा सा योगदान भी जीवन में संतोष और उद्देश्य की भावना पैदा करता है। बुजुर्गों के पास अनुभवों का अनमोल खजाना होता है। अपने अनुभवों और ज्ञान को युवा पीढ़ी के साथ साझा कर सकते हैं। बच्चों और युवाओं का मार्गदर्शन करना, उन्हें जीवन के मूल्य सिखाना तथा परिवार के सकारात्मक वातावरण बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रोताओं, आजकल कई वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद स्वरोजगार, परामर्श सेवाओं या अंशकालिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। इससे न केवल उनकी सक्रियता बनी रहती है बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच। उम्र केवल एक संख्या है। यदि मन उत्साहित और सक्रिय हो तो जीवन के हर पड़ाव का आनंद लिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति को जीवन का अंत नहीं बल्कि नए अवसरों की शुरुआत समझना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, सेवानिवृत्ति के बाद का समय स्वयं को जानने, अपने सपनों को पूरा करने और समाज को कुछ लौटाने का सुनहरा अवसर है। सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें और जीवन के हर पल का आनंद लें और हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहें इस तरह से।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पिया का घर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए दोस्तों अब चलते हैं विविध समाचारों की ओर। श्रोताओं, यदि आपकी उम्र 75 साल से ऊपर है और आपकी आय सिर्फ पेंशन या बैंक ब्याज से होती है तो टैक्स भरने की चिंता छोड़ दीजिए। ऐसे पेंशनर की टैक्स गणना संबंधित बैंक खुद करेगा और टीडीएस आदि जो भी टैक्स बनेगा उसे काट लेगा। इसके लिए आपको सिर्फ अपने बैंक से संपर्क कर आयकर विभाग का फॉर्म 125 भरना होगा। इससे आपका समय बचेगा, परेशानी भी कम होगी। दरअसल ये नया नियम ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को टैक्स संबंधी परेशानियों से मुक्त करने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए लाया गया है। खासकर वे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं। हालांकि यदि पेंशन ब्याज के अलावा आपकी आय के अन्य स्रोत हैं तो आपको अपने बैंक के सीनियर सिटीजन डेस्क को बताना होगा। ये बातें जो बुजुर्गों को जानना जरूरी है। फॉर्म भरने के दो तरीके, अपने पेंशन वाले बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हैं। हर साल भरना होगा, ये फॉर्म हर साल एक बार जमा करना होगा, बल्कि बैंक को पता रहे कि छूट का लाभ लेना चाहते हैं। एक बैंक जरूरी, अगर आपकी पेंशन और ब्याज अलग अलग बैंकों से आता है तो फॉर्म 125 लागू नहीं होगा। आय का स्रोत बदले तो ये करें। यदि साल के बीच में आपकी आय में कोई नया स्रोत जैसे कि किराया, प्रॉपर्टी बिक्री, शेयर प्रॉफिट आदि जुड़े तो अपने बैंक को बताएं। ऐसी स्थिति में आपको अपना फॉर्म 125 वापस लेना या अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए सुरेंद्र सिंह को अपने प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति के साथ। नमस्कार।
1: समय

अभी आप सुन रहे थे पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के ईमेल और खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं आपकी पसंद लेकर मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेंद्र अहिरवार। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार और एक नई सूचना आप सबके लिए। आप सभी आकाशवाणी छतरपुर की फेसबुक पेज पर भी अपनी पसंद हमें लिखकर भेज सकते हैं। आकाशवाणी का फेसबुक पेज आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक में आपको लिखना है आकाशवाणी छतरपुर और आकाशवाणी का मोनो आपको मिल जाएगा और इसमें आप आकाशवाणी का जो आपकी पसंद कार्यक्रम 10:35 से है आप इसमें मैसेज करके अपनी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और कुछ फरमाइशें हमें फेसबुक पेज पर प्राप्त हो गई हैं। ये पहली फरमाइश के रूप में हमें मिली हुई है रामलोहिड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। और आप सब सुनना चाह रहे हैं खुदा गवाह फिल्म का गाना। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं और इसमें संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। और कुछ और मेल हमें मिले हुए हैं। पहले हम फेसबुक की ये फरमाइशें उठा लेते हैं। ये और फरमाइश मिली है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर यूपी से। मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरा रानी और हिना कौसर। एक और फरमाइश हमें प्राप्त हुई है, लिख भेजी है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया। और एक और ये फेसबुक पर अपनी फरमाइश हमारे मित्र हम तक लिख भेजते हैं। ग्राम दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, राजेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, लक्ष्मोनी, बलवीर सिंह। और इसी गीत में एक और फरमाइश फेसबुक पेज पर जिला मुरादाबाद ग्राम

दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून अपनी फरमाइश से हम सब जुड़ चुके हैं। आप सभी भी जुड़ सकते हैं आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज से। एक और फरमाइश हमें मिली हुई है, लिख भेजा है, ग्राम पोस्ट अक्टोहा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर से सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, रवि कुमार, सोनू कुमार, धर्मेंद्र कुमार साहू, राघवेंद्र, भावना, यशदीप और साहू परिवार के साथ ही इसी गीत में अपनी फरमाइश फेसबुक के पेज से ऊपर कोट मोहल्ला चौक नुटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान अब्बासी परिवार के सदस्य, गांव ठांडी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और कीरत अवाना अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। एक और ये अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है फेसबुक पेज से आपका मैसेज, लिख भेजा है, पटेल नगर मलूट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू, गुड्डू और डुड्डू अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं। इसी गीत में एक और फरमाइश हम तक मिली हुई है, तालगांव भांडेर दतिया से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, छोटू गुड़िया, प्रताप सिंह नागल फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर यूपी से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन लवेश, मुनीश देवी प्रजापति जुड़ चुकी हैं और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजे हैं। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हृतेश सागर, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना भारती, ओमपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश, प्रथा और इनके पूरे गांव के साथी भी जुड़े हुए हैं। और एक और ये फेसबुक पेज पर फरमाइश मिली है, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतका खोरवाल अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। नेपा नगर पद्मा टॉकीज मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश कौशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगला बेन जी, राजेंद्र जी शाह, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। किशनगंज बिहार से हमारे दोस्त जुड़े हुए रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी, एक और साथी हम तक जुड़ चुके हैं, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, मलियान साधना मेरठ से जुड़े हुए हैं, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जी वी एम जैन और इनके परिवार वाले। इसी गीत में ये हमारे मित्र हैं शेरवान स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनबर, मास्टर लुबना अंसारी, आली अंसारी, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर और श्रीमती वंदना गौहर भी जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज से। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान और हमारे साथी जुड़ चुके हैं। लिख भेजा है ये फेसबुक पेज से अपना संदेश, भंजन मऊनाथ यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ यूपी से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और इसी बीच में कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक, निर्भय गुप्ता और एक और फरमाइश के साथ हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुल वंतीन देवी साहू, देवेंद्र कुमार, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश कुमार और अपने परिवार के और भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के साथी हैं सुरित रमेश कुमार साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता और ऋषिवन दास, चंद्र हांस, हीरेंद्र कुमार, त्रिलोक कुमार साहू। एक और मेल फेसबुक पेज से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, अनिल खुशबू, आरोही स्वाति मौर्य, आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइशें ईमेल पर आप सभी भेज सकते हैं air.chhatarpur1976@gmail.com और फेसबुक पेज आकाशवाणी छतरपुर। फेसबुक पेज से एक और फरमाइश हमें मिली हुई है पूजा रेडियो श्रोता संघ के साथी पलेरा माफ कीजिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव।

कुछ और फरमाइशें हमें प्राप्त हो रही हैं, हम इन्हें भी शामिल करते हैं। ये फरमाइश हमें मिली हुई है धारी नांदूरा महाराज से, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, और इसी गीत में फाजिल का पंजाब, खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालनी टिवांशी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक अपनी फरमाइश के साथ फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, पुनावली पुणे से अजय सोन बने, करिश्मा सोन बने, अविका विशाखा सोन बने और इनके साथ ही। और इसी गीत में सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और आराध्या चौहान भी जुड़ चुकी हैं। और इसी गीत में और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फेसबुक पेज आकाशवाणी छतरपुर।

श्रोताओ, अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं, हेलो ब्रदर फिल्म से बाबुल सुप्रियो, जसविंदर नरूला की आवाजें, गीतकार फैज अनवर, संगीतकार साजिद वाजिद। अब हम मेल की तरफ बढ़ते हैं और आकाशवाणी छतरपुर से आपके पसंद कार्यक्रम में मेल air.chhatarpur1976@gmail.com आप हमें मेल करें और लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं अपनी पसंद के गानों के साथ। ये मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है हमारे श्रोताओं ने, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर चावला, बनी चावला, लोकेश और वंशिका जोशी, और इसी गीत में पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सुतासु, अर्णुमानम, सत्यमानंद भी जुड़े हुए हैं, और इसी गीत में मेलगंज टुंडवारा से शाहीन फातिमा, अदनान और अनुखान जुड़ चुकी हैं, और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज आयुषी गुप्ता, और अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं मकनियापुरा महोबा से के सज्जन, केशव प्रसाद गुप्ता, ऋषभ छावला, सुधा और कविता। अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने, रजाक मोहम्मद, शमीन बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान हमें लिख भेजते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। मेल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, लिख भेजा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी ने, अपनी फरमाइश में कोई भी गाना पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ भाटापारा देवरी से गन्नूराज रजक की अरसा हुआ, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री और इनके परिवार वाले। इसी गीत में बसारी दरवाजा छतरपुर से मेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं राकेश वर्मा और कपूर सिंह घोष, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीन और राहुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। इसी गीत में किशोर नगर अमरावती के हमारे मित्र हैं हीरामन शेंडे, शिला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोंडा ने जुड़े हुए हैं। इसी गीत में शास्त्री नगर विन शहर से किशन सकपाल, आशा सकपाल, सोनिया, साईराज और विशाल सकपाल भी जुड़ चुके हैं। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, गौरी सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं, मेल है शास्त्री नगर विन शहर से किशन और विशाल, और इसी गीत में मामूलबाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े।

संतरा भोजने पीएस नोहाकर। और इस गीत में राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरों ने शाह शबिश्ता मोहम्मद नवीन, पालक लुबना यश मंसूरी भी जुड़ चुके हैं। और एक और मेल है बस स्टैंड बुजुर्ग हनुमानगढ़ फाजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा भी जुड़े हुए हैं। और इस गीत में मृतला महोबासी, नरसिंह राजपूत दादू और विनीता सिंह राजपूत भी जुड़ी हुई हैं मेल के माध्यम से। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी भी जुड़ चुके हैं। मेल आपने लिखा हुआ है, लेख भेजा है परभणी महाराज से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतीश संघई और इनके साथी। और इसी गीत को पसंद किया है गौना कुशमार थाना सौजना तहसील मैरोनी, ललितपुर से कैलाश नारायण रामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमार, अखिलेश, लखला चाना, आकाश, रानीपरी, सूरभी पायल और इनके परिवार वाले। एक और मेल मिला हुआ है रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानी, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू भी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पुष्पेंद्रमणि, पारसमणि, नौखीलाल वर्मा ने और अपनी फरमाइश के साथ। आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित कोशी गोस्वामी, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू प्रियल, वंदना, दिव्यांश विश्वकर्मा फेसबुक और ईमेल से जुड़ चुके हैं। आपको भी आपकी पसंद का गाना ममना सरीला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हम पहुंचा रहे हैं, आप जरूर अपनी पसंद सुनेंगी। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा, पीपर लोड, सरगांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में ये मेल मिला हुआ है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र के श्रोताओं का, संतोष खरसे, विनोद खरसे। और एक और मेल मिला हुआ है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े अपनी पसंद हम तक लिख भेजते हैं। गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी, सीता और गीता भी जुड़े हुए हैं इसी गीत में। सनावत से शेख, मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना जुड़ चुके हैं। और संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, जीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। आप हैं लिख भेजा है, एक ही मेल कई बार मिला हुआ है, एक और मेल मिल चुका है चंडीगढ़ सिटी से सतीश, अनेजा, विमला, अनेजा और शेफाली अरोड़ा। आप हमें फेसबुक से भी जुड़ रहे हैं और आकाशवाणी छतरपुर का पेज आकाशवाणी छतरपुर, इस पर अपनी फरमाइश हमें लिख भेजते हैं। और ये पसंद मिली है कबनपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण, अनीता और राहुल भाविष्टे, इसी गीत में लिख भेजा है अपनी फरमाइश। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कमल, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम बाकी, अब्दुल कलाम जी अपनी पसंद के साथ जुड़े हुए हैं। और चौखड़ा धाम खालोनी कॉलोनी सनावत से कृष्ण, श्री कृष्ण, पाल सिंह चौहान, तारा देवी, नव उदित सिंह चौहान, बेबा पाल सिंह चौहान, ध्रुवी प्रद्युम सिंह चौहान। और इसी गीत में गोवर्धन कॉलोनी शाहधरा से तुलसी मस्कीन भी जुड़ चुके हैं। और इसी गीत में जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव और इनके परिवार वाले भी जुड़ चुके हैं। गांव लसूड़िया पाता नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव और रमेश चंद्र डांगी, कृतिका डांगी भी जुड़े हुए हैं अपनी फरमाइश के साथ हम तक लिख भेजते हैं। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हिमलता, डिम्पल देवांगन, गांव भोजपुर तगा चिकलाना, सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार अपनी फरमाइश के साथ जोड़ चुके हैं। और इसी गीत में सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, मुगलपुरा बागपुर से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके परिवार वाले, इसी गीत में लिख भेजा है उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, अन्नू और इनके परिवार वाले, इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ। कवर कॉलोनी बड़भाई जिला खरगोन एमपी से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, श्रीमाली भी जुड़ चुके हैं। और इसी गीत में लिख भेजा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी और इनके परिवार वाले फेसबुक से जुड़े हुए हैं। और अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं गांव गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती अजीता राव, जया रावत और अंतिमा रागनी अनन्या काव्य से अमर सिंह रवि भी जुड़े हुए हैं अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। असीत अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। इसी गीत में लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने मुरादाबाद से ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अहमद अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार वाले। इसी गीत में रेलवे रोड डुगंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दरी उल हसन, बेगम शबनब अनवार, नजमा बेगम मात और भाभी सरिता गौतम भी जुड़ी हुई है। चंदौसी रोड चमन
पूरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बेटी शालू गौतम भी जुड़ी हुई हैं, और हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक, मीका विरक गांधी चौक रोपड़ पंजाब से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश बरेली के कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी दिवाकर और इनके परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं और इसी गीत में जुड़ चुके हैं हमारे

ये मित्र हैं रावर करनाल से विनोद लखनपाल, कोई भी गीत भी सुनना चाहते हैं बिल्कुल, और ये मैसेज इन्होंने नमस्कार के साथ लिखा हुआ है। ये हमारे मित्र हैं छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से, सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजल, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओ बी बोरगांवकर, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबी जैसी, सीता और गीता भी जुड़ चुके हैं। इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से आकांक्षा मलिक, माही मलिक भी जुड़ चुके हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराज खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इनके परिवार वाले। इसी गीत में बारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान बारसी, इमरान शेख, रेहान करूला, मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब नावाद खान और आप फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू भी जुड़ चुके हैं। इसी गीत में ये पत्र मिला हुआ है नरसिंहपुरवा छतरपुर से, हमारे मित्र हैं दयाशंकर कुशवाहा और इनके साथ हैं रिक्खी राम कुशवाहा। हम आप सबको सुनवा रहे हैं हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना।

बिटू रा दतिया से हमारे मित्र हैं, लिख भेजा है मेहरबान सिंह ने, और इनके साथ इनके और भी साथी जुड़ चुके हैं। और एक और ये मेल हमें मिल चुका है, लिख भेजा है ग्राम खक्कल तहसील कोंच जिला जालौन से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर ने। कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव मेल से जुड़े हुए हैं। गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर से सीताराम नामदेव, सिद्धार्थ नामदेव।

संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संजना भारती, पूर्वी रूही, अनु, अनन्या और इनके बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं मेन मार्केट ग्रामापुर से, सोरई ललितपुर से।

0: हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा।
1: हेलो ब्रदर, इस फिल्म का गाना आपने सुना और फेसबुक और मेल के माध्यम से बहुत सारी फरमाइशें हम तक मिल चुकी हैं, इन्हें हम शामिल कर लेते हैं। लिख भेजा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह ने ये फेसबुक पेज से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक और यश शर्मा ने इसी गीत को पसंद किया। हमारे इन श्रोताओं ने मेल के माध्यम से अपनी पसंद हम तक लिख भेजी है। हमारे साथी हैं नवीन, तेजांश, अनुराग और साकेत और इनके परिवार वाले, हमें लिख भेजा है अजनर, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, और साथ में इनके साथ रॉक स्टार भी जुड़े हुए हैं। अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है मेल के माध्यम से। आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल वर्मा भी जुड़े हुए हैं। फेसबुक पेज से आप हैं पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी और इनके परिवार वाले, और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। आपने मेल लिखा हुआ है जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी ने, और इसी गीत में ये मित्र हमसे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी हम शामिल करते हैं। लिख भेजा है ये मेल है भोला कॉलोनी गरुंधा से विजय कुमार और इनके परिवार वालों ने, और इसी गीत को पसंद किया। मेल के माध्यम से लिख भेजा है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी हमें लिख भेजते हैं बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार से, और इसी गीत में शाहजीनगर देगलू, जिला नांदेड़ से सविता और सुकन्या भी जुड़ी हुई हैं, और इसी गीत को पसंद किया दत्तरंगी, छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा ने, और इसी गीत में एक और मेल है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से। तो श्रोताओं, आज आपकी पसंद में आप जुड़े हुए थे मेरे यानी राजेंद्र अहरवार के साथ। फेसबुक पेज और ईमेल AIR छतरपुर 1976@gmail.com से आप सभी मनभावन कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे भी जुड़े अपनी फरमाइश के साथ। इसी के साथ ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है, अगला प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से होगा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। गर्मी की भीषणता में कुछ शीतलता लेकर आते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम। तो तैयार हो जाइए हमसे बातें करने और हमारी पसंद के गीत सुनने के लिए। तो लगाइए नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आप लोग तैयार है ना? तो चलिए आज हम आपको विषय देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे श्रृंगार के बारे में। तेरी मुस्कान से महके जीवन का हर पल, जैसे फूलों पर ठहरा हो ओस का निर्मल जल। तेरी आंखों में देखा जब प्रेम का संसार, मन में खिल उठे सहसा खुशियों के हजार। तेरा स्नेह मेरा सबसे सुंदर श्रृंगार, तुझसे ही जीवन में आया है मधुमय बहार। तो दोस्तों फोन करिएगा और हमसे बातें करिएगा इस विषय पर कि श्रृंगार हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का।
4: हेलो
3: जी, आपका फोन लग चुका है। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। हेलो
4: जी, फोन करें गीत सुने
3: जी। बात आपकी गीत हमारे हैं आज सर
4: जी। बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारे जी। नमस्ते
3: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी
4: जी? प्रेम सिंह सिसोदिया।

0: बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: उज्जैन से
0: जी
1: जी।
0: हाँ
1: प्रेम सिंह जी,
0: जी जी जी
1: आज हमने विषय लिखा है साज श्रृंगार। महिलाएं जो श्रृंगार करती है ना,
0: जी
1: उसके बारे
0: बिल्कुल
1: में बताइए, आपको कैसा लगता है देखकर?
0: जी। महिलाओं को तो ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार की बिना महिला अधूरी होती है,
1: जी
0: लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसे दिखे कि अलग हटके दिखे। हाँ, महिला सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करती है और हर महिला का अधिकार भी है श्रृंगार करना, लेकिन साथ में पुरुष भी इतने मतलब पीछे नहीं हटते हैं ना दीदी, आपको
1: जी
0: बताऊं,
1: जी
0: वो भी तैयार होते हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं और मतलब किसी शादी समारोह में जाते हैं ना, तो
1: जी
0: उसी तरह से वो भी तैयार होके जाते हैं।
1: जी तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना
0: जी बिल्कुल, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार होके जाएंगे ना, तो
1: जी।
0: ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ लोग आकर्षित होंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए।
1: जी जी
0: मैं
1: तो
0: बताऊं, अब मैं कहीं शादी में जाता हूं ना, तो अच्छी तरह से सज संवर के ही जाता हूं, और
1: जी
0: अपने बच्चे हैं, मेरे बड़ी वाली लड़की बिंदिया है, वो भी रेडी होके जाती है, उसके बाद में कृष्णा है, साक्षी है, उसकी
1: जी
0: मम्मी है, मतलब हम सब तैयार होके जाते हैं ना, तो
1: हाँ
0: ऐसा बतलाया जाता है कि हमारी फैमिली सबसे अलग ही दिखती है,
1: अच्छा
0: किसी
1: जी।
0: शादी समारोह हम सब लोग मतलब अच्छे से रेडी होके जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो है, अपडेट होकर जाना और अप टू डेट होकर जाना, यानी
0: जी
1: दोनों
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है ना।
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: आपने फोन किया, आज बात आपकी गीत हमारे हैं, तो अपनी पसंद का कोई गीत हम आपको सुनवाएंगे। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद
0: जी थैंक यू सो मच।
1: जी।

0: सजना के लिए।
1: हेलो
2: हेलो हेलो,
1: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते। हाँ
1: बात आपकी गीत हमारे में, आज हमने विषय रखा है साज श्रृंगार के बारे में।
2: महिलाओं के
1: जी, महिलाएं पुरुष, पुरुष भी तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, तो हम कैसा फील करते हैं, और हम जब कोई बहुत अच्छे से तैयार होता है, मतलब व्यवस्थित होता है, तो कैसा लगता है हमें देखकर।
2: अब प्रमुख रूप से तो उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। अब पुरुषों
1: जी
2: का तो अनुभव थोड़ा सा कम रहता है।
1: जी तो अपना परिचय दे दीजिएगा पहले,
2: जी,
1: बताइए अपने बारे में।
2: नमस्ते जी,
1: जी, बताइए।
2: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
1: योगेश जी
2: जी
1: जी बताइएगा, कैसे हैं वहाँ, गर्मी कैसी हो रही है।
2: बहुत गर्मी है, 43-44 डिग्री तापमान चला जा रहा है।
1: जी, तो इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि ऐसी गर्मी में यदि हमें कहीं शादी विवाह या फंक्शन में जाना है, तो हम कैसे तैयार हों कि हम लास्ट जब लौटें तब भी उतने ही फ्रेश फ्रेश रहें।
2: बड़ा
1: जी योगेश जी,
2: उसमें काफी जो धूप होता है, पसीना आता है, तो
1: जी
2: वो काफी चैलेंजिंग होता है। स्थिति को बनाए रखना।
1: जी जी जी
2: और रही बात साज श्रृंगार की, तो वो तो अपने अपने जो प्रदेश है या फिर अपने क्षेत्र हैं।
1: जी
2: हमारे यहाँ जैसे प्रमुख रूप से तो ग्रामीण परिवेश में, हमारे यहाँ ही नहीं लगभग सभी जगह
1: जी
2: साड़ी सबसे प्रमुखता होता है एक श्रृंगार के रूप में महिलाओं का।
1: जी जी जी
2: और पुरुष जैसे हम लोग हो गए तो जींस हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो
1: जी जी जी
2: यही चीजें बहुत आयत में चलती हैं।
1: जी
2: और श्रृंगार में तो जितना हम कर ले उतना कम लगता है।
1: जी क्योंकि 16 श्रृंगार माने गए हैं ना महिलाओं के,
2: बिल्कुल
1: तो
2: बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है
1: जी,
2: वो तो इन्हीं सब चीजों पर कह सकते हैं टिका हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी, आपको ये नहीं लगता कि आजकल लोग थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं,
2: हाँ,
1: जो
2: आधुनिकता है और तरह तरह की जो आजकल की जो हम आधुनिकता में जो देखते हैं,
1: जी
2: वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों को भी ट्रेंड में लेते हैं जिनसे हमारा ज्यादा मेल नहीं खाता है।
1: जी जी जी
2: जो
1: तो
2: पारंपरिक परिधान है
1: जी
2: वो मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी जब हम पारंपरिक रूप से तैयार होते हैं शादी विवाह में, तो अलग ही दिखता है ना, पहचान ही नहीं आते
2: जी
1: कि अरे वो ये वही है।
2: जी जी जी
1: तो फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और
2: धन्यवाद।
1: जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे आ रहे, आपकी सेवा में हम हैं।
1: नमस्कार मैम
0: जी।
1: जी, मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परियार बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल जी,
1: नहीं
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: जी मैम, नमस्ते। शिवपुरी
0: जी, मोतीलाल जी कहाँ से, जगह कहाँ है आपकी?
1: जिले के रामखेड़ी मारा से मोतीलाल
0: खेड़ी
1: परियार
0: से।
1: बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, कैसे हैं मोतीलाल जी?
1: और कृपया कृपया मैम ईश्वर की और आप लोगों की।
0: जी, हम लोगों का सबका स्नेह है आपके साथ। अच्छा मोतीलाल जी, आज जैसे आपके नाम में ही मोती लिखा हुआ है, तो आज
1: जी
0: हम साज और श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम श्रृंगार करते हैं या बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, तो हमें कैसा फील होता है और लोग हमें किस तरह से देखते हैं। आज हम वही बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी मैम, तो
0: बताइए, महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं और जब वो निकलती हैं घर से, तो कभी वेणी लगाती हैं, कभी सिंदूर, कभी बिंदी लगाती हैं, तो कैसा लगता है देखकर?
1: जी मैम ऐसा ही है कि बढ़िया लगता है। वो जो बड़ी श्रृंगार करके जाते हैं तो मिलते जुलते रिश्तेदारों में
0: जी,
1: और
0: जी।
1: बढ़िया।
0: और मोतीलाल जी, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, पता है? जब पैरों में हम पायल पहनते हैं, पहले देखा था कि बहुत मोटी मोटी पायलें पहनी जाती थी, तो
1: जी
0: जो
1: मैम, आप अब भी तो पहनती है ना।
0: जी तो जो पहनती है ना, उनके कमर में, पैरों में उनके दर्द नहीं होता है, लेकिन जो नहीं पहनती है उनको ज्यादातर शिकायत रहती है। और यदि शिकायत रहती है और वो अच्छी मोटी मोटी पायलें पहन लेते हैं, पहले तो जैसे करधोनी भी पहनी जाती थी, करधन बोलते हैं जिसको, तो ये अपनी जो स्पाइन है, अपनी रीढ़ की हड्डी, ये दबी रहती थी और ये बहुत सारे दर्द हमें नहीं होते थे। आप क्या बोलते हैं इस बारे में?
1: जी मैम, क्या है वो, इसमें हमारे गांव में तो सब औरतें पहनती हैं अब।

0: भी पहनती हैं
1: जी जी,
0: और जो बाजार का आदमी वो बाजार में कुछ नहीं पहनती
1: हाँ।
0: वहाँ में तो अच्छी लगता है उनको पहनना
1: जी, तो वो स्वस्थ भी रहती हैं आप देखिएगा, है ना,
0: वो स्वस्थ रहती हैं। वे तो उनका शौक यही है मैडम, श्रृंगार उनका।
1: हाँ तो देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, है ना, पहले तो गले में हंसली और ये सारी चीजें पहनी जाती थी स्वस्थ रखने के लिए। तो मोतीलाल जी आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए, और
0: नमस्ते,
1: सुनते रहिएगा आकाशवाणी।

0: हेलो
1: जी, बात
0: जी, नमस्कार।
1: आपकी दी हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है कि आज बात आपकी गीत हमारे होना है।
1: जी,
0: जी
1: बिल्कुल याद है।
0: जी
1: नियमित श्रोता हूँ इसलिए याद रहता भी है
0: रखते
1: और
0: हैं,
1: रखना भी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो आज मैं आपका परिचय जानने से पहले विषय बता देते हैं। आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात करेंगे आपसे। अब अपना परिचय दे दीजिएगा मुझे।
1: जी, मैं पुरानी दलिया छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैं।
0: रशीद अहमद जी,
1: जी
0: हाँ, छतरपुर से
1: जी छतरपुर से। जी,
0: जी, बताइए रशीद जी।
1: साज और श्रृंगार मतलब ये
0: 16 श्रृंगार होता है
1: जी
0: ना, जो हम बेड़ी लगाते हैं, चूड़ी पहनते, बिंदी महावर लगाते, मेहंदी लगाते, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं जी।
1: अच्छा। श्रृंगार तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा श्रृंगार तो आपका सादगी और आपका चरित्र सबसे बड़ा श्रृंगार
0: जी जी जी
1: है
0: जी
1: ना। सारी चीजें अपन लोग करते हैं ठीक है, लेकिन
0: जी
1: सबसे बड़ा जो है वो तो आपका उसमें झलकना चाहिए आपके किरदार से।
0: अरे वाह वाह जी, यही तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जो कि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो जाएं उससे। जी
1: जी, है ना।
0: तो
1: बाकी बाहरी रूप रंग तो ठीक है, आदमी को अपना मेंटेन करना चाहिए, है ना।
0: जी
1: ईश्वर के दिया हुआ रूप रंग होता है
0: जी जी जी
1: जो जैसा है उसको अपन वैसा स्वीकार करें और उसको अपन थोड़ा बहुत मेंटेन भी किए रहे
0: हाँ
1: वक्त के हिसाब से, है
0: जी जी जी
1: ना। जैसे धूप पड़ रही है तो उसमें अपनी सुरक्षा रखें अपन, या बारिश में इधर उधर जहां जैसा भी है
0: जी। अब जैसे
1: एलर्जी
0: कोई
1: है ये
0: घर
1: है
0: में
1: वो
0: कोई
1: है। हाँ
0: फंक्शन होता है या कहीं जाते हैं तो थोड़ा सजना धजना अच्छा लगता है ना।
1: नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए, वो करना जी वक्त की डिमांड के हिसाब से, वो
0: जी
1: चीज अच्छी भी
0: जी जी
1: है ना करना चाहिए। लेकिन इतना मतलब ओवर भी ना हो जाए, मेकअप की स्किन को भी नुकसान हो या कोई मतलब वैसे लोग कमेंट्स करें कोई, है ना।
0: जी जी जी
1: ये
0: आज
1: है
0: जो
1: ये बात।
0: इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं कि सुंदर बनाने के लिए, उसका भी हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए ना।
1: जी, मतलब प्रचार तो बहुत हो रहा है लेकिन
0: जी
1: मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इफेक्टिव हैं,
0: जी वही
1: है
0: वही
1: ना।
0: वही
1: बिल्कुल,
0: आज का,
1: बाकी चीजें
0: आज
1: मैं
0: आज इस बात आपकी गीत हमारे में ये विषय लेने का यही मतलब है मेरा कि हम अंधाधुंध या जो हम देख लेते हैं इधर के विज्ञापन में इसमें, उसके हिसाब से ना जाकर बहुत प्रैक्टिकली सोचें और फिर अपने ऊपर यूज करें सब सामान
1: बिल्कुल
0: का।
1: जो चीज अपन को सूट कर रही है उसी को यूज करें, और ज्यादातर ये हो कि हर्बल अपन यूज करें, है
0: जी जी जी
1: ना, तो ज्यादा अच्छा है उसमें।
0: अब श्रृंगार में देखिए उबटन है, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि घर का ही उबटन करें, बेसन ले लें और चावल दाल का
1: जी,
0: निकाल के, है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: दही
1: बिल्कुल यूज
0: है
1: करें।
0: और फ्रूट्स हैं, इस हिसाब से करेंगे तो आप सुंदर भी रहेंगे और कोई नुकसान भी नहीं है इससे।
1: जी, मेन वही है कि मतलब श्रृंगार करें लेकिन कोई नुकसान ना हो, वो ज्यादा सही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। और बाकी तो सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार है ना।
0: जी जी जी जी
1: सिंपल रहना मतलब, और उच्च विचार
0: जी
1: चाहते। एक दूसरा आज हम थोड़ा सा एक चाहते एक नट की और कर ले मत,
0: बताइएगा
1: कि सुमन कल्याणपुर साहिबा गुजर गई हैं कल,
0: जी
1: है
0: जी जी जी
1: ना। तो क्योंकि फिल्म संगीत से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अब पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम मतलब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, है
0: बिल्कुल, पूरे
1: ना।
0: श्रोताओं और
1: भगवान
0: हमारी आकाशवाणी परिवार, पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरा
1: जी
0: भारत ही उनको श्रद्धांजलि दे रहा है ना।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: तो
1: ईश्वर उनकी
0: एक
1: आत्मा को शांति दे, उनके
0: बिल्कुल
1: तमाम प्रशंसकों को दुख झेलने की हिम्मत दे,
0: बिल्कुल
1: और उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज लगातार गूंजती रहेगी क्योंकि उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज सुनते सुनते अपन लोग बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: जी
0: चलिए इस अहमद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू
0: जी
1: थैंक
0: जी
1: यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: जी, आज हमने
1: मैं ग्राम वापुष्ट गौना कुसमार थाना सूजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
0: दीपक जी। जी
1: जी
0: दीपक जी, आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में। जी, तो आप क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, आप सही, तो श्रृंगार आप ही कराते हैं लोगों का।
1: जी, अगर लोग जैसे कपड़े बनवाते हैं जिस प्रकार के, तो सभी प्रकार के डिजाइनों डिजाइनों कई डिजाइनों द्वारा कपड़ा बना देते हैं, और वही व्यक्ति हो

0: पहना देते तो बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे शादी ब्याह में, अगर शादी ब्याह की घर में हो तो सर अगर दूल्हे का कोट पैंट हम लोग ही नहीं बनाएंगे तो कहाँ से वो श्रृंगार होगा, कहाँ से अच्छा लगेगा।
1: हाँ वही तो कह रहे कि पूरा बेसिक चीज तो आप ही उसमें तैयार करते हैं उनको। तो बताइए क्या महत्व है अच्छे कपड़े, मतलब फिटिंग के और अच्छे कपड़े पहनने का, साफ सुथरे प्रेस किए हुए और थोड़ा बहुत श्रृंगार करने का क्या महत्व है?
0: जी जी जी सबसे पहले अच्छा कपड़ा हम लोगों को राजा रंग कहलाता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का कपड़ा।
1: जी
0: अगर वो कपड़ा व्यक्ति जो बन जाए और उसका फिटिंग का बन जाए तो काफी अच्छा लगने लगता है और व्यक्ति बहुत ही सुंदर लगने लगता है।
1: जी
0: कपड़ा जैसा चाहे तो इतना ही खराब कपड़ा हो, लेकिन उसकी फिटिंग बनावट सही आ जाए तो कपड़ा ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है और आदमी को भी अच्छा लगने लगता है। और
1: बिल्कुल
0: हमारे घर, और हमारे घर में लेडीज काम भी होता है तो दुल्हनों का हमारी बहन भी तैयार करती है वैसे, और
1: जी
0: कपड़े भी बनाती है लहंगा चुनरी तो बहुत अच्छा साज सज्जा कर लेती है।
1: जी जी तो मतलब एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है ना साज श्रृंगार और अच्छे कपड़े पहनने के बाद।
0: अगर कितना ही कलर मद्दा हो मेकअप कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को आप हम पहचान नहीं सकते हैं,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रूबरू हो जाता है, बिल्कुल अलग से रूप बदल जाता है उसका।
1: जी बिल्कुल, यानी कि हम बहुत सुंदर कर देते हैं लोगों को, है ना, साज श्रृंगार
0: जी
1: से। तो आप किसके, जेंट्स के कपड़े सिलते हैं या महिलाओं के सिलते हैं?
0: जी हम तो दोनों सिल लेते हैं, लेकिन बहन हरे हैं तो वो लेडीज सिलती हैं, हम जेंट्स सिलते हैं। लेकिन बना तो हम लोग दोनों लेते हैं, जेंट्स भी बना लेते हैं और लेडीज भी बना लेते हैं,
1: अच्छा जी
0: क्योंकि
1: जी
0: अभी हमारा पैतृक धंधा सिलाई ही है। दीदी
1: जी तो चलिए दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही लोगों को सुंदर बनाते रहिए। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्कार दीदी।

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं आँखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: हेलो
1: हेलो, मध्य प्रदेश भोपाल।
0: जी, मध्य प्रदेश भोपाल से बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में, है ना?
1: जी
0: कैसे सजना धजना जो 16 श्रृंगार हमारे माने गए हैं ना, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले।
1: मैं कालीचरण यादव बोल रहा हूँ, संबलपुर आपकी।
0: जी, आपका
1: आप
0: नाम?
1: कौन बोल रही? आप मैडम कौन बोल रही है?
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: आपने नाम बोले धीरे धीरे, पर
0: जी,
1: आपको समय नहीं, तो बता नहीं पाऊंगा समय। बाप बताओ
0: तो कुछ बोलेंगे आप?
1: क्या हो गया, आप बताओ।
0: अरे यही कह रहे हैं कि जब हम सज धज जाते हैं, लोगों को सजा धजा देखते हैं, अच्छे से तैयार हुए देखते हैं, तो हमें कैसा लगता
1: अच्छा
0: है?
1: लगता है ना, कहीं जा रहे हैं सर जाएंगे तो।
0: जी,
1: हाँ, कहीं
0: तो
1: जा रहे हैं शादियों में, कहीं सरपंच जी में, अच्छा लगता है।
0: जी, तो वैसे भी घर में बहुत अच्छे साफ सुथरे और धुले धुलाए कपड़े और रोज धो के कपड़े पहनना
1: नहीं तो
0: चाहिए।
1: साफ सफाई रहे तो अच्छे लगेंगे, कोई कपड़े अच्छे प्यार होते अच्छे लगते हैं। अरे आदमी कुछ
0: जी
1: भी हो,
0: जी
1: सफाई
0: तो आपका
1: रखो घर में, कहीं जाऊँ तो बस। हाँ,
0: आपका नाम मैं फिर से सुन सकती हूँ?
1: कालीचरण यादव, संदलपुर से। संदलपुर
0: सुंदलपुर।
1: आपकी बात गाँव में ना मेरा, संदलपुर
0: जी जी जी जी
1: ग्वालियर
0: जी
1: पास में है
0: जी जी जी
1: जी।
0: तो चलिए, आपने फोन किया उसके लिए बहुत

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: जी, आज आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार, यानी सजना धजना। इसके बारे में आपसे बात करेंगे, तो अपना पहले परिचय दीजिएगा और फिर जगह का नाम बताइए और इसके बारे में कुछ बताइएगा आप।
1: मैं ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ।
0: राम नरेश जी,
1: जी
0: जगह का नाम क्या बताया आपने?
1: ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश।
0: राजगढ़ से। जी जी बताइए राम नरेश जी।
1: जी
0: साज श्रृंगार जब हम सजते धजते हैं या घर की महिलाएं जब बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, तो क्या फीलिंग होती है? और क्यों हमें जो 16 श्रृंगार हमारे बताए गए हैं वो क्यों जरूरी हैं?
1: अब ये तो देखिए, घर की जो महिलाएं रहती है 16 श्रृंगार के विषय में वो
0: जी
1: बेहतर बता पाएंगी और उनमें किस तरह की भावना आती है, किस तरह की फीलिंग आती है
0: तो
1: सोलह
0: आपके
1: श्रृंगार करने के बीच।
0: आपके घर में है कोई महिलाएं, बात कराइए हमें।
1: अभी तो नहीं, और मेरे ख्याल से जो हैं वो स्पष्ट रूप से आपको अपने विचार नहीं बता पाएंगी।
0: तो आप ही बता दीजिएगा आप क्या फील करते हैं कि मतलब ये जो अपने जेवर हैं या गहने हैं ये पहनना चाहिए कि नहीं?
1: हाँ, बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। जो जेवरात होते हैं, जो गहने होते हैं, जो आभूषण जो पहनती हैं हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं, तो
0: जी
1: वो तो खैर उनको अच्छा ही लगता है और हर स्त्री चाहती है कि मैं किसी समारोह में जाऊं, विवाह समारोह हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, तो सबसे अलग दिखूं
0: जी
1: या यूं कहे कि एक आकर्षण हो
0: जी
1: और दूसरी उनकी जो साथी मित्र हैं वो पूछें कि बड़ी अच्छी लग रही हो या फिर ये गहना
0: हाँ
1: कैसे लिया,
0: जी जी
1: इस तरह की बातें वो करें, तो
0: जी
1: वो बेहतर से बेहतर तैयारी करती हैं कि पूरी कोशिश करती हैं कि हाँ कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छी सजूं
0: जी
1: सवरूं,
0: जी जी
1: लोगों को अच्छा लगे और तारीफ करें,
0: जी
1: ऐसा भी भावना आती है, फीलिंग आती है
0: जी
1: महिलाओं के
0: और
1: लिए।
0: राम नरेश जी, और जब उनको उपहार में पति या भाई या पिता कुछ आभूषण देते हैं तो बहुत खुश होती हैं ना?
1: हाँ, जो घर की महिलाएं होती हैं, जैसे पति हुआ या कोई भाई हुआ, जैसे मान लो रक्षाबंधन पे भाई ने कुछ पायल का उपहार दिया,
0: जी
1: तो वो इस चीज को संभाल के रखती है कि ये मेरे पीहर का है, मायके का है,
0: जी जी
1: और इस चीज को बड़ा वो संभाल के रखती हैं और पहनती हैं। और कई बार जैसे कोई अच्छा उपहार मिला और उसे पहन लिया तो दूसरी महिलाएं पूछती हैं बड़ी अच्छी है,
0: जी
1: कितने
0: जी
1: में ली, तो वो
0: जी
1: कहती है कि हमने ली नहीं, हमारे भैया ने उपहार में दी
0: जी
1: है, या फिर हाँ, या
0: जी
1: फिर वो कहते हैं हमारे पति ने हमें उपहार में दी है या
0: जी
1: हमारी माँ ने हमें उपहार में दी है, तो इस तरह की बातें होती हैं। और जहाँ तक सजने संवरने की बात है तो हर स्त्री को सजना संवरना चाहिए, क्योंकि
0: जी
1: मनुष्य जीवन मिलता है
0: जी
1: और सजना संवरना और अच्छी तरह से साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, वो
0: बिल्कुल
1: कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा का उसमें भाव होता है, और माता अन्नपूर्णा तो एक हमारी जो भारतीय नारी होती है वो जिस तरह से वो सजती संवरती है, ऐसा लगता है कि देवी का स्वरूप हो,
0: बिल्कुल। तो हमारी जो देवियां हैं वो भी पूरे श्रृंगार में रहती हैं
1: पूरे
0: ना?
1: श्रृंगार में रहती हैं
0: जी
1: और जब उनको देखते हैं तो एक देवी जैसी भावना आती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा लगता है कि हमारे मन में एक सम्मान जागता है कि
0: बिल्कुल
1: हमें जो हमारी भारतीय नारी, हमारी माता है बहन, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो वो सजती संवरती है, तो सजना संवरने से व्यक्ति हुआ या महिला हुई या कोई भी हुई, वो थोड़ा देखता है कि जैसे महिला कहती है अरे आपने कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है,
0: जी
1: आज तो
0: जी
1: आपने चोटी बड़े अच्छे ढंग से की है, उस
0: जी
1: पार्टी में आपने उस तरह से की थी, इस पार्टी में इस तरह से की है, बड़े अच्छी की है, इस तरह से
0: चलिए
1: जी।
0: तो बॉस

0: ये था कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। आपने बहुत सारी बातें की और आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने। इसी के साथ आज्ञा दीजिए साधना जैन को।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। फोन इन कार्यक्रम था ये, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की

0: प्रतियोग में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू कर दिया है, जो 6 जून तक खुला रहेगा। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्रामीण उपभोक्ताओं को मात्र 5 रूपये में स्थायी घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। इस योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र अथवा कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती के अवसर पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजनों से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। अब भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत रहना है तेरे दिल में इस फिल्म से है। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, समीर का गीत और हरीश जयराज का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड से प्रभाकर चौधरी, आरती चौधरी, औरंगाबाद से राजेश सावली पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

अगला गीत की फरमाइश भेजिए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हिमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित ने इनमें सुनना चाहा है कोयला फिल्म से ये नगमा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक, मीका बिरक, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबने सुनना चाहा है मन फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और हेमा सिरदेसाई की आवाजें हैं, समीर का गीत है और संजीव दर्शन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने। इन सबने सुनना चाहा है बॉम्बे फिल्म का ये नगमा चित्रा की आवाज में, महबूब का गीत और ए आर रहमान का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा गुलाम फिल्म से आवाजें कुमार सानू, रलका याग्निक की, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, करियादंड हट्टा बालाघाट से हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, सरोच्चो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफा खान, अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई, गांधीबाग का कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यही कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे भी आप सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

वाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में समय 12:30 बजे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक सिसकियां की 7वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता बकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: प्रस्तुत है धारावाहिक की सातवीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता मुश्ताक के घर तलाक नामा भिजवाती है और मुश्ताक गुस्से में आकर तलाक नामे पर दस्तखत कर देता है। इधर फाता मुश्ताक का दस्तखत किया तलाक नामा दिखाकर पैसों के लिए सारे का दूसरा निकाह करवाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब आगे
1: नूरी, नूरी मेरा सामान बांध, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: तुझसे जितना कहा उतना ही किया कर।
2: कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे ये तो बता दो।
1: बहस ना कर, तुझसे जितना कहा उतना ही कर, समझी?
2: अजीब आदमी हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते।
1: शहर जा रहा हूँ, एक महीना लग जाएगा वापस आने में शहर से।
2: अच्छा, सामान में क्या क्या बांध दूँ?
1: नूरी नूरी मुझे देर हो रही है, सामान बांध जल्दी से, चल।
2: बांधती हूँ।
1: और सुन, पहले एक कप चाय पिला।
2: ये लो चाय।
1: रख दे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। ये चाय है।

0: ये चाय बनाई है तूने, ये ले।
1: अब चाय में क्या खराबी थी?
0: चाय में क्या खराबी थी? हाँ, जा अपने अपने बाप से पूछ कि क्या खराबी थी। ऐसी घटिया चाय पिलाकर मारेगी मुझे?
1: देख देख रसूल, तू बात बात पर बाप का नाम ना लिया कर।
0: क्यों, बाप बहुत पसंद है तो यहाँ क्यों आई? वहीं रहती, मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी तुझे?
1: रसूल बस करो, मैं बहस नहीं करती। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे बाप का नाम बीच में ना घसीटो।
0: जुबान लड़ाती है।
1: हाँ, औरत पर ही हाथ उठाएगा नामर्द।
0: जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है।
1: अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा।
0: अच्छा, अरे तुम औरतों को जब तक मार ना पड़े तब तक अकल ठिकाने नहीं आती तुम्हारी।
1: ये क्यों नहीं कहते कि अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए हम औरतों पर जुल्म करते हो?
0: नूरी नूरी, अपनी जुबान बंद कर, मुफ्त की खाती है तो तुझे चर्बी चढ़ गई है, हैं?
1: रसूल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा।
0: नूरी नूरी, तू औरत है, औरत के धर्म को मान, पति जो करे जैसा कहे उसे मान। अगर मैं तुझे अपने पैर की जूती बनाकर रखूं तो भी तुम्हें अपना धर्म समझकर मानना चाहिए।
1: तू अपने मर्द होने पर इतना इतरा क्यों रहा है? मैं जानती हूँ तुझे बाहर से अंदर तक कि तू कितना मर्द है, और तेरे मर्द होने पर जो औरतों को अपनी जूती बनाकर रखना चाहता है, थूकती हूँ ऐसे मर्द पर।
0: अब समझ में आया कि मर्द कौन है और कैसा होता है, है?
1: तुम एक औरत को गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी जूती नहीं बनेगी। और अगर तुम मार पीट कर गाली गलौज कर उसे अपने वश में रखने की बात सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। औरत प्यार में बंद कर रह सकती है, गुलाम बनाकर औरत को नहीं रख सकते।
0: अच्छा, औरत हमेशा से मर्दों की गुलाम रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। तेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तू मेरी है, जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी?
1: अब ऐसा नहीं होगा। जब से तुम्हारे साथ हूँ तुमने मेरे साथ जुल्म ही किए हैं, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें सलीके से रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग।
0: नूरी, मर्द के बिना औरत के बिसात ही क्या है? मैं हूं तो तू है, और मेरे बगैर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती, समझी?
1: तुम भूल कर रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तो तुम्हारे जुल्म से नफरत भी कर सकती हूँ। अगर तुम अपने जुल्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
0: चल चल, अपनी बेटों की बातें छोड़ और घर का काम कर, चल। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, मेरा बैग तैयार कर, चल, मुझे देर हो रही है।
1: मेरा फैसला भी सुनते जाओ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ।
0: क्या, तलाक?
1: हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म।
0: पागल हो गई है क्या?
1: ये मेरा फैसला है, तुम्हारे जुल्मों को अब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग अलग होगा।
0: नूरी, रुको रुको, नूरी नूरी।

0: फाता फाता जरा सुन ना।
1: आप कहो।
0: फाता, तुमने सारे के निकाह के लिए लड़का देखने को कहा था ना?
1: हाँ, कहा तो था। कोई नजर में है क्या?
0: अब है तो, मगर उसका एक तलाक हो चुका है। वैसे तुम जानती होंगी उसे।
1: कौन है?
0: अरे वो ही, अरे अपने

0: रसूल मियां, अरे वही जो ड्राइवरी किया करता है।
1: अरे उस मुए का तो निकाह हो चुका था।
0: वाता, उसका निकाह नूरी से हुआ था और नूरी ने उसे तलाक दे दिया है। अगर अगर तुम कहो तो मैं रसूल मियां से बात करूं।
1: रसूल वैसे कमाता कितना होगा?
0: कमाता तो है और सुना है जल्द ही अपनी मोटर कार लेने वाला है। सारे को रानी बना कर रखेगा फाता।
1: अच्छा, मैं आज ही रसूल से मिलती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। और हाँ, अब वो रसूल मियां से मिल जरूर लेना फाता। खुदा हाफिज़।

0: कौन है?
1: मैं हूँ फाता।
0: आओ आओ बैठो। मेरे तरफ कैसे आना हुआ?
1: अम्मा मिया, तुमसे जरूरी काम था, एक बात करनी थी तुमसे।
0: हाँ हाँ कहो, क्या बात है?
1: बुरा ना मानना, सुना है नूरी से तुम्हारा तलाक हो गया।
0: अरे नाम ना लो उस चुड़ैल का।
1: अरे अरे तुम तो बुरा मान गए बेटा। कोई अच्छी लड़की मिले तो दूसरा निकाह करोगे?
0: अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पहले मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं और जल्द ही मुझे एक मोटर कार भी लेनी है, और फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा।
1: हाँ ये तो तुमने अच्छा सोचा है। जिंदगी में पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है। खुदा तेरी मुराद जल्द ही पूरी करें।
0: फाता, आप किसी लड़की की बात कर रही थी?
1: हाँ वो सारे को तो तुम देख ही रहे हो।
0: हाँ हाँ पर उसका निकाह तो मुश्ताक से हुआ था।
1: हाँ पर नसीब ही खराब था बेचारी का। निकाह के कुछ समय बाद मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।
0: क्यों?
1: अरे अब तुमसे क्या छिपाना, हमारी स्थिति तो तुम जानते ही हो। सारे के अब्बा ने चौकीदारी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी। अब हमारे पास देने को कुछ बचा ही क्या है कि उस मुश्ताक को देते। हमने कहा भी कि हमारे यहाँ ही आकर रहो, पर वह माना नहीं और सारे को तलाक दे दिया।
0: अब चिंता ना करो, अगर मुझसे कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना।
1: मेरी बात पर जरा गौर करना बेटा, सारे के बारे में सोचना। मैं फिर आऊंगी कभी, अभी चलती हूँ बेटा।
0: जी सोचूंगा। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
2: रसूल, ये फाता क्यों आई थी यहाँ पे?
3: अब बस यूं ही आई थी।
2: फाता यूं नहीं आ सकती मियां, उधर जरूर कोई काम रहा होगा।
3: अरे वो अपनी बेटी सारे की बात कर रही थी।
2: सारे की बात?
3: हाँ।
2: अभी अभी तो उसका मुश्ताक से तलाक हुआ है, बड़ी अच्छी लड़की है वो।
3: तुम जानते हो उसे?
2: बहुत अच्छे से।
3: कैसी है?
2: देखोगे तो देखते रह जाऊंगे मियां।
3: अच्छा,
2: जन्नत की परी लगती है। हा? एक बार उसको देख ले, उसके हुस्न के जादू से बच नहीं सकता मियां।
3: अच्छा तो मैं सारे के लिए हाँ कर दूं?
2: अरे इसके लिए तुम्हें फाता को बस में करना होगा और उसे कुछ पैसे जरूर देने होंगे मियां।
3: अच्छा,
2: और वो तुम्हारे बस में हो जाएगी, वो खुश हो।

0: तो बात आसानी से पढ़ सकती है।
1: फिर तो समझो मियाँ कि ये रिश्ता पक्का हुआ।
0: फिर तो मियाँ बात बन गई।

0: अरे अरे भाई फजी,
1: आ गए आप।
0: हाँ भाई, ले ये सामान रख लो। तो हाँ भाई, वो मुश्ताक का बुखार उतरा या नहीं अभी?
1: नहीं, नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे फजी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकीम ने दवा दे दी है, उसे खिला दो। खुदा ने चाहा तो आज रात तक बुखार उतर जाएगा।
1: अजी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो।
0: अरे भाई, सोचता तो मैं भी हूँ, पर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
1: सारे से तलाक क्या हुआ, बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा।
0: अरे आदमी तन के जख्मों को आसानी से झेल सकता है, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में वक्त लग जाता है। देखो फजी, सारे का जाना हमें बुरा लग रहा है, तो मुश्ताक की तो वो बीवी थी। मुश्ताक के लिए एक बुरा दौर, एक बड़ा इम्तिहान है ये। मुश्ताक कमजोर न पड़े, बस सब ठीक हो जाएगा।
1: अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, ठीक कर दे उसे। उसकी सलामती ही हमारी जिंदगी है परवरदिगार।
0: अरे फजी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे करीम भाई, घर में है क्या?
0: कौन? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं घर में ही हूँ।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई अकरम, आओ आओ बैठो। हाँ भाई, कहो कैसे आना हुआ?
2: बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे थोड़ी मुलाकात कर लो।
0: ये तो आपने अच्छा किया। अरे भाई, मिलते जुलते रहने से अच्छा लगता है। अरे भाई फजी, चाय तो पिलाओ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाय लाती हूँ।
0: हाँ भाई अकरम, और सुनाओ, काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: भाईजान, अल्लाह के रहम व करम से सब ठीक है। आप बताएं। सुना था मुश्ताक की तबीयत कुछ नासाज है, अब उसकी तबीयत कैसी है?
0: क्या बताऊं जनाब, जब से सारे से तलाक हुआ है, बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: ओहो, किसी डॉक्टर को देखा?
0: हिम्मत हार गया हूँ अकरम, औलाद की तकलीफ बुजुर्गों की रही सही हड्डी तोड़ देती है। अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है, अब वही कुछ करे तो करे।
2: भाईजान, आदमी की नीयत बदल जाए तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, औरों का भी बुरा करता है।
0: मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
2: अरे वही फाता की।
0: फाता की?
2: क्या आपको पता नहीं है?
0: क्या?
2: साराय का दूसरा निकाह हो रहा है।
0: साराय का दूसरा निकाह?
2: हाँ।
0: किसके साथ?
2: अब रसूल मियां को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो नाम तो जरूर सुना होगा।
0: रसूल से साराय का निकाह?
2: जी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फाता को मालूम नहीं कि रसूल एक नंबर का लफंगा आदमी है?
2: अजी मालूम क्यों नहीं है, पर लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो कोई क्या करे। रसूल तो अब फाता को पैसे

0: से भी देता है। और इसी लालच में आकर फाता साराय का निकाह रसूल से कर रही है।
1: चाहे किसका निकाह हो रहा है?
2: अरे साराय का निकाह हो रहा है।
1: क्या साराय का निकाह किसके साथ?
2: रसूल के साथ।
1: रसूल के साथ? तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है और उसका तो पहले भी निकाह हो चुका है।
2: अरे नूरी से निकाह हुआ था उसका,
0: लेकिन नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया, अब रसूल अकेला ही रहता है।
1: नूरी ने तलाक ले लिया?
0: हाँ, अब बेचारी और क्या करती।
1: सुना है भाई जान, नूरी भी बहुत बुरा बोलती थी।
0: अब नूरी कब तक जुल्म सहती उस हत्यारे का? एक नंबर का जालिम है रसूल। नूरी को हर बात पर पीटता था, आखिर कब तक बर्दाश्त करती बेचारी। एक दिन झगड़ा हुआ और नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: अच्छा ही हुआ कि नूरी ने उससे तलाक ले लिया, आखिर उसे सुखी क्या था। रसूल काम से शहर में महीने दो महीने बाहर रहता और वहाँ शहर में कई औरतों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अरे वो तो शहर में मौज करता था और नूरी यहाँ इंतजार करती थी। और जब शहर से घर लौटता तो नूरी को पूरे तरीके से पीटता था। नूरी ने बहुत बर्दाश्त किया, जानवरों की तरह पिटती थी बेचारी। अब बताते हुए भी जुबान कांपती है, अल्लाह माफ करे।
2: ठीक ही हुआ। अरे एक औरत अपना जमीर बचाए, ये अच्छी बात है। आखिर मर्दों के जुल्म कब तक सहेगी? उसकी अपनी जिंदगी है, आखिर उसे भी जीने का हक है। और अगर कोई उस पर जुल्म करे तो उसका जवाब औरत को देना ही चाहिए। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे ये तो औरतों की अपनी लड़ाई है और नूरी ने इसकी शुरुआत की है।
1: अजी पर अब फाता तो उसी जालिम रसूल से साराय का निकाह कर रही है ना।
2: अरे लालच में आकर वो साराय की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
0: लेकिन साराय की बर्बादी में मुश्ताक का भी हाथ है।
1: हैं?
2: वो कैसे?
0: भाई जान ये भी फाता की चाल होगी। फाता चाहती है कि उसका दामाद उसे खूब पैसे दे। और मुश्ताक ऐसा नहीं कर पाया। उसने साराय से छुपाकर मुश्ताक से तलाक ले लिया और अब उसकी शादी रसूल जैसे लफंगे से कर रही है ताकि वो उसे खूब पैसे दे।
2: अपनी खुशी के लिए फाता साराय की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी।
1: फाता इतनी लालची और मतलबी होगी ये हमने सोचा भी नहीं था। वो साराय के साथ ऐसा धोखा करेगी, अगर ये मालूम होता तो मुश्ताक साराय को कभी तलाक नहीं देता।
0: हाँ, ये तो धोखा हुआ है, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता भाई जान।
2: अरे भाई हसन भट्ट से रोक सकते हैं।
0: फाता सुनती किसकी है? हसन भट्ट को गुलामों की तरह रखती है, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। और साराय तो तलाक के सदमे से बेहोश ही हो गई थी, अभी तो उबर भी नहीं पाई है बेचारी। ना जाने रसूल से अपने निकाह को कैसे सह पाएगी।
1: औरतों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है भाई जान कि उसे दूसरों के किए फैसले पर चलना होता है। ना जाने अल्लाह ने औरतों के नसीब में क्या लिखा है, कहीं नफरत तो कहीं जुल्म सहती रहती है।
2: मायूस मत हो फजी, अल्लाह ताला सब देखता है, सभी के जुल्मों का हिसाब रखता है वो। और देखना एक दिन सारे जुल्मों का बदला लेता है।
1: अजी यकीन नहीं होता, जो ताकतवर है वो तो मजे से जुल्म करता है और शराफत से जिंदगी बसर करने वाला जुल्म सहता है। यही हो।

0: होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ना जाने कब बदलेगी ये तस्वीर।
1: अच्छा भाईजान, अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई।
2: अच्छा, और सुनो भाई, मिलते जुलते रहना।
1: खुदा हाँ।
0: सुनो, हकीम जी के पास चले जाते, जरा दवा ले आते मुश्ताक।
2: ठीक है, अच्छा भी जाता हूँ। सुनो, वो पहले कप चाय पिला दो, बस मन जरा भारी हो गया है।
0: हाँ, पर हकीम जी के पास जरूर जाना और किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ। मुश्ताक की बीमारी अब देखी नहीं जाती।
2: पता करता हूँ, तुम जरा जल्दी से चाय पिला दो बस।
0: हाँ, अभी लाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे ललित, कोयना, सुप्रिया, सतीश कक्कड़, नीलम, लोकेश और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बधाई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कवि हेमंत देवलेकर,
3: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
5: भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए आज से 6 जून तक के लिए पोर्टल शुरू किया है। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 5 रूपये में स्थायी घरेलू कनेक्शन योजना में दिसम्बर 2024 से अब तक 83,900

36 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अधिक जानकारी विद्युत वितरण केंद्र या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर प्राप्त की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को हराकर पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी कर ली है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओले की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। डीजी प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनकी पसंद का कार्यक्रम महिला सभा।

परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में फासला रखना। जहां दरिया समुन्दर से मिला, दरिया नहीं रहता। बशीर बद्र जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में आप सभी बहनों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। तो स्वीकार कीजिए नीलम तिवारी का नमस्कार। बहनों, ये बात हम सभी जानते हैं कि महिलाएं परिवार का केंद्र बिंदु होती हैं, परिवार की धुरी होती हैं। वो चाहें तो अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग की तरह सुंदर बना सकती हैं या फिर सब कुछ मिटा भी सकती हैं। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, हमारी धारणा पर। हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं और हमारी ये सोच, हमारे विचार, हमारी ये धारणा निर्भर होती है हमारी शिक्षा पर, हमारे पालन पोषण पर, हमारे संस्कारों पर, जो हमें जन्म के बाद से ही मिलना शुरू हो जाते हैं हमारे पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से। लेकिन आज के दौर में परिवार विखंडित होते जा रहे हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी के कारण बच्चे नशे के आदि हो जाते हैं और नशे के ये कभी कभी नशे की लत में अपराध के रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुरुषों के साथ साथ कई महिलाएं भी नशा करती हैं। बहनों, जब बच्चों के सामने हम नशा करेंगे, बच्चे तो अपने आप ही नशा करना सीख जाएंगे। नशा का अर्थ है आदि होना, जैसे गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब या अन्य मादक पदार्थ। हमें इन सबसे दूर रहना है। ना तो ये अपने घर में रखना है, ना स्वयं इनका सेवन करना है, ना ही बच्चों को करने देना है। और ये संभव तभी होगा जब आप अपने बच्चों को समय देंगी, उन पर नजर रखेंगी कि वो कब क्या करते हैं। इसीलिए बच्चों को रुपए पैसों की भी अधिक आजादी नहीं देना चाहिए। यदि बच्चों को रुपए पैसे देकर कुछ लाने को भेज रही हैं, तो सामान चेक करने के साथ साथ उनसे रुपए पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। यदि बहनों इन छोटी छोटी बातों का हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे, तो निश्चित ही नशा मुक्त परिवार बन सकेंगे। अब चलते हैं मनोरंजन की ओर, तो आइए सुनते हैं ये गीत। रवि के संगीत निर्देशन में शब्द रचना साहिल लुधियानवी की है, आवाज आशा भोसले की और फिल्म है वक्त।

0: बहनों, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम सभी अपने अपने अंदाज में व्यक्त करते हैं। कुछ लोग साधारण तरीके से, तो कुछ लोग कलात्मक तरीके से अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, व्यंग या कविता के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तो आज अपनी अनुभूतियों को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं कवयित्री मंजूषा कनानी। आइए सुनते हैं।
1: एक कविता हम आपको माँ पर सुनाना चाहेंगे, जो हमारे दिल के काफी करीब है। एक दिन चुपके से मुझे मेरी माँ की तलाशी लेनी है। एक दिन चुपके से मुझे मेरी माँ की तलाशी लेनी है। यकीन है कुछ तो वो छिपा कर रखती है। इतनी

तकलीफें वो सहती, फिर उनका दर्द कैसे और कहाँ दबाकर रखती है। एक दिन चुपके से मुझे मेरी माँ की तलाशी लेनी है। सुनती रहती है गलत सही बातें सबकी, सुनती रहती है गलत सही बातें सबकी, अपने मन की बातें ख्वाहिशें क्यों और कहाँ दबा के रखती है। एक दिन चुपके से मुझे मेरी माँ की तलाशी लेनी है। बहुत रोती है अकेले में अक्सर यूं तो, बहुत रोती है अकेले में अक्सर यूं तो, पर हमारी खुशी की खातिर अपने आंसू भी हमसे छिपा कर रखती है। एक दिन चुपके से मुझे मेरी माँ की तलाशी लेनी है। थक जाती है पूरा दिन मेहनत करके, थक जाती है पूरा दिन मेहनत करके, पर देख हमारी तकलीफ, फिर अपनी नींदें भी जैसे किसी बक्से में छिपा कर रखती है। एक दिन चुपके से मुझे मेरी माँ की तलाशी लेनी है। उसके हुनर के आगे सब फेल है यूं तो, उसके हुनर के आगे सब फेल है यूं तो, पर हमारे अस्तित्व को संवारने की खातिर खुद को भी जैसे खुद से ही छिपा कर रखती है। फिर भी मुझे एक दिन चुपके से मेरी माँ की तलाशी लेनी है। मुझे शक नहीं, यकीन है वो कुछ तो छिपा कर रखती है।

उसके हुनर के आगे सब फेल हैं यूं तो, उसके हुनर के आगे सब फेल हैं यूं तो, पर हमारे अस्तित्व को संवारने की खातिर खुद को भी जैसे खुद से ही छिपा कर रखती है। फिर भी मुझे एक दिन चुपके से मेरी माँ की तलाशी लेनी है। मुझे शक नहीं यकीन है वो कुछ तो छिपा कर रखती है। मुझे शक नहीं यकीन है वो कुछ तो छिपा कर रखती है। अब हम आपको एक कविता दिल की सुनाना चाहेंगे। दिल एक छोटा सा मुल्क है, दिल एक छोटा सा मुल्क है, और मेरे इस मुल्क की आबादी तुम हो। होते हैं सबके किस्से अपने अपने, होते हैं सबके किस्से अपने अपने, बिन मिले भी मेरी कहानी में तुम हो। बदल जाते हैं रिश्ते भी वक्त के साथ, कि बदल जाते हैं रिश्ते भी वक्त के साथ, रुक गया जिस पर वक्त मेरा वो तुम हो। मन्नतों के लिए बांधे जाते हैं धागे अक्सर, मन्नतों के लिए बांधे जाते हैं धागे अक्सर, मेरी तो मुराद वाला ही धागा जैसे तुम हो। मोहब्बत किसी से भी हो जाती है वक्त के साथ, मोहब्बत किसी से भी हो जाती है वक्त के साथ, रुक गई जिसकी मोहब्बत में मेरी धड़कने वो तुम हो। सुना है मिल जाता है कभी कभी सोचा हुआ भी, मेरी तो हर सोच का दायरा जैसे अब तुम हो। अगर गजल के बिना कविताएं खत्म हो तो मजा भी नहीं आता। तो गजल का जैसे आप जानते हैं शीर्षक नहीं होता, तो स्टार्ट करते हैं। तकलीफ होती है पर जिक्र जरूरी नहीं, तकलीफ होती है पर जिक्र जरूरी नहीं, वो भी करे मेरी फिक्र जरूरी नहीं। मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहेगी दूर है तो क्या, मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहेगी दूर है तो क्या, दिल से भी कर लूं हिज्र जरूरी नहीं। झूठ की खुशबू लुभावनी होती है अक्सर, झूठ की खुशबू लुभावनी होती है अक्सर, सब में महके सच का इत्र जरूरी नहीं। जाति पाती रुतबा मैं देखती नहीं, जाति पाती रुतबा मैं देखती नहीं, हर ऊंचा ओहदा हो पवित्र जरूरी नहीं। कड़वी दवा सा किरदार मेरा भी, कि कड़वी दवा सा किरदार मेरा भी, मीठे जहर सा हो चरित्र जरूरी नहीं। हमारी अगली कविता का शीर्षक है हिंद की मैं वासी हूँ हिंदी मेरी बोली है, हिंद की मैं वासी हूँ हिंदी मेरी बोली है, प्रेम इतना करती हूँ मैं अपने देश को कि लगती मुझे इसकी मिट्टी भी जैसे माँ की ओली है। भाषाएं धर्म बहुत हैं यहाँ कहने को, भाषाएं धर्म बहुत हैं यहाँ कहने को, हर बोली जैसे एक मीठी स्वादिष्ट गोली है। मिट्टी से अपनी मैं प्रेम करूँ हूँ मेरी माँ है वो, मिट्टी से अपनी मैं प्रेम करूँ हूँ मेरी माँ है वो, हिंदी माँ के माथे की बिंदी जैसे होली है। छोटे बड़े का लहजा खासियत जिसकी, छोटे बड़े का लहजा खासियत जिसकी, हिंदी ऐसा सुंदर पुष्प अबोली है, अलंकारों रसों का भंडार है जिसमें, अलंकारों और रसों का भंडार है जिसमें, अथा इसके शब्दों की टोली है। अमिट छाप है हिंदी की जीवन में मेरे, अमिट छाप है हिंदी की जीवन में मेरे, लेखन में मेरे इसी से सारे रंग और रंगोली है, कि लेखन में मेरे इसी से सारे रंग और रंगोली हैं। अब एक अंतिम रचना, हमारा टॉपिक है शिकायतें। ये शिकायतों के भी लहजे अजीब होते हैं, ये शिकायतों के भी लहजे अजीब होते हैं, जिनसे होती है ना अक्सर वही दिल में रहते हैं। शिकायतें मुझे भी बहुत हैं उस शख्स से, शिकायतें मुझे भी बहुत हैं उस शख्स से, फिर भी मेरे दिल में छिपा बैठा है, दूर हूँ कहने को उससे यूं तो, फिर भी मुझ में कहीं तो वो मर्जे इश्क बनकर आज भी दबा बैठा है। मैं गुस्सा हूँ उससे ढेरों शिकायतें भी उससे मेरी, मैं गुस्सा हूँ उससे ढेरों शिकायतें भी उससे मेरी, फिर भी मेरा दिल एक उसी से ठगा बैठा है। न वो हाँ करता है न वो ना करता है, न वो हाँ करता है न वो ना करता है, रूह तक बस एक वही सफर करता है, रूह तक बस एक वही सफर करता है, मिलता नहीं मुझे फिर भी मुझ में मेरा मैं बनकर रहता है। अधूरी नहीं हूँ उसके बिन यूं तो मैं आज भी, अधूरी नहीं हूँ उसके बिन यूं तो मैं आज भी, पर पूरी तरह उसकी हो जाऊं यही ख्वाहिश दिल मेरा आज भी लिए बैठा है। ये ख्वाहिशें हैं कि पूरी होती नहीं, पर मेरा दिल लबों पर आज फिर उसका जिक्र लिए बैठा है। अब आपके सामने एक और कविता पेश करना चाहेंगे। रिवाजों के नाम पर मारी गई थी, रिवाजों के नाम पर मारी गई थी, रिवाजों के नाम पर मारी गई थी, रिवाजों के नाम पर मारी गई थी, लोग देखते रह गए पर जान हमारी गई थी, पुरुष प्रधान समाज में कैसे रहती, पुरुष प्रधान समाज में कैसे रहती, सच का साथ देकर फिर एक मारी नारी गई थी। धोखेबाजी और फरेब की दुनिया है आज सारी, झूठे रस्मों रिवाज के नाम पर फिर एक बेचारी गई थी। हर बंधन बस उसके लिए बना था सदा बस जैसे, हर बंधन बस उसके लिए बना था सदा बस जैसे, रिश्तों के नाम पर क्यों

0: उसकी ही खुशियां वारी गई थी। हर बंधन बस उसके लिए बना था, सदा बस जैसे रिश्तों के नाम पर क्यों उसकी ही खुशियां वारी गई थी। मिलकर भी आजादी मिल नहीं पाई जिसे वक्त के साथ, मिलकर भी आजादी मिल नहीं पाई वक्त के साथ जिसे, कि देखते रहे तमाशा लोग तोड़ी फिर एक क्यारी गई थी, कि देखते रहे तमाशा लोग तोड़ी फिर एक क्यारी गई थी।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी कवित्री मंजूषा कनानी से उनकी काव्य रचनाएं। अब मिलते हैं एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने पसंद के कार्यक्रम महिला सभा में। हमारा आपसे बातों का सिलसिला चलता रहेगा। अभी चलते हैं गीत संगीत की ओर, तो आइए सुनते हैं यशुदास और हेमलता की आवाज में चितचोर फिल्म का ये गीत। संगीत और गीत रविंद्र जैन का है।

बहनों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन बहनों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी इस बात का अनुसरण हर स्थान पर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कुछ क्षेत्रों में जन्म से ही महिलाओं का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है। जब घर में बेटा के स्थान पर बेटी का जन्म होता है तो भेदभाव की चुनौती यहीं से आरंभ हो जाती है। पालन पोषण में भेदभाव, खान पान में भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव और पहनावे से लेकर घर के कामकाज में भेदभाव, अपने ही घर में भेदभाव की इन चुनौतियों का सामना करते करते वो ससुराल पहुंचती है। नई वधू के आगमन के साथ ही आरंभ हो जाती हैं संघर्ष की चुनौतियां। और यदि महिला नौकरी कर रही है या काम पर जा रही है तो यही चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। यदि पुरुष काम पर जाते हैं या नौकरी करते हैं तो सिर्फ नौकरी करते हैं, लेकिन यदि महिलाएं नौकरी करती हैं या काम पर जाती हैं तो वो घर के काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और नौकरी भी करती हैं, तो इन महिलाओं का जीवन ओखली में सिर रखने के समान हो जाता है। बहनों, क्योंकि इन महिलाओं के लिए घर की चुनौतियों के साथ साथ शुरू हो जाती हैं कार्यस्थल की चुनौतियां। घर के काम के करने के साथ समय पर घर के काम करो, फिर घर के काम करने के बाद समय पर कार्यस्थल पर पहुंचो, वहां अपने उत्तरदायित्व अच्छी तरह से संभालने होते हैं। यदि कार्य में कोई कमी रह जाती है तो उन्हें सहयोग के स्थान पर विरोध ही मिलता है, क्योंकि कार्यस्थल पर सहयोगी कम और विरोधी अधिक मिल जाते हैं। बहनों, इन महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कार्यस्थलों पर टीका टिप्पणी करते हुए इनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। कुछ लोग तो महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर विरोधाभास की अग्नि कुंड में महिलाओं को इस तरह हवन कर डालते हैं कि वो काम करना ही छोड़ दें। कुछ महिलाएं परेशान होकर काम करना छोड़ भी देती हैं, परंतु कुछ महिलाएं इन चुनौतियों का सामना करते हुए कार्यस्थल पर डटी रहती हैं। तो बहनों, घर की चुनौतियां हों या कार्यस्थल की, आपको घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। अपनी सूझबूझ और योग्यता से इन विरोधियों को उत्तर देना है। आप बुद्धिमता और निर्भयता के साथ आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही सफल होंगी। कहा गया है ना कि जिंदगी जीना

आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, थोड़ी छाया, थोड़ी धूप, यही तो है इस जीवन का रंग रूप, यही तो है इस जीवन का रंग रूप।

बहनों, अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी पिया का घर। बहनों, अब कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं व्यंजन कार्यक्रम में नमकीन चीला बनाना। तो सबसे पहले सामग्री नोट कर लीजिए। 1 कप बेसन, 1 कप सूजी, 1 कप गेहूं का आटा, इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेना है। 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर, 4-5 पालक पत्ते, हरी मिर्च, हरा धनिया, 1 नींबू, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग और अजवाइन। यदि आप सामग्री को कम या ज्यादा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब नमकीन चीला बनाने की विधि भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आटा, सूजी और बेसन का घोल तैयार करना है। ये घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला। जिस प्रकार हम भजिया का या पकौड़ी का घोल तैयार करते हैं, वैसा ही घोल हमें तैयार कर लेना है। घोल को थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पालक, नमक, हरी मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर या 1 नींबू का रस निचोड़कर और हींग अजवाइन मिला देंगे। 1 फ्राई पैन को मीडियम आंच पर रखकर उसमें थोड़ा सा घी या तेल डालकर अपना बनाया गया घोल थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है, चम्मच से फैलाना है, फिर थोड़ी देर बाद इसको पलट देना है। दोनों तरफ अच्छी तरह सेक कर सभी चीले तैयार कर लेंगे। इसके बाद दही या चटनी के साथ ये चीले परोसिए। खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, सेहत के लिए भी लाभदायक हैं। तो एक बार नमकीन चीला बनाकर जरूर खाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में।

0: आकाशवाणी परिवार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे परीक्षित पर निर्कर के गाए गीत।

0: परीक्षित पर्निरकर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

दो बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में दादा फिल्म से, महेंद्र दहलवी का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुमन कल्याणपुर का ही गाया हुआ फरीब फिल्म का ये गीत। असद भोपाली के लिखे गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रूपये खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1,872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले एक माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया।

0: राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन

0: आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

0: में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमरीका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा हमने लिया है क्रांति फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। संतोष आनंद का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को

पसंद किया है। ग्राम महेश्वाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न खाड़े, वाल्मीकि खाड़े, निनाजी खाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

महबूब की मेहंदी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी की बोल है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। इस गीत की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। आप सबने पसंद किया है चमत्कार फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

नूरी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को जानिसार अख्तर के लिखे गीत की धुन बनाई है खयाम ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा।

कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश संगीत फिल्म के इस गीत की अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने जिसे आवाज दी है, संतोष आनंद का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, किशोरी बोस, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार, जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश की शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर साथी डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर रात 8:15 और रात 10:00। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 6:30 सुनिएगा चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट। 8:00 समाचार सेवा आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम आबशारे गजल रात 9:30 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रामदास मुंगरे का ख्याल गायन राघों का गौण मल्हार। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: सूरज ढल चुका है और शाम ने शहर को अपनी बाहों में समेट लिया है। साथियों, आकाशवाणी छतरपुर के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी दोस्त संस्कृति पाठक, और मेरा साथ दे रहे हैं
1: शिवांशु प्रजापति। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार। साथियों, आज का हमारा पहला विषय है परिवार में संस्कारों का महत्व। साथियों, संस्कार व्यक्ति के जीवन में अमूल्य धरोहर हैं, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसे सही दिशा प्रदान करते हैं।
1: साथियों, यह विषय वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार ही वह प्रथम विद्यालय है जहां बच्चे जीवन के मूलभूत मूल्य सीखते हैं।
0: दोस्तों, संस्कारों के बिना ना तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है और ना ही एक अच्छा स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।
1: संस्कृति, सबसे पहले हमारे दोस्तों को बताइए कि संस्कार से आपका क्या अभिप्राय है।
0: बिल्कुल शिवांशु, संस्कार का अर्थ है अच्छे विचार, आदर्श नैतिक मूल्य और व्यवहार।

0: जो व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाते हैं। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन का पालन करना, ईमानदारी, करुणा और सहयोग जैसे गुण संस्कार का ही परिणाम होते हैं। ये गुण जन्म से नहीं आते शिवांशु, बल्कि परिवार और समाज के वातावरण से ये विकसित होते हैं।
1: संस्कृति परिवार को संस्कारों का पहला विद्यालय क्यों कहा जाता है?
0: क्योंकि परिवार में बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष बिताता है। वह अपने माता पिता, दादा दादी और अन्य सदस्यों को देखकर सीखता है। यदि परिवार में प्रेम, सम्मान, अनुशासन और सदाचार का वातावरण होगा तो बच्चा भी इन्हीं मूल्यों को अपनाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे सुनने से अधिक देखने और अनुकरण करने से सीखते हैं।
1: संस्कृति आज के समय में परिवारों का महत्व किस प्रकार बढ़ गया है?
0: हाँ शिवांशु, वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ अनेक चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रभाव से बच्चों का जीवन तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में संस्कार उन्हें सही दिशा देने का कार्य करते हैं। संस्कार व्यक्ति को संयम, विवेक और ईमानदारी का बोध कराते हैं, जिससे वह आधुनिकता और नैतिकता के बीच संतुलन बना सकता है।
1: मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है। लोग सफलता प्राप्त करने के लिए कभी कभी नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कर देते हैं। संस्कार व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि सफलता केवल धन या पद प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में भी है।
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि माता पिता बच्चों को केवल एक भौतिक सुविधाएं ही ना दें, बल्कि अच्छे संस्कार भी दें, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: मैं कहना चाहूंगा कि संस्कार जीवन की वह नींव है जिन पर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए परिवारों को संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।
0: साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा परिवार में संस्कारों का महत्व पर। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अगर आप चाहते हैं अपने उत्पादों का विस्तार तो आकाशवाणी छतरपुर से विज्ञापन के माध्यम से पहुंच जाइए अपने ग्राहकों के पास। विज्ञापन बुकिंग के लिए संपर्क करें आकाशवाणी छतरपुर के इस मोबाइल नंबर पर 9584545760।
1: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में।
0: शिवांशु, आजकल कितनी गर्मी हो रही है ना?
1: हाँ संस्कृति, और इस गर्मी का असर हमारे क्लाइमेट यानी जलवायु पर भी पड़ रहा है।
0: हाँ साथियों, जलवायु का मतलब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है।
1: जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कहते हैं।
0: जलवायु एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। जलवायु की दशा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है।
1: मानवीय तथा कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जलवायु की दशा बदल जाती है। हाल के वर्षों और दशकों में कई रिकॉर्ड टूट गए हैं।
0: UN जलवायु रिपोर्ट 2019 इस बात की पुष्टि करती है कि 2010 से 19 सबसे गर्म दशक था। 2019 में वातावरण में CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसें नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं।
1: बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बढ़ते तापमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और गंभीर बनाने का कार्य किया है।
0: महासागरों की जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायुमंडल या भू सतह की तुलना में दुगना तापमान इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है।
1: महासागरीय प्रभाव चारों ओर तापमान के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से हवाओं की दिशा परिवर्तित कर तापमान को प्रभावित किया जाता है।
0: तापमान को अवशोषित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का एक अहम हिस्सा समुद्रों जलवाष्प होती है, जो कि वायुमंडल में तापमान को अवशोषित करने का काम करती है।
1: धरती पर जीवन के अनुकूल जलवायु के कारण ही यहाँ जीवन संभव है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें लगातार हो रहे परिवर्तन में वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ाई है।
0: जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें आदि को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
1: औसत मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में जलवायु में बड़े स्तर पर हो रहे परिवर्तन से जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
0: साथियों, ये तो थी एक चर्चा क्लाइमेट चेंज पर। तो अब ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और करा देते हैं आपका मनोरंजन। तो आइए सुनिए फिल्म धूम 3 से ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे धूम 3 फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी सिद्धार्थ महादेवन, शिल्पा राव की,
1: गीतकार थे समीर अंजान और संगीत दिया था प्रीतम जी ने। तो साथियों, कार्यक्रम को अगली कड़ी में जोड़ते हुए हम आपको ले चलते हैं एक वार्ता की ओर, जिसका शीर्षक है बुंदेलखंड का इतिहास। और साथियों, इसके वार्ताकार हैं ऋषभ मौर्य। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में। भारत के बीचों बीच फैला बुंदेलखंड सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वीरता, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की जीवित गाथा है। यहाँ की मिट्टी में तलवारों की चमक भी है और संतों की तपस्या भी। बुंदेलखंड का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पहचान और सम्मान को बचाया रखा। यही कारण है कि बुंदेलखंड को वीरों की धरती कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत 12वीं शताब्दी से होती है। उस समय उत्तर

भारत में गहड़वाल वंश का शासन था और कन्नौज उसकी राजधानी थी। गहड़वाल राजा जयचंद एक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, लेकिन 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध हुआ जिसने उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद आमने सामने आए। युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन अंत में जयचंद की हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इस पराजय के बाद गहड़वाल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई। कई छोटे छोटे राज्य में

कर दिया गया। अपमान और दुख से भरे पंचमदास विंध्य पर्वत की ओर चले गए। वहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी के मंदिर में कठोर तपस्या की। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय कर लिया था। तभी उनके शरीर से गिरी रक्त की बूंद देवी के चरणों में पड़ी और माँ विंध्यवासिनी प्रकट हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनके रक्त की हर बूंद से एक नए वीर वंश का जन्म होगा। माना जाता है कि इसी बूंद शब्द से आगे चलकर बुंदेला नाम पड़ा। यही वे क्षण था जहां से बुंदेल वंश की शुरुआत मानी जाती है। बाद में पंचमदास मऊ मोहानी क्षेत्र में जाकर बस गए और वहीं से बुंदेला शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश का भी प्रभाव था। चंदेल राजाओं ने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध बनाया। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, कालंजर का किला और अनेक तालाब व दुर्ग उनकी महानता और कला का प्रमाण हैं। चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड को कला, धर्म और स्थापत्य का केंद्र बनाया, लेकिन समय के साथ उनकी शक्ति कमजोर होने लगी। लगातार विदेशी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों का कारण चंदेल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। इसी राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाकर बुंदेलों ने अपनी नई पहचान बनाई और मध्य भारत में अपनी शक्ति स्थापित करनी शुरू की। धीरे धीरे बुंदेलखंड में भी महत्वपूर्ण रियासतें उभरी, जिनमें ओरछा, पन्ना, दतिया, जैतपुर और शाहगढ़ प्रमुख थी। इन राज्यों ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े बल्कि संस्कृति, धर्म और स्थापत्य को भी आगे बढ़ाया। ओरछा रियासत के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला माने जाते हैं। उन्होंने 1501 ईस्वी में ओरछा राज्य की स्थापना की। वे एक वीर और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने ओरछा को सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाया और वह किले का निर्माण कराया। उन्होंने कालिंजर से अपने राज्य का विस्तार किया। सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी जैसे शासकों से भी उनका संघर्ष हुआ। उनके शासनकाल में ओरछा एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। इनके बाद भारती चंद बुंदेला ने शासन संभाला। उनके समय में ओरछा का सांस्कृतिक विकास शुरू हुआ। उन्होंने चंदेल शासकों से मित्रता की और शेषा, शूरी और हिमायू के संघर्ष का लाभ उठाया, बुंदेलखंड पर अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके समय में राजमहल, रानी महल और कई सुरक्षा संचारों का निर्माण हुआ। इससे ओरछा की सुंदरता और शक्ति दोनों बढ़ी। इसके बाद मधुकर शाह बुंदेला का शासन आया, जिसे बुंदेल इतिहास का स्वर्णिम काल बताया जाता है। मधुकर शाह भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। वह हमेशा माथे पर तिलक लगाते थे, इसलिए उन्हें मधुकर शाही तिलक भी कहा जाता है। उन्होंने ग्वालियर, नरवर, सिरोंज तक अपने राज्य का विस्तार किया। अकबर के समय ओरछा पर हमला हुआ, लेकिन मधुकर शाह ने अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति से राज्य को सुरक्षित रखा। उनके समय में मंदिरों का निर्माण हुआ और धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा मिला। इसके बाद राम शाह बुंदेला का शासनकाल चालू हुआ। राम शाह बुंदेला के शासनकाल में साहित्य और कला को संरक्षण मिला। प्रसिद्ध कवि केशव दास उनके दरबार में रहे। उनकी संरचनाओं ने बुंदेली संस्कृति को नई पहचान दी। इसके बाद वीर सिंह बुंदेला का शासन आया, जिन्हें ओरछा का सबसे महान शासक माना जाता है। उनका काल ओरछा का स्वर्णिम काल या स्वर्णिम युग कहलाता है। वीर सिंह देव ने मुगल राजकुमार सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बने, से मित्रता की। उन्होंने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का वध कराया। बाद में जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी। वीर सिंह देव ने स्थापत्य कला में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने ओरछा में भव्य जहांगीर महल बनवाया, जो आज भी मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। उन्होंने झांसी के किले का पुनर्निर्माण कराया, धामोनी किला बनवाया और केशव राय मंदिर का निर्माण कराया। उनके समय में बुंदेली स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसमें राजपूत और मुगल काल का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। इसके बाद जुजार सिंह बुंदेला ने शासन संभाला। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। शाहजहां चाहता था कि पूरा बुंदेलखंड मुगल सत्ता के अधीन आ जाए, लेकिन जुजार सिंह ने इसका विरोध किया। कई युद्ध हुए और अंत में उन्होंने दक्षिण की ओर जाना पड़ा। बाद में पहाड़ सिंह बुंदेला ने शासन संभाला और मुगल सत्ता के साथ संतुलन बनाकर राज्य को सुरक्षित रखने की कोशिश की। इसी वीर परंपरा में आगे चलकर महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। उनका जन्म 1649 ईस्वी में हुआ। उनके पिता चंपत राय बुंदेला मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। पिता की मृत्यु ने छत्रसाल के मन में स्वतंत्रता की आग जला दी। युवा अवस्था में ही वह छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले और उनसे प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड लौटे। इसके बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और धीरे धीरे एक स्वतंत्र बुंदेला राज्य स्थापित किया। उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया।
छत्रसाल केवल योद्धा नहीं थे बल्कि जनता के रक्षक माने जाते।

0: जाते हैं। उन्होंने मंदिर, तालाब, बावड़ियां और किले का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में जनता को सुरक्षा और सम्मान मिला। पन्ना और बुंदेलखंड के कई ऐतिहासिक निर्माण आज भी उनकी महानता की याद दिलाते हैं। छत्रसाल के जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। बंगस खान बहुत शक्तिशाली अफगान सेनापति था। उसने बुंदेलखंड को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय छत्रसाल वृद्ध हो चुके थे, स्थिति बहुत गंभीर थी। तब उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को सहायता के लिए संदेश भेजा। उसी समय उन्होंने प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी, जो गति गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी रखो लाज। इन पंक्तियों में छत्रसाल ने अपनी स्थिति की तुलना गजेंद्र मोक्ष की कथा से की। जैसे गजेंद्र हाथी संकट में फंसकर भगवान विष्णु से सहायता मांगता है, वैसे ही छत्रसाल ने बाजीराव से बुंदेलखंड की रक्षा की विनती की। बाजीराव तुरंत सेना लेकर आए और बंगस खां को हरा दिया। इस विजय ने बुंदेलखंड को बचा लिया। बाद में छत्रसाल ने अपने राज्य का एक हिस्सा मराठाओं को दे दिया, जिससे बुंदेलों और मराठाओं के बीच संबंध मजबूत हुए। छत्रसाल की वीरता पर लोक में एक प्रसिद्ध पंक्ति कही जाती है, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए, जित जित घोड़ा मुंह धरे उत उत फत्ते होए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जहाँ जहाँ छत्रसाल का घोड़ा चलता था वहाँ समृद्धि आ जाती थी और जिस दिशा में वे देखते थे वहाँ विजय मिलती थी। यह पंक्ति जनता के मन में उनके प्रति सम्मान और विश्वास को दर्शाती है। बुंदेला इतिहास को लिखित रूप देने में लाल कवि, जिन्हें गोरे लाल भी कहा जाता है, का बहुत बड़ा योगदान था। वह महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे। उन्होंने छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा जो बुंदेलखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उनकी रचनाओं में छत्रसाल की वीरता, युद्ध और संघर्ष का सुंदर वर्णन मिलता है। उनके काव्य में बुंदेलखंड की संस्कृति, भाषा, वीरता की झलक साफ दिखाई देती है। आज का बुंदेलखंड भले ही कई प्रशासनिक हिस्सों में बट गया हो, लेकिन उनकी ऐतिहासिक पहचान आज भी जीवित है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। यहाँ के किले, मंदिर, लोकगीत और परंपराएं आज भी लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। हर युग ने बुंदेलखंड को नई पहचान दी। यहाँ के शासक ने केवल तलवार के बल पर राज्य नहीं बनाए, बल्कि संस्कृति, धर्म, स्थापत्य और साहित्य को भी समृद्ध किया। ओरछा के महल, खजुराहो के मंदिर, कालिंजर का दुर्ग और बुंदेली लोकगीत आज भी उस गौरवशाली इतिहास का जीवित प्रमाण है। बुंदेलखंड की धरती हमें यह संदेश देती है कि कठिनाइयां और पराजय कभी किसी वीर समाज का अंत नहीं कर सकती, बल्कि वही संघर्ष आगे चलकर नई शक्ति और नए इतिहास को जन्म देता है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था बुंदेलखंड का इतिहास। वार्ताकार थे ऋषभ मौर्य।
2: साथियों, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ ही साइबर अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।
1: साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किए जाते हैं।
2: इससे बचाव के लिए साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी अत्यंत आवश्यक हो गई है।
1: साइबर अपराध वह अवैध गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को नुकसान पहुंचाया जाता है।
2: साथियों, साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार हैं। पहला है वित्तीय धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे कि लॉटरी, कैशबैक या बिजली बिल का झांसा देकर बैंक डिटेल या ओटीपी चुराना। दूसरा है फिशिंग और स्पैम, जिसमें कि फर्जी वेबसाइट या ईमेल के जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल करना होती है।
1: तीसरी है सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइल बनाना या किसी का अकाउंट हैक करके पैसे मांगना।
2: साथियों, साइबर सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा और ऑनलाइन खातों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखा जाता है।
1: साइबर सुरक्षा के कुछ उपाय भी हैं, जैसे मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें, दो स्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम करें, संदिग्ध ईमेल और लिंक पर क्लिक ना करें।
2: साथियों, सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करें, व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने में सावधानी बरतें, केवल सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट का उपयोग करें।
1: साइबर सुरक्षा व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करती है। ये डिजिटल दुनिया में विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: साथियों, प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करे और सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में योगदान दे। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी साइबर अपराध और सुरक्षा पर। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
4: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का युवाणी कार्यक्रम में। और संस्कृति, क्यों ना हम अपने दोस्तों का मनोरंजन करा दें एक बार फिर इस प्यारे से गीत के साथ।
1: हाँ हाँ, मनोरंजन तो बीच बीच में करते ही रहना चाहिए, इसलिए हम अपने साथियों आप सबको सुनवा रहे हैं फिल्म टू स्टेट से ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह चिन्मयी श्रीपदा की,
1: गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था शंकर ईशान लोयन।

0: इसी के साथ दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं आज की रोजगार सूचना।
1: साथियों आज की रोजगार सूचना में SSC CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद के नाम हैं ग्रुप बी एंड सी।
0: पदों की संख्या 12,256, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 32 वर्ष, आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन की डिग्री।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट करें।
1: तो साथियों ये तो थी आज की रोजगार सूचना, अब इसी के साथ ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तो साथियों अब गीत संगीत की ओर रुख कर लेते हैं और सुन लेते हैं फिल्म मिशन कश्मीर से ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मिशन कश्मीर फिल्म से प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला और सुनिधि चौहान की।
1: गीतकार थे राहत इंदौरी और संगीत दिया था शंकर ईशान लॉय ने। शिवांशु, मुझे लगता है जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, हमें अपने साथियों को कुछ जानकारी दे देनी चाहिए।
0: बिल्कुल संस्कृति, और वो जानकारी है गर्मी से बचाव और सावधानियाँ।
1: साथियों, गर्मी का मौसम आते ही लू, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 2026 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये सावधानियाँ लेना बहुत ही जरूरी है।
0: दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर न निकले। जरूरी हो तो छाता, टोपी, धूप का चश्मा लगाएं।
1: कपड़े हमें हल्के रंग के पहनना है, जो कि सूती हो, ढीले ढाले कपड़े पहने, काला रंग धूप सोखता है, उससे जरूर बचें। सिर ढकें, गमछा, दुपट्टा या कैप से सिर और कान ढक कर रखें, क्योंकि लू सीधे सिर पर लगती है। सनस्क्रीन SPF 30 15-20 मिनट पहले लगाएं और 3-4 घंटे में ये दोबारा लगाएं।
0: शरीर में पानी की कमी ना होने दें, डिहाइड्रेशन गर्मी की सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, दिन में 3-4 लीटर पानी पिएं, प्यास ना लगे तब भी थोड़ा थोड़ा पिएं। ORS नमक, चीनी, पानी, पसीने से नमक निकलता है, इसकी भरपाई जरूरी है। नारियल पानी, छाछ, लस्सी, बेल, शरबत, मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी।
1: गर्मी में जल्दी बासी खाना खराब हो जाता है, इसलिए वो भी नहीं खाएं। घर से निकलते समय 1 लीटर पानी की बोतल साथ रखें, खाली पेट बाहर ना निकलें। और हमें खान पान में भी कई सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें हल्का खाना, तला भुना मसालेदार गरिष्ठ भोजन कम करना चाहिए। दाल, चावल, खिचड़ी, दही इस समय बेहतर होता है। प्याज खाएं, सलाद में कच्चा प्याज लू से बचाता है। जेब में थोड़ा सा प्याज भी रख सकते हैं।
0: दोस्तों, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, गर्मी में फूड प्वाइजनिंग का खतरा ज्यादा होता है। कटे फल, गोलगप्पे, बर्फ वाले जूस से बचें।
1: हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, सुबह का बना खाना शाम तक खराब हो सकता है। फ्रिज का भी बार बार गर्म करके ना खाएं।
0: दोस्तों, घर को ठंडा रखें, दिन में खिड़की दरवाजों पर हल्के रंग के मोटे पर्दे लगाएं, धूप सीधी अंदर ना आए।
1: क्रॉस वेंटिलेशन, सुबह शाम जब गर्मी कम हो तब खिड़कियां खोलें, दिन में बंद रखें। कूलर, AC, कूलर में बर्फ डालने से ज्यादा ठंडक मिलती है। AC 24 से 26 डिग्री पर ही चलाएं, एकदम ठंडे से गर्म में ना जाएं। पौधे जैसे कि तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा घर को प्राकृतिक ठंडक देते हैं, इन्हें जरूर लगाएं।
0: याद रखें, गर्मी दुश्मन नहीं है, लापरवाही दुश्मन है। थोड़ी सावधानी से आप पूरा समर एंजॉय कर सकते हैं।
1: लू लगने के लक्षण और तुरंत क्या करें। लक्षण होते हैं लू लगने के साथ ही तेज बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, पसीना बंद होना, बेहोशी आना, इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसके तुरंत इलाज की हमें जरूरत होती है, क्योंकि मरीज को छांव या AC कमरे में लिटाएं, कपड़े ढीले करें, पूरे शरीर में ठंडे पानी की पट्टी रखें, गर्दन, बगल, जांग में बर्फ रखें। होश में हो तो ORS या नमक चीनी का पानी पिलाएं, बेहोश है तो कुछ न पिलाएं। तुरंत 108 पर कॉल करें, हीट स्ट्रोक में हर मिनट कीमती है।
0: तो साथियों, ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी गर्मी से बचाव और सावधानियां पर। संस्कृति, क्यों ना हम अपने दोस्तों को बता दें सवाल हमारे जवाब आपके अंक 123 के प्रश्न।
1: हाँ बिल्कुल शिवांशु, एक बार हमें अपने साथियों को सवाल हमारे जवाब आपके अंक 123 के प्रश्न एक बार और बता देने चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
0: हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य ने शुरू की है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया।
0: हमारा चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 की मेजबानी भारत का

0: कौन सा शहर कर रहा है?
1: हमारा पांचवा प्रश्न है, बीएम फ्रेम्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?
0: हमारा छठवां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी?
1: हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हेलोशीम युग के जीवाश्मों का एक भंडार खोजा गया है?
0: हमारा आठवां प्रश्न है, किस टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता?
1: हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला राज्य कौन सा है?
0: हमारा दसवां और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है?
1: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 123 देववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर। हमारा पिन कोड है 471001।
0: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchhatarpur@gmail.com।
1: इसके लिए हमें आपके पत्र 8 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें।
0: तो साथियों, ये तो थे सवाल हमारे जवाब आपके अंक 123 के प्रश्न।
1: तो अब वक्त हो गया है हमारा अपने दोस्तों से विदा लेने का, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है कि अब समय बहुत ही कम बचा है।
0: तो संस्कृति, हम अपने दोस्तों को बता देती हैं कल के कार्यक्रम। कल आप सुनेंगे वार्ता, महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच। वार्ताकार होंगे जय कुमार प्रजापति।
1: साथियों, साथ ही होंगी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और होंगे कुछ मनोरंजक गीत और साथ ही होगी रोजगार सूचना। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त संस्कृति पाठक
0: और शुभांशु प्रजापति को
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं गोलमाल फिल्म का गीत। आवाज है शान और अनुष्का मनचंदा की, शब्द रचना कुमार की है, संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म में शान और अनुष्का मनचंदा को। शब्द रचना कुमार की थी, संगीत निर्देशन था प्रीतम का। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। और इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है aircharpur1976@gmail.com। तो आप अपनी फरमाइश जल्द से जल्द हमें भेजना शुरू कर दीजिए ताकि 10 बजे आप अपनी पसंद के गाने अपनी फरमाइश के साथ सुन सकें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुहास शेट्टी की आवाज में टर्निंग 30 फिल्म का गीत। गीत लिखा है कुमार ने, जिसे संगीतबद्ध किया है सिद्धार्थ सुहास ने।

अभी आप सुन रहे थे टर्निंग 30 में सुहास शेट्टी को। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में पे बैक फिल्म का गीत। गीत लिखा है कुकू प्रभास ने, जिसे संगीतबद्ध किया है विजय नारायण ने।

कुणाल गाजावाला के गाए पेबैक फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1297 और रात 8 बजे यहीं से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम के कलाकार होंगे राकेश कुमार। 7:20 पर घरनी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजूरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा भेंटवार्ता रासायनिक उर्वरक एवं खाद का संतुलित उपयोग विषय पर डॉ बीरेन्द्र कुमार पटेल से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात 8:30 पर। दिल्ली से आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये तो थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे हिंदी महक के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ सलीम खान से। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 और शाम 5:40 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक गीत गीता का 11वां भाग, शीर्षक होगा विश्व रूप दर्शन योग। सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम की कलाकार होंगी संगीता चौधरी। फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही फिल्म से मैं हम आपको सुनवाएंगे जानवर फिल्म के गीत और ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। 10:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का भाग 8। सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ आप सुनेंगे 10:10 पर, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कन्नड़ भाषा का गीत। गीतकार होंगे BR गीता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल हम अनुप्रसारित करेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे और 2:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। 12:30 पर होगा संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2 बजे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही कल हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1298 और रात 8 बजे सुर्खियों में। दिन में 1 बजे महिलाएं सुनेंगी महिला सभा कार्यक्रम में कहानी संगिनी। कहानीकार होंगी भुवनेश्वरी पाठक, साथ ही होगी उपयोगी जानकारी। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे वार्ता महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच। वार्ताकार होंगे जय कुमार प्रजापति और होगी रोजगार सूचना। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम की कलाकार होंगी मीना गौड़। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 9। इसके अलावा होगी भेंटवार्ता गहरी जुताई से किसानों को फायदा विषय पर मस्तु पटेल से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा जात जात को पावनो जात जात में जाए। रात 8:15 पर आप सुनेंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे धीरेन्द्र सिंह परिहार, महेंद्र कुमार चौधरी और वीरेंद्र कुमार तिवारी। दिल्ली से कल हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:58 होने को हैं न्यूज हेडलाइंस। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना 2026 को स्वीकृति दी. इसके माध्यम से 48.32 लाख निजी संपत्ति धारक वैधानिक अधिकार पाकर मालिक बन जाएंगे. बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, जनकल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुल 21,485 करोड़ की स्वीकृति दी गई. सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं. नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी. आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं एक साथ काम कर रहे हैं. CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं. आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मिहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंद्र

0: अरोड़ा अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरां से, जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
1: जी,
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
1: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET

0: एनसीईआरटी को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन

0: देखो मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है।

0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।

0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा?
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए

0: मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
1: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
1: मेरा
0: अच्छा,
1: बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ही परीक्षण करूंगा। हाँ।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पास्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं राकेश कुमार। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं राकेश कुमार के स्वर में ये बिलवारी लोकगीत। ढोलक पर हैं देवेंद्र कुमार, बेंजो पर मदन सेन और बांसुरी पर मनोज कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे राकेश कुमार के स्वर में ये बिलवारी गीत। आइए इन्हें से आपको सुनवाते हैं एक और बुंदेली लोकगीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसमें आप आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश फेसबुक पेज पर भी भेज सकते हैं। प्रसार भारती आकाशवाणी केंद्र छतरपुर के लोकप्रिय फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मनभावन में सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित आपके मनपसंद सदाबहार और नवीनतम फिल्मी गीत। संगीत की मधुर सुर लहरियों के साथ बिताएं एक यादगार संगीतमय रात। तो याद रखिएगा, आज रात 10 बजे हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे ईमेल आईडी पर भी हमें अपनी फरमाइश और पसंद भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस आपको पता ही है, मैं एक बार फिर दोहरा देती हूं, aircharpur1976@gmail.com। तो याद रखिए, रात 10 बजे जुड़िए हमारे आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज और ईमेल आईडी के साथ। धन्यवाद। और अब आपको सुनवाते हैं राकेश कुमार के स्वर में ये पर्यावरण गीत।
6: अरे बंधी गया।

0: अभी आप सुन रहे थे राकेश कुमार के स्वर में ये पर्यावरण गीत। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं राकेश कुमार के स्वर में ये लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स

इस शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे राकेश कुमार के स्वर में ये लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत। ढोलक पर थे देवेंद्र कुमार, बेंजो पर मदन सेन और बांसुरी पर संगत कर रहे थे मनोज कुमार। आइए अब आपको सुनवाते हैं राकेश कुमार के स्वर में ये गारी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे थे राकेश कुमार से ये गारी। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं चेतावनी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: अभी आप सुन रहे थे चेतावनी, कलाकार थे राकेश कुमार। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं से एक और लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत। ढोलक पर देवेंद्र कुमार, बैंजो पर मदन सेन और बांसुरी पर मनोज कुमार।
1: बाबा साहब ने रच दो भा

राकेश कुमार के गाए इस लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गुमशुदा संबंधी सूचना। गुमशुदा युवती का नाम कुमारी साक्षी, इनकी उम्र करीब 19 वर्ष है। इनका रंग गोरा, आंखें कंजी, बदन मजबूत, कद 4 फुट 4 इंच। ये गुलाबी रंग का स्वेटर और नीले रंग का लोअर पहने, साथ में नाक में सोने का फूल पहने हुए। ये 14 फरवरी 2026 को ब्लॉक के पास नया पटेल नगर कोंच से सुबह लगभग 7 बजे से घर से निकली थी, जो आज तक वापस नहीं आई हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, कृपया इन नंबरों पर अवगत कराने का कष्ट करें। इनका संपर्क सूत्र है महेंद्रपाल, मोहल्ला नया पटेल नगर, ब्लॉक के पास कोंच। मोबाइल नंबर है 9519490665। दूसरा नंबर है 7754858205। इसके अलावा कोतवाली कोंच का मोबाइल नंबर है 7983486530। गुमशुदा युवती का नाम एक बार पुनः सुन ले, कुमारी साक्षी, और ये नया पटेल नगर ब्लॉक के पास कोंच जिला जालौन की निवासी है। इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है और ये दिनांक 14 फरवरी 2026 से लापता है। अब सुनिए एक और गुमशुदा संबंधी सूचना। गुमशुदा व्यक्ति का नाम तेज सिंह निरंजन, ग्राम व पोस्ट गढ़र, जिला जालौन की निवासी हैं। इनका रंग गेहुआ है। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फुट 7 इंच। शरीर की बनावट औसत, चेहरा सामान्य। इनके दाहिने हाथ में तिल का निशान है। इनकी उम्र करीब 55 वर्ष है। आंखें सामान्य हैं, बाल सफेद और काले हैं। इन्होंने बादामी शर्ट और स्लेटी पैंट पहना हुआ था और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मूलचंद्र है। ये दिनांक 20 अप्रैल 2026 को लगभग 11

बजे की 12 बजे के बीच से लापता है। किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वे इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9198663965, दूसरा नंबर है 7607858939। पुलिस अधीक्षक का नंबर है 9454400263। थाना प्रभारी कोतवाली उरई का मोबाइल नंबर है 9454403205। नाम एक बार पुनः सुन लें। गुमशुदा व्यक्ति का नाम तेज सिंह निरंजन, पिता का नाम स्वर्गीय श्री मूलचंद, ये ग्राम व पोस्ट गढ़र जिला जालौन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ये 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी। स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
0: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कम्प्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जांच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया।
2: केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त, जो रजिस्ट्रिया प्राप्त होनी है, उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे। यह पूरा

0: निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
1: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सके। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश

0: संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उर्दू अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादे बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें फिल्मकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित त्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन के रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अनीनों का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कम उम्र में मिली सफलता के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर गहरा अध्ययन करेगा। संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय के मुताबिक शोध में समझने की कोशिश होगी कि परिवार, कोच और सामाजिक सहयोग किस तरह किसी युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। बैतूल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे ग्राम टिकरिया को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया है। इस गांव में वाघमारे परिवार पुरातन भरेवा कला से पीतल और बेल मेटल की अनूठी कलाकृतियां बनाता है, जिसमें मोर, चिमनी, हाथी, हिरण और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने ग्राम लूनाहेड़ा और बूढ़ा में प्राचीन बावड़ियों का निरीक्षण किया, जिन्हें जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगर मालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर टीबी की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारी

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत है घरनी कार्यक्रम।

घनी कार्यक्रम सुनने वाली सवाई बहन और सवाई भैया हरन खां खुशी बहन की राम राम। देखो भैया बहन हारो बेरा भाई और हम अपन सवाई को मन पसंदीदा कार्यक्रम लेके हाजिर हो गए। अब हुई है बातचीत, गीत संगीत और इके संगे संगे हुई है कछु ज्ञानवर्धक चर्चाएं। इन्हीं सब बातन के संगे बढ़ाऊत है कार्यक्रम का आगे और भैया बहन हारो देखो शुरू करत है आज को कार्यक्रम। सो अब कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले तो अपन सवाई जनन खपत है कि गर्मी के मारे हाल बेहाल है ना। हम भी अपन से मिलवे आ रहे थे सो इतनी गर्मी है, रास्ता में भी खूब गर्मी लगी और देखो घर में भी खूब गर्मी गर्मी रात है सब जगह। तो देखो ऐसे में का करने अपन खा अपनी देखभाल करने अपने बाल बच्चन की और सबई की का की ऐसी गर्मी में अगर अपन खा बुखार ताप आ गो तो बहुत ही मुसीबत है और लू लग गई कहूँ तो फिर बिल्कुल समझ लो आफत ऐसी आ गई। अपन सब जनन खा बच के रखने और ऐसी गर्मियन में देखो अगर ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो कैसु नोनु है। अब हवा तो देखो पहले होकर अति बिरछन की अच्छी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती, अपन अपने बाहर दूरे में करके बैठ जाते, अपन अपने आंगन ही बैठ जाते तो इतने पेड़ पौधा लगे रहते कि हवा आती। अब तो अपन और प्राकृतिक बनावटी हवा ले रहे, प्राकृतिक हवा तो गोलई सी हो गई है। उके लाने देखो भैया बहन हारो का करने की जो बिरछा है उनको संरक्षण करने और उनकी देखभाल करने है। फिर से अपन खब ऐसे ही हवा मिलन लगे। आजकल अपन और देख रहे हैं कि विकास की अंधी दौड़ में भैया बहन हारे इतने बो हो गए कि सवाई तो बिरछन की कटाई कर डारी और देखो तो ठंडी हवा कहाँ से मिलवे ना तो छाया मिलवे। ऐसी गर्मी में छाया को भी अपनो एक अलग महत्व है कि तु राहगीर को अनु भैया बहन जा रहो ऐसी कड़कड़ाती धूप में और देखो अगर कहूँ अच्छु घनो बिरछा मिल जाए छाव मिल जाए तो कैसे नोनु लगत। तो देखो अपन को एक गर्मियन में का करने है अपनी देखभाल तो करने ही है मोड़ी मोड़न की करने संगे संगे हमें इन बिरछन की देखभाल सोई करने है। कैसे कि देखो बिरछा ना हुई है तो हवा ना हुई है और देखो जब हवा ना हुई है तो अपन और खा सांस ले में बहुत दिक्कत हुई है तो एक तरीके से जीवन संकट में है। तो अपन खा इस संकट से उबरने तो देखो बिरछन की अपन खा देखभाल करने उके लाने भैया बहन आ रहा है ऐसी गर्मी में अपन को का करने कि देखो जो बिरछा है छोटे छोटे हैं उन्हें तो बचाने ही बचाने संगे बड़े बिरछन खा भी बचाने तो ऐसी धूप में अपन खा कैसी प्यास लगत। उसे अपन खा अपने जो बिरछा है भी उनकी सुबह सुबह ठंडक में सिंचाई कर देवे खूब अच्छे उन्हें पानी दे देवे और इतो पानी दे देवे कि भी दिन भर रह सके। इसके बाद जब शाम को ठंडक हो जाए तो शाम को फिर से उन्हें पानी दे देवे जिसे भी रात भर पूरे अच्छे ठंडक में बने रहे तो उनका भी नुकसान न हुई भी सूख है ना। इसके संगे संगे अपन और का करें कि हो सके तो जो अपने छोटे छोटे पेड़ पौधा है उनपे और बड़े पौधा भी जी पर सीधी धूप ना पड़े उनका छाया करके रखें उनपे। अब कैसे छाया आजकल वह ग्रीन कलर की यानी हरीरे कलर की वह नेट आउट है ना उनको इस्तेमाल करवे जी के का हुई है जी की छाया से अपने बिरछन का एकदम सीधी धूप ना लगे और वे झुला सेना। इसके संगे संगे अपन और उनका काका ने गर्मियन में अपने पेड़न की कटाई छटाई से बचने हैं यानी उनके

0: अगर अपन और कटाई कर रहे हैं तो ऐसी शाखा की ना करवे जो हरी भरी है, ऐसी शाखा की करवे जो सूखी हो और जिनकी पत्तियां सूख गई हो। अगर इन प्रकार से अपन और अपने वृक्षन की देखभाल करें तो निश्चित है कि जो वृक्षाएं भी गर्मी में बची रहे और अपन और उनका भी राहत दे और अपन और उनकी राहत के लाने सोचे तो ये अपन को काम करने हैं। भैया बहनों देखो अपनों बतकाव तो होते ही रहे, मिल रहे हैं तनक से अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: भैया बहना रो देखो अंतराल के बाद फिर से स्वागत है अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम घरनी में। और देखो भैया बहना रो, अपन और हैं खेती किसानी वाले आदमी, तो अपन औरन की फसल अच्छी होए जा अपन की मनसा रहे थे, तो अपन खा अपनी फसल अच्छी जाने अच्छो मुनाफा होए, इके लाने हमें काकन ने अपनी फसल की गुणवत्ता का बढ़ाने यानी अच्छो रखने है। इके लाने हमें सबसे पहला तो अच्छी किस्म के बीज को चुनाव करने काय के, एक अगर हम अच्छी किस्म के बीज को चुनाव कर है तो हमारी फसल अच्छी हुई है। और उनके संगे संगे हमें कछु बातन को और ध्यान रखने, जैसे कि हमें सही उर्वरक यानी सही खाद में डालने, कौन सी डालने, रासायनिक खाद नहीं डालने, अपन और डालने जैविक खाद, जिसे का हुई है हमारी फसल की गुणवत्ता अच्छी हुई है, संगे संगे हमारी जो पैदावार है वा भी अच्छी हुई है, जिसे हमें बाजार में उनको अच्छो दाम मिल है और हमें मुनाफा हुई है। भैया बहनारो, हमें अपनी फसल खा अच्छी समय पे सिंचाई करने और खेतन में अगर हम जैविक खाद डाल रहे हैं तो उसे हमारी जौन भी फसल हुई है, देखो उनकी गुणवत्ता अच्छी रहे। इसके संगे संगे अपन खा एक लाभ और हुई है, वो का कि हमारे जो खेत की माटी है वह बहुत अच्छी रहे, उमे देखो उर्वरकन की भी कमी ना हुई है और का हुई है कि उकी गुणवत्ता अच्छी रहे तो हमारी फसल उसे ही अच्छी हुई है। और अपन और जब देख रेख अच्छी कर है और अच्छी जैविक खाद अपने हैं तो देखो अपन की फसल अच्छी हुई है, अपन खाद छु बाजार में लाभ मिले और अपनी फसल की मांग हुई है। तो सभी भैया बहन हारे देखो, रासायनिक खादन को उपयोग कम करें, जैविक खाद को उपयोग ज्यादा करें, जिससे हमारी फसल की गुणवत्ता बढ़े, फसल अच्छी हुए और हमें लाभ हुए। भैया बहन हारे ऐसा है कि सभी जने इस बात को ध्यान रखें और जैविक खाद के महत्व को समझ के अपने खेतन में जैविक खाद को उपयोग करें। भैया बहन हरो देखो, अपन और बतकाव आगे भी कर भी, इके पहले देखो हम अपने भैया बहन हरन हा समय समय पे कछु ऐसी जानकारी ले आउते हैं जो उनके लाने ज्ञानवर्धक होती है और उनके बहुत काम की होती है। एक क्रम में आज हम अपने भैया बहन हरन के लाने एक भेंट वार्ता ले आए हैं, रासायनिक उर्वरक एवं खाद का संतुलित उपयोग, ई विषय पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल से रविंद्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत। तो लियो सुने भैया बहन हरजा भेंट वार्ता।
1: अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और किसान भाइयों को नमस्कार।
1: अब हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि आज कोई ना कोई महत्वपूर्ण विषय रखा होगा बातचीत के लिए, तो आज जो हमारा विषय है संतुलित खाद।

0: एवं उर्वरकों का उपयोग, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारा विषय है कि संतुलित खाद और उर्वरक, तो उर्वरक आखिर है क्या, इसका जो उपयोग है इससे किसानों को क्या फायदा है?
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उर्वरक क्या है और खाद क्या है और इसका संतुलित उपयोग करने से हमें क्या फायदा होगा। तो जो उर्वरक है हमारा, ये रासायनिक होते हैं, इनमें दो या तीन पोषक तत्व होते हैं। लेकिन जो खाद होती है, जो हमारी गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, या हमारे जो फसल अवशेष है उनके द्वारा बनाई गई खाद को हम खाद बोलते हैं। इसमें पौधों को जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो 17 पोषक तत्व चाहिए वो सभी विद्यमान होते हैं। तो ये मतलब दोनों, अगर संतुलित मात्रा में हम इनका दोनों का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा पर्यावरण अच्छा रहता है, साथ में पौधों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो जो उससे उत्पादन प्राप्त होता है वो भी अच्छा रहता है। और जो हमारा खाद है, अगर हम एक ही खाद का उपयोग करेंगे तो पोषक तत्वों की हमारी सॉइल में कमी हो जाती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी भूमि के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये रासायनिक है। रासायनिक हमारे मिट्टी में जब हम डालते हैं तो उसको हार्ड बना देते हैं, उसमें जीवांश की मात्रा को कम कर देते हैं, और ऐसा होता है कि उसमें दो तीन पोषक तत्व होते हैं तो वो पोषक तत्व बार बार देने से बाकी पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है।
0: बिल्कुल। और संतुलित उर्वरक से फसलों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है किसान भाइयों के लिए?
1: संतुलित उपयोग करने से, जैसे कि हमारे भोजन में हम दाल, रोटी, चावल, सब्जी सभी खाते हैं जिससे हमें प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल सके, ऐसे ही पौधों को जब हम संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उनको सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। तो सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं तो प्लांट का जो डेवलपमेंट या विकास है, जो उपज है, वो अच्छी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारा जो खेत की जो भूमि है, जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे जीवन की इकाई है, इसका स्वास्थ्य बना रहता है, और इसके स्वास्थ्य रहने हमारा पर्यावरण, हमारा जल, हमारे मनुष्य, हमारे जानवर, क्योंकि हम जो फसलों से अवशेष प्राप्त होता है उनसे भूसा बनाते हैं, उसे पशुओं को खिलाते हैं, जो अनाज प्राप्त होता है उसे हम खाते हैं, अगर उसमें केमिकल डालेंगे तो हमारे फूड चेन में आ जाएगा, हमें कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं तो हमारी भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और फसलों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्पादन अधिक प्राप्त होगा।
0: पोषक तत्वों की बात की है डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषक तत्व फसलों को बहुत होते हैं?
1: वैसे तो जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से तीन हमें देने की जरूरत नहीं होती है, जिसको हम कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं, ये हमें प्राकृतिक से फ्री मिलते हैं। लेकिन बाकी के पोषक तत्व तो हमें देना पड़ता है, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, इनको तो किसान देते हैं, जिसमें से दो पोषक तत्वों को ज्यादा देते हैं, जैसे कि यूरिया और डीएपी से देते हैं ये दो, लेकिन पोटास हमारे यहाँ के किसान यूज नहीं करते हैं। और कुछ हमारे द्वितीय पोषक तत्व तो सूक्ष्म गौण पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें प्लांट को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उतनी ही आवश्यकता होती है जितने की अदर पोषक तत्व हैं। तो अगर हम ये बैलेंस प्रोपोर्शन में अगर देते हैं ये सभी 17 पोषक तत्व, तो हमारा अच्छा विकास होता है और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल। तो अब खाद का उपयोग की बात आती है, तो कब और कितना करना चाहिए किसान भाइयों?
1: हाँ, किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उर्वरक या खाद का कब और कितना मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो जो हमारी खादें होती हैं, तो बुआई के एक महीना पहले हम जुताई करते समय खेत में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होते हैं। लेकिन उर्वरक जो हमारे होते हैं, ये फसल की बुआई के समय या बुआई के बाद हम स्प्रे के द्वारा या सिंचाई के बाद हम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सप्ताह में प्लांट को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन खाद में धीरे धीरे पूरे जीवन चक्र में या 2 से 3 साल तक प्राप्त होते हैं। तो इसको बुआई के एक महीना पहले, और जो गोबर की खाद है, जो खाद है, इसको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, और उर्वरक है तो ये फसल विशेष होते हैं, इनको फसल, जैसे कि हमने धान की फसल लगाई है तो उसमें हमें जो है यूरिया देना है अपना 120 kg देना है, और 80 kg अपने को डीएपी देना है, पोटास 60 kg देना है, तो ये रहता है। लेकिन हम अगर दलहनी फसल उपयोग करते हैं तो इसकी आधी मात्रा उपयोग करनी है
0: जी। और कई किसान भाई केवल अगर यूरिया का उपयोग करते हैं तो क्या फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?
1: जो यूरिया होता है उसमें हमारा नाइट्रोजन पोषक तत्व मिलता है, एक ही पोषक तत्व मिलता है, उसमें 46% हमारा नाइट्रोजन होता है। तो इसका उपयोग करने से हमारा क्या होता है, प्लांट का जो वृद्धि है, विकास है, वो अच्छा होता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत घुलनशील होता है
0: जी।
1: तो क्या होता है कि एक सप्ताह में पौधों को प्राप्त हो जाता है, और पौधों के जो अलावा होता है वो हमारे ग्राउंड वाटर, जो हमारा जल होता है, है उसमें घुल के नीचे चला जाता है।

0: तो जो हमारे ट्यूबवेल हैं या कुआं हैं उसमें वो उसका कंटामिनेशन हो जाता है। तो अगर हम संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं तो ये हमारे वाटर को क्या कर देता है, खराब कर देता है। और अगर उसको हम उस वाटर को उपयोग करते हैं, जैसे तालाब में जाके खेत का बह के पानी इकट्ठा हुआ, नहर में इकट्ठा हुआ, तो हमें एक रोग होता है बच्चों को जो 5 साल से छोटे होते हैं, जैसे ब्लू बी सिंड्रेम कहते हैं, उससे बच्चों को बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है, तो ये हमारा नुकसान है। इसीलिए हमें पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही यूरिया का उपयोग करना चाहिए।
1: अच्छा, फसल के अनुसार जो है उर्वरकों का जो चयन है या मात्रा है वो कैसे क्या निर्धारित होती है?
0: इसमें ये होता है कि हमारी एक अनाज वाली फसलें होती हैं, एक दाल वाली फसलें होती हैं, एक तेल वाली फसलें होती हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा उगाई जाती हैं। तो जो हमारे अनाज वाली फसलें होती हैं इसमें उर्वरकों की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, चने का पौधा और गेहूं के पौधा में बहुत अंतर होता है, तो उसको उतनी बाढ़वार के लिए ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो उसमें से जैसे कि हम पहले तो मृदा परीक्षण कराते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा पोषक तत्व हमारी सॉइल में कितनी मात्रा में उपलब्ध है। अगर
1: जी
0: ये कराते हैं तो किसानों को सभी ब्लॉकों में फ्री अवेलेबल है मिट्टी परीक्षण कराने के लिए, तो वो करवा ले तो उससे हमें एग्जैक्ट मात्रा पता चल जाएगी कि कितनी देनी है। तो हमें उसमें लिखा रहता है कि इस फसल में इतना किलोग्राम हमें यूरिया देना है, इतना किलोग्राम हमें डीएपी देना है। तो सभी किसान भाइयों से पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सभी ब्लॉकों में आपको फ्री मृदा परीक्षण होगा, तो अपने जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनसे आप बात करिए, वो आपका सैंपल लेके जाएंगे और आपको रिपोर्ट देंगे। उसमें आपके सभी आने वाली फसलों के में लिखा रहेगा कि कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना है। लेकिन अगर गेहूं की बात करूं मैं या चना की बात करूं, तो गेहूं में हमें नाइट्रोजन 120 केजी और हमारा पोटास हमें 60 केजी और हमें फास्फोरस और 80 केजी डालना होता है। और चने में बात करें तो चने में हमें 20 किलो हमें यूरिया डालना है और 60 किलो डीएपी डालना है और 80 केजी हमें पोटास डालना है।
1: जी। जैविक खाद और रासायनिक खाद की बात होती है, तो क्या इन दोनों खादों का अगर संतुलित उपयोग किया जाए या मिश्रित उपयोग किया जाए दोनों खादों का, तो क्या कुछ है लाभ मिल सकता है किसानों को?
0: बिल्कुल सही आपने पूछा, ये सवाल बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम इनकी आधी आधी मात्रा दोनों से पूर्ति करते हैं अपने खेत में, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा खाद है उससे मैंने बताया कि 2 से 3 साल तक पोषक तत्व तो धीरे धीरे मिलते हैं। और हम क्या किया कि उससे तो क्या हुआ कि 3 साल के लिए हमने दे दिया, जैसा कि किसान भाई करते हैं गोबर की खाद एक खेत में डाल देते हैं, फिर 2-3 साल बाद उसमें खेत में डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे धीरे धीरे मिलते हैं। और जो हमारे उर्वरक होते हैं उससे हमें एक ही क्रॉप का जीवन चक्र होता है उससे मिलते हैं। तो इन दोनों को अगर हम आधी आधी मात्रा में देते हैं तो उससे हमारा भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फसल का उत्पादन अच्छा रहता है और हमारी लागत में भी कमी आती है, क्योंकि उर्वरक महंगे होते हैं, खाद सस्ती होती है। किसान भाइयों के पास पशु होते हैं, उनका जो गोबर है वो हम उस खाद के रूप में उपयोग करते हैं, तो हमें बाहर से कुछ भी खरीदना भी नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल। तो बुंदेलखंड जैसे और भी क्षेत्र होंगे, या बुंदेलखंड की बात करें कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा खाद होती है, इनमें पोषक तत्व के अलावा 2-3 गुण और विद्यमान होते हैं। ये जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब जल को रोकने की क्षमता होती है, मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। तो अगर इन दोनों का उपयोग हम संतुलित मात्रा में करेंगे तो, और उर्वरकों के लिए जो हमारा क्या होता है उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो जैसे हमारे पास 2 पानी उपलब्ध है, तो हम अगर दोनों को जैसे कि हमने उर्वरक बस किया उसमें 4 से 5 पानी लगेगा, लेकिन खाद और उर्वरक का हमने संतुलित उपयोग किया तो कम पानी में भी हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं।
1: जी। उर्वरकों का उपयोग करते समय हमारे जो किसान भाई हैं क्या क्या सावधानियां रखें?
0: किसानों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें उसकी जितनी मात्रा है उतनी मात्रा, तो ये हम कृषि विशेषज्ञ या आप हमारे द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे ग्राम सेवक हैं उनसे बात कर सकते हैं, आप मृदा परीक्षण करा के सही मात्रा का पता लगा सकते हैं। तो अगर अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उर्वरकों में 2 या 3 पोषक तत्व होते हैं। तो जैसे हम एक चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं तो एक चीज हमारा कम हो जाता है, लेकिन पोषक तत्व तो हमें एक संतुलित मात्रा में 17 ही चाहिए होते हैं। लेकिन अगर बोलते हैं जब एक ज्यादा हो जाएगा तो दूसरे की उपलब्धता को कम कर देता है, तो इसीलिए हमें बराबर मात्रा में उपयोग करना है।
1: जी। अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए आज के विषय को लेकर संतुलित खाद एवं उर्वरकों का उपयोग, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्या जरूरी सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों लास्ट में आपको यही बताना चाहूंगा कि आप उर्वरकों के साथ हम खाद का करें, इससे हम गोबर की खाद से हम वर्मी कम्पोस्ट बनाएं, हमारे जो खरीफ के

0: फसल में खेत खाली रहते हो उसमें हरी खाद उगाएं, और साथ ही साथ जो हम फसल जला देते हैं उसको हमें क्या करना है, उसका खाद बनाना है, उनका उपयोग करना। साथ में हमारे जैव उर्वरक होते हैं उनका भी उपयोग संतुलित मात्रा में करेंगे तो हमारी भूमि हमेशा के लिए स्वस्थ बनी रहेगी, क्योंकि मिट्टी का दिनों दिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, तो आने वाली हमारे जो जनरेशन उसके लिए ये बहुत बेकार है। तो हम संतुलित मात्रा में उपयोग करें तो हमारे लिए अच्छा है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा।
1: जी, संतुलित खाद एवं उर्वरकों का उपयोग, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल जी। हमारे किसान भाइयों ने सुनी होगी और जो जरूरी सलाह है, सावधानियां हैं, वो आपकी बताई गई बातों को ध्यान देंगे और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब।
2: भैया बहनरो अवे अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, रासायनिक उर्वरक एवं खाद का संतुलित उपयोग, इस विषय पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल से रविंद्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत। और भैया बहनरो देखो कैसी गर्मी को मौसम है, अपन तो ठीक ही ठीक है, अपन तो अपन खा ध्यान रखना ही है, जैसे कि उन्होंने बताई कि अपने बेछन को भी अपन खा गर्मियन में देखभाल अच्छी तरीके से करने जिसे मुरझाए ना, इसके संगे संगे देखो अपने जो पशुधन है उनको सुई संरक्षण अपन खा गर्मियन में करने, यानी उनकी देखभाल सुई करने, कैसे कि बेबी तो देखो अपने परिवार को एक हिस्सा है, अपनी खेती किसानी में देखो अपने काम आउत, और कोई भी होए कोनू भी पशु हुए हर तरीके से देखो अपने काम आ रहा हो अपने घर है तो हमें उनकी देखरेख करने, गर्मियन में पशुअन को भीषण गर्मी और लू से बचावे के लाने देखो उन्हें का करें कि छायादार और हवादार जगह पे रखें, दिन में का करें दो तीन बार उन्हें ठंडो पानी पिए खा दें नहवाएं, इके संगे संगे दोपहर की धूप में उन्हें बाहर ना निकालें, उनके चारे में हरो चारो व खनिज मिश्रण शामिल करें। भैया बहनों देखो उन्हें अपन का ऐसी जगह बांधे जहाँ चारों तरफ से हवा आ रही हो, और उनको जो छत है जैसे अपन टीन के सेट डाल देवे, इस तरीके से अगर अपन और उनका ताजी हवा वाली जगह में रखें तो वे अपनी बीमारी से बचे। इके बाद संगे संगे अपन ऐसो भी कर सकत के तो फट्टा डाल देवे और उन पे पानी छिड़क देवे तो ठंडी हवा है जो लू आ रही है ठंडक में बदल जाए, तो इस तरीके से देखो उन्हें लू भी ना रखे, संगे संगे उनको पानी की पर्याप्त मात्रा देने, बड़े बड़े पानी जो नाने हो उनमें ठंडू पानी भरे, ऐसा नहीं है कि बासो पानी भरू है गर्म तातो अभी पी रहे, ऐसो नहीं करने, ऐसो अपन और ठंडे पानी की प्यास लगा ऐसी तो उनका लगा तो अपन और दिन में दो तीन बार उनका अच्छा ठंडो पानी रखने, इसके संगे संगे नमक और गुड़ को घोल भी उनका देने जिसे का है उनमें ऊर्जा बनी रहे और उनके पाचन भी ठीक रहे। आहार में का करने उनका संतुलित आहार देने, ऐसा नहीं है कि उनका चाय जब दे देने, देखो सुबह के समय उनका ठंडे ठंडे में देवे और शाम का उनका जब शाम हो जाए ठंड हो जाए जब ही देने, हरो चारा देने जिसे का हुए और उन्हें जिसे उन्हें अपन पर्याप्त ऊर्जा मिलत रहे हरी चारे से उनका अच्छो लगे, और इसके संगे संगे उनमें थोड़ी थोड़ी भूख बढ़ावे के लाने दूध की क्षमता बढ़ावे के लाने उनमें खनिज लवण जरूर मिलावे जो उनके लाने जरूरी हो। इस तरीके से देखो अगर अपन अपने पशुअन की देखरेख कर हैं तो निश्चित है कि उन्हें गर्मियन में कोनू रोग राई न हुई है, अपने पशु सुरक्षित रहे। भैया बहनरो अपन बतकाव आगे भी कर भी मिल रहे हैं इतनक से अंतराल के बाद।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: और भैया बहन हरो देखो अपनो बतकाव भी कुल होगा, अपन और ने ऐसी नौनी जानकारी भेंट वार्ता के माध्यम से लई, और देखो आज है मंगल, अब कायना कछु गीत संगीत हो जाए, अपने भैया बहन हरे बाट ही रहे हुई है अपनी मन पसंदीदा कार्यक्रम लोकमंजरी की, तो देखो हम भी बिना अबेर करीब है अपने भैया बहन हरन हा सुनवाऊ थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पे आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम लोकमंजरी, और आज के लोकमंजरी कार्यक्रम के प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की, और कार्यक्रम के शुरुआत में हम अपने भैया बहन हरन हा सुनवाऊ थे जो गारी, भैया बहन हरो ई गारी खा सुनवे के लाने जा चिठिया हमें लिख पहुंचाई है ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महोबा उत्तर प्रदेश से, चिठिया लिखने वाली भैया बहन ओम प्रकाश नामदेव, पुष्पा नामदेव, कुमारी मेघा, घटा, रंभा, परी, भूमिका, वर्षा, शिल्पा, अलका नामदेव, इन सभी लोगों ने एक गीत के लाने जागली चिठिया हमें लिख पहुंचाई है ग्राम गौना कुसमार थाना सौजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से, चिठिया लिखवे वारी भैया बहन कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश देवी, अखिलेश देवी।

मक्खनलाल चाहना, आकाश, रानी परी, सुरभि, नामदेव इन सभी लोगों ने। और ये गीत के लाने जा अगली चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है ग्राम मिर्तला जिला महोबा से। चिट्ठिया लिखवी वारे भैया बहने नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, गुरु महाराज भूपेन्द्र सिंह और जानवी राजपूत ने। एक संगे जहाँ अंतिम चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है दलहनिया रोड भट्टीपुरा महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। चिट्ठिया लिखवी वारी भैया बहने जवाहरलाल कुशवाहा, सोना कुशवाहा, रामचरण कुशवाहा, गिरजा देवी और भगवान दास कुशवाहा ने। तो लियो अपन सभी जाएं की पसंद पे हम अपने भैया बहना रहना सुनवाऊ थे जग गारी। जी खा गा रही है माया देवी अनुरागी, सुने सभी भैया बहना रहे।

गीत खिलाने जा, अगली चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई ग्राम बुड़गहना छत्तीसगढ़ से। चिट्ठिया लिखवे बारे भैया बहन राम दुलारी राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांत प्रजापति इन सभी लोगों ने ये गीत खिलाने जा अगली चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई ग्राम खड़ीचरा जिला अशोकनगर से। चिट्ठिया लिखवे बारी भैया बहन आसाराम हरिओम रवि सुदामा शंकर कल्याण सचिन सेवम शुभ श्रेयांश शांति हरकुवर बंटी संगीता सेवन रागनी सृष्टि और रिद्धि इन सभी लोगों ने ये गीत खिलाने जा अंतिम चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है सिंघाड़ी नदी कबीर आश्रम छतरपुर मध्य प्रदेश से। चिट्ठिया लिखवे बारी भैया बहन महंत बाबूदास साहेब महंत धर्मदास साहेब स्वामी प्रसाद दास कबीरपंथी राकेश दास कबीरपंथी मुन्ना दास कबीरपंथी इन सभी लोगों ने। तो लियो अपनी भैया बहन आ रहे अपनी पसंद पर सुने जो चेतावनी जी का गा रहे हैं देवी सिंह यादव।

भैया बहनों, अबे अपन ने सुनो माया देवी अनुरागी से जो गारी और लोकमंजरी कार्यक्रम के अगले क्रम में हम अपने भैया बहन हरन हाँ सुनवा रहे हैं जो चेतावनी। भैया बहनों, इस चेतावनी का सुनवी किला ने जो चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है, ग्राम जवाहरपुरा पोस्ट मवई जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से चिट्ठिया लिखवे वाली भैया बहन है घनश्यामदास अहिरवार, राम प्यारी, नारायण दास अहिरवार, सोना देवी, अखिलेश अहिरवार, गोमती देवी, अंजलि अहिरवार, इन सभी लोगों ने। और

भैया बहनों, अब सुनिए, अपन ने चेतावनी जी का गा रहे थे देवी सिंह यादव और लोकमंजरी कार्यक्रम के अंत में हम अपने भैया बहनों ना सुनवाओ थे जो दादरा। भैया बहनों, ई दादरा का सुनबे के लाने जो चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है नेपाल पैलेस सागर से। चिट्ठिया लिखने वाले भैया बहन है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रावण ने। एक लाने जा अगली चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है ग्राम कटकहा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से। चिट्ठिया लिखने वाले भैया बहन प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अम्बिश, कृष्णा और प्रांसी सेन। एक लाने अगली चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है ननोरा, महुआ, उत्तर प्रदेश से। चिट्ठिया लिखी वाली भैया बहन है बलराम दास, कुमारी कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा ने। एक लाने जान दी चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ, दीवानपुरा राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। चिट्ठिया लिखी वाली भैया बहन है विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या और नीलम देवी ने। तो लियो अपन सब जन की पसंद थे हम अपन खा सुनवाऊ थे जो दादरा जी का गा रही है प्रमिला सागर।

भैया बहनों, अब अपन ने सुनो जो दादरा जी खा गा रही थी प्रमिला सागर, और आज को लोकमंजरी कार्यक्रम में तही होता समाप्त। अगले लोकमंजरी कार्यक्रम में कछु नई फरमाइश और नई लोकगीतन के संगे फिर हाजिर हुई। भैया बहन आ रहो, हमें अपनी चिठिया पाती जरूर डारे। हमारी चिठिया पाती को पतो है लोकमंजरी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, पिन है 4710001 छतरपुर। लिख बो बिल्कुल ना भूले, कैसे कि अपन छतरपुर से ही सुन रहे है ना। तो भैया बहनारो, अब देखो हो रही है बीरा चलवे की। हम अपने भैया बहनारा ना बता दें आज की सीख। भैया बहनारो, आज की सीख को विषय है जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। मतलब प्रभु जौन हाल में जौन परिस्थिति में अपन का रख रहा है या जौन परिस्थिति अपन के सामने बना रहा है, अपन वही हाल और परिस्थिति में खुश रहें, वही में जीवो सीखें तो ज्यादा अच्छा है। हम ईश्वर के प्रति अपनो विश्वास बनाए रखें, अपनी जिंदगानी बहुत खुशहाल हुई है ना, और अपन सुखी रहें। भैया बहन आरो एक के संगे अपनी खुशी बहन कौन मति दो इके पहले बता दें कल के कार्यक्रम। तो भैया बहन हरे कल सुन है धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 9। इके संगे भेंट वार्ता हुई है गहरी जुताई पे किसानों को फायदे विषय पर मस्तु पटेल से रविंद्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत। आज ये सीख हुई है जात जात को पावनो जात जात में जाए। एक संगे अपनी खुशी बहन को दो अनुमति। भैया बहन हरो राम राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी घरने कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है, लीजिए अब सुनिए विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण का प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।
1: प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण।
2: इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। पार्टिसिपेंट्स आर शेखर अय्यर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड SP सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। द मॉडरेटर इज सोनू सूद।
4: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. SP Singh and Mr. Shekhar Ayer. Mr. Singh, Mr. Ayer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
5: Namaskar, thank you.
4: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
5: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग। मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जाए।

0: सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, the government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over at last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग, लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay,

0: and to south, that this whole thing, that entire India being one market, so that our
1: Yes.
0: farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, looking at direct income support. For
1: Right.
0: instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, that
1: Yes.
0: is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so
1: Yes.
0: that, it focuses on low productivity districts.
1: Yes.
0: Focus on that. Then also, the overall thing is, mission for Atmanirbharta in
1: Yes.
0: pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming, so
1: Right.
0: that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: यस मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की. अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा।
1: जी
2: तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था।
1: जी
2: तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा
2: जी
1: सॉयल हेल्थ
2: लगभग
1: कार्ड.
2: सभी किसानों के करा
1: जी
2: दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए।
1: जी
2: दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं, और रो

डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार

0: मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से। वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful.
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then, after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that they revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr.

0: सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
1: कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कारपोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
0: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
1: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइट सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% benefit beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspect.

0: aspirational district. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
1: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final product. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
0: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishw hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, पीएलआई भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं, जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
0: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1000 185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर

0: स्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि स्कोप और भी ज्यादा है?
1: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ high value crops like coconut, cocoa, cashew, sandalwood in coastal regions and agar trees in northeast and almonds, walnuts and pine nuts in hilly areas. These have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
0: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में आंधी फिल्म का गीत। लेकिन इससे पहले आप सुनिए आकाशवाणी संदेश।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म थी आंधी। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोलमाल फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। लेकिन इससे पहले आकाशवाणी संदेश।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए घर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं।

हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40

0: लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से तीन चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रूपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
1: जी।
0: अब उसके अलावा 400 रूपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
1: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
0: ये मददगार कितनी ज्यादा थी ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
1: जी।
0: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
1: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
0: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
1: जी,
0: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपया का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
1: जी।
0: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
1: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
0: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
1: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
0: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे ULBs हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग लोन चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़के इस स्कीम ने नहीं देखा।
1: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे?

0: बढ़कर अपना काम करते हैं।
1: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं। वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा। आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
0: जी,
1: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
0: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
1: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो QR कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है, जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
0: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
1: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं। तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में, बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
0: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
1: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको तो है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो। जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहां जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर स्पेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं न कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
0: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
1: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का रहना ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ और खाने पीने का, एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन 4 पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
0: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए, क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
1: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है, ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
0: जी,
1: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
0: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी इस स्कीम में शामिल होंगे?
1: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम इसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा अब उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर

0: भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
1: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें।
0: जैसे हमारा जो स्कीम है, जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
1: बिल्कुल।
0: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से। तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकंड लोन लिया है और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपेयर कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
1: पिछले हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
2: सर, हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
1: जी।
2: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे। दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा होगी। पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा। फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा। फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि के साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल। तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी नेशनल बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो। और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें, और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कम्बाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। यदि आप भी अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर अपनी पसंद और नाम पते के साथ भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है AIRCHATARPUR1976@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी अपना फरमाइश के साथ हमें अपना नाम पता भेज सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन को, फिल्म थी इतिहास। गीत लिखा था समीर ने, जिसे संगीतबद्ध किया था दिलीप सेन, समीर सेन ने, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। इसी गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। यह अगला मेल आया है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहरा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आमा खोड़रा रेंगाखार से जिला कबीरधाम से ये हमें मेल भेजा है देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया, गीत सरगम नेताम ने। इसी क्रम में यह अगला मेल आया है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल का। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के ने। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का ने। इसी गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे ग्राम आमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और यहीं से ये अगला मेल प्राप्त हुआ है साधु बाबा वीरेन्द्र सिंह तोमर, संजय, दीपक और सोनू तोमर का। ये अगला मेल आया है गांव खींदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं कानाराम, सुखाराम, श्याम सुंदर और तपस्या चौहान। रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवार वाले। ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। और इसी क्रम में यह अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल का। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल जले फिल्म का गीत। आवाज कुमार सानू की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन अनु मलिक का। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम खड्डी जिला छतरपुर से कुलदीप त्रिपाठी, अदिति त्रिपाठी, माही त्रिपाठी। ये अगला मेल आया है ग्राम नहदौरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से ऋषि चतुर्वेदी, रिद्धि चतुर्वेदी, मेघा चतुर्वेदी, रामावतार चतुर्वेदी और अर्चना चतुर्वेदी। इसी क्रम में ये फेसबुक से हमारे श्रोता मित्र अपनी फरमाइश भेजते हैं और इनके नाम है ग्राम नहदौरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से ही मनोज चतुर्वेदी, खबरी चतुर्वेदी, वंदना चतुर्वेदी, सुरभि चतुर्वेदी और इनके परिवार वाले। ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। यह अगला मेल आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये और तन्मय गजबिये। ये फेसबुक पेज पर हमें फरमाइश प्राप्त हुई है दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी।

ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अर्शराज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार वाले। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं दिल जले फिल्म का ये गीत। आवाज कुमार सानू की, शब्द रचना जावेद अख्तर की है, संगीत निर्देशन अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में दिल जले फिल्म का गीत आवाज। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और चित्रा की युगल स्वर में विरासत फिल्म का गीत। गीतकार एक बार फिर जावेद अख्तर और संगीत पुनः एक बार अनु मलिक का दिया हुआ है। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से हमें अपनी फरमाइश भेजी है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसी क्रम में अगला हमें फरमाइश प्राप्त हुई है, अगली फरमाइश प्राप्त हुई है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू मौर्य, आरोही और स्वाति मौर्य। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ये फेसबुक के माध्यम से अगली फरमाइश आई है और भेजने वाले हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। ये अगली फरमाइश आई है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका, सानिका पुनावले, पुणे से अजय सोनावने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। ये अगली फरमाइश आई है पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव और इनके परिवार वाले। ये अगली फरमाइश आई है संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और नामदेव परिवार वाले। और ये हमें फरमाइश भेजी है मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सौरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। ये अगली फरमाइश आई है सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। फेसबुक के माध्यम से ही अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है।

है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अनु खान। ये अगली फरमाइश है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये अगली फरमाइश आई है कुम्हेर जिला डींग भरतपुर राजस्थान से संजय तिवारी। विराटनगर नेपाल से डॉक्टर अरुण चंद्र शर्मा, डॉक्टर रेणुका शर्मा और इनके साथी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन, पुष्पा सेन, नितिन सेन, जतिन सेन और इनके परिवार वाले। इसी क्रम में ये अगला जो अगली फरमाइश आई है वो है अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू और इनके परिवार वाले। जिला दुर्ग जुनवानी छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता देवी, रिसीवन लाल, चंद्रहास, हीरेंद्र कुमार और त्रिलोक कुमार साहू। ये अगली फरमाइश आई है शिवाजीनगर वड़ाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्रताई खोबरखेड़े, झकोली ताई खोबरखेड़े, दीपाली ताई, सुनैना ताई और स्वराज तनुज की। इसी क्रम में यह अगली फरमाइश है देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय। ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली और खूबचंद्र वर्मा। क्या बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। बाबा कुटीर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम ने ये हमें फरमाइश भेजी है गुमला झारखंड से। फेसबुक के माध्यम से ही ये अगली फरमाइश आई है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना की लदावली जिला मुरादाबाद से। ये अगली फरमाइश करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और इन्होंने ये फरमाइश की है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। फेसबुक के ही माध्यम से जुड़े हैं नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रोबिन राणा। छतरपुर से डॉक्टर अमित कुमार जैन और श्वेता जैन। ये अगली फरमाइश आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये हमें फरमाइश की है रामचंद्र मखीजा ने। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। ये अगली फरमाइश है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। गांव ढाड़ी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप, बेबी कीरत अवाना और इनके परिवार वाले। ये अगली फरमाइश आई है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक की। इसी क्रम में अगली फरमाइश है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा की। फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा और इनके परिवार वाले।
ग्राम पोस्ट गौना कुसुमाड़ थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार नामदेव द्रौपदी देवी नामदेव रामदेवी नामदेव ब्रजेश कुमारी नामदेव अखिलेश कुमारी नामदेव लखनलाल नामदेव चाहना नामदेव आकाश नामदेव

सुरभि नामदेव, रानी परी नामदेव और इनके मम्मी पापा। और इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानु, बवन, मुनु, कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर की। ये सभी फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े थे। आप भी आगे जुड़ते रहिए और आप सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे विरासत फिल्म का गीत, आवाज थी कुमार सानू और चित्रा की। आइए अब आपको सुनवाते हैं मृत्युदंड फिल्म में उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं छतरपुर से राजेश गुप्ता। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है मालवा रेडी श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांशु वर्मा और ऋषि वर्मा। ये अगली फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। फेसबुक के माध्यम से ये अगली फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है इनका केवल नाम है विनोद कुमार साहू जी, इन्होंने अपना पता नहीं भेजा है, तो अगली बार से आप अपने पते के साथ अपनी फरमाइश जरूर लिखिए। ये अगली फरमाइश की है फेसबुक के माध्यम से वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी और इनके परिवार वाले। इसी के साथ एक और फरमाइश आई है फेसबुक पर अल्ताफ हुजारे की और इन्होंने भी अपना पता नहीं लिखा है। अगली फरमाइश की है कवाई सालपुरा जिला बारा राज सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने फरमाइश की है। अगली फरमाइश है महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े। ये अगली फरमाइश आई है चरौंदा बार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर की। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मृत्यु दंड फिल्म में उदित नारायण और अलका याग्निक को। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण व साथियों की आवाज में कोयला फिल्म का गीत और इनकी फरमाइश बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी संदेश।

0: Akashvani at 90.
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण व साथियों की आवाज में कोयला फिल्म का गीत। शब्द रचना इंदिवर की, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का। इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम मचगवा कला पोस्ट अमरोनिया जिला छतरपुर से लखनलाल यादव, नेहा अनन्या, अनुष्का और अभिमन्यु यादव। अगली फरमाइश आई है सोहन सिंह राजपूत ललित की, ग्राम मामना जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये मेल पर हमें फरमाइश की है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवीर, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके परिवार वालों ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डागबाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और ये अगली फरमाइश है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन की। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक, कुमारी मन्नू रजक, कुमारी नंदिनी रजक और इनके परिवार वाले। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनीता और राहुल भामबिष्टे की। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश संगई और समस्त संगई परिवार वाले। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवार उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये अगली फरमाइश है संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रोही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति। मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सॉरी जिला ललितपुर से जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं ग्राम गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से सीताराम नामदेव, सिद्धार्थ नामदेव। ग्राम बछरई जिला ललितपुर से दिलीप कुमार नामदेव। ग्राम सिद्धबाहा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र नामदेव, पप्पू नामदेव इनके

0: परिवार वाले संबलपुर कांगेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। आप सभी की पसंद पर सुनवाएंगे आपकी फरमाइश का गीत, लेकिन इससे पहले सुनिए आकाशवाणी संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साथियों को, फिल्म थी कोयला। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में कहो ना प्यार है फिल्म का गीत। शब्द रचना इब्राहिम अश्क की है, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़। फेसबुक के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता मित्र हैं गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। ये अगली फरमाइश आई है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम शिखा और शेफाली की। फेसबुक पर ही अगली फरमाइश प्राप्त हुई है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला और विशाल निशा की। ये अगली फरमाइश है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। ये अगली फरमाइश है रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके परिवार वाले। सरलाही सोकन नाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा और इनके सभी साथी। ये अगली फरमाइश है मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा। फेसबुक पे ही हमें ये अगली फरमाइश प्राप्त हुई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। ये अगली फरमाइश आई है अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सुराज अख्तर, जासमीन शकीला, सना शमा, हिना, रजिया सुल्ताना अंसारी और समस्त परिवार वाले। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कुमार, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कमिल छीपा और पूजा परिहार, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम कुमारी। ये अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवावकर, निर्मला नवावकर, विशाल नवावकर और

सोपानतायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, दतरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ये अगली फरमाइश आई है, ग्राम पोस्ट भदौरा, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से ब्रजकिशोर नामदेव, सुखवती नामदेव, अमित नामदेव, हेमंत लता नामदेव और शिवम नामदेव। पंजाब डिस्ट्रिक्ट बखार से रिहाना खान ने यह हमें फरमाइश भेजी है। अगली फरमाइश है, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। तो ये हमारी फेसबुक की फरमाइशें थी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए कहो ना प्यार है फिल्म के इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहती है डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के